सुप्रभात, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 मई सन 2026 प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ हो रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा

0: रक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। तो वंदना कार्यक्रम के आज के अंक में हम अपने सभी श्रोताओं का इस नई सुबह में स्वागत करते हैं। और भाई जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि भाई

सुबह सवेरे का जो शुरुआत होती है हम सभी की, वो चाहे भारत देश में कोई भी धर्म हो, पूजा पाठ से होती है। और हमेशा पूजा पाठ करने का मतलब है कि हम किसी ना किसी रूप में अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को याद करते हैं। और ऐसे ही हम याद करेंगे अपने इष्ट को, और क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हे इष्ट, जाने अनजाने में मैं हर दिन कहीं ना कहीं भूल करता रहता हूँ। मेरी जबान से किसी ना किसी के लिए अपशब्द भी निकल जाते हैं, मेरी जबान से अनजाने में कुछ ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचती है। जब मुझे एहसास होता है तो ये मुझे मालूम होता है कि ये मेरी भूल है। बस मेरी आपसे करबद्ध ये निवेदन है, विनती है कि मेरी आप अनजाने में हुई इन भूलों को माफ करें, क्षमा करें, और कोशिश करें कि अनजाने के अलावा मैं जाने में भी कोई भूल ना करूं।

हे इष्ट, हे श्री राम। मुझे मनुष्य जीवन मिला है और यह कृपा ईश्वर की कृपा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इस जीवन में ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका कोई नहीं है, वो अंधकार में है, उसके चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार है, कोई रोशनी की किरण उसे नहीं नजर आती। लेकिन जब वही बात उसके पास सुख होता है तो उसको ऐसा नजर आता है कि सब कुछ मेरे पास है, और वो दुनिया को भूल जाता है, सिर्फ अपनी ही धुन में रहना पसंद करता है। इसके विपरीत जहां दुख होता है उसको कोई सहारा नहीं मिलता, वो सहारा किसका चाहता है? वो कहीं ना कहीं अपने इष्ट का सहारा चाहता है, जैसे वो श्री राम से कहना चाहता है कि हे श्री राम, इस दुनिया में मुझे नजर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ये नजर आ रहा है कि सुख के सब साथी हैं, दुख का कोई नहीं, इसीलिए आप मेरे दुख के साथी बने, मुझे शक्ति प्रदान करें और मुझ पर अपनी कृपा करें।

बहुत ही खूबसूरत भजन मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सुन रहे थे आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और कार्यक्रम है हमारा वंदना। और वंदना कार्यक्रम में जैसा कि हमारी परंपरा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और कहीं ना कहीं इस क्रम में हम आपको उनसे जुड़े हुए रचनाएं भी सुनवाते हैं। तो एक रचना हमारे पास है आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में, और ये रचना है शबद।

आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये शब्द। और शब्द के बाद भाई एक नाते पाक भी है हमारे पास कि जो हम आपको सुनवाएंगे, और इसमें आवाज़ें हैं सईद नाज़ा कव्वाल और साथियों की। और ये नाते पाक जो समर्पित है या जिनके लिए है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के लिए है, यानी जिन्हें मोहम्मद साहब भी कहा जाता है। और मोहम्मद साहब एक ऐसे रहे हैं व्यक्तित्व के मालिक जिन्होंने सभी को समान रूप से जीने की कला सिखाई है। आइए इस नाते पाक का आनंद लें।

ये नाते पाक हमने आपको सुनवाई सईद नाजा कव्वाल और साथियों की आवाज़ों में। एक अंतिम रचना और है हमारे पास, और इस रचना में आइए हम सब मिलके श्री हरि को याद करें, उनका स्मरण करें, उनके नाम को बोलें।

और इस भक्ति रचना के साथ भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का संगीतमय ये प्रसंग।

वन गमन के समय श्री राम के शोक में व्याकुल अयोध्या के नरनारी किसी प्रकार भी उनका साथ छोड़ने को राजी नहीं हुए। वे रथ के पीछे खींचे से चल दिए। प्रेम युक्त वचनों द्वारा उन्होंने लोगों को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु स्नेह डोर में बंधे लोग किसी भांति लौटने को तैयार नहीं होते। शोक और परिश्रम से थके लोग जब रात्रि में सो गए तो उन्हें देवताओं की माया से गाढ़ी नींद आ गई। दोपहर रात गए श्री राम ने सुमंत्र को रथ कुछ इस प्रकार हांक ले चलने को कहा कि पृथ्वी पर उसके पहियों के निशान ना दिखें। इस प्रकार शिव के चरणों में सिर नवाकर सीता और लक्ष्मण सहित राम अयोध्या के नरनारियों को सोता छोड़कर चल दिए। सवेरा होने पर जब लोग जागे तो श्री राम को न पाकर हाहाकार मच गया। कहीं रथ के पहियों के निशान तक नहीं मिले। संताप से भरे लोग प्रलाप करते अयोध्या लौट चले। उधर सीता तथा मंत्री समेत दोनों भाई गंगा तट पर बसे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। रथ से उतरकर उन्होंने पतित पावनी गंगा को हर्षित होकर प्रणाम निवेदित किया।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान से आज का संगीतमय ये प्रसंग। कलाकार थे सुरेश वाडेकर और संगीतकार सतीश।

0: ये भी सत्य है कि आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है। एक की पूर्ति में दूसरे की उत्पत्ति छिपी होती है। परिणामतः मनुष्य का ये संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता और उसमें लीन वो भूल जाता है कि इनके अलावा भी दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं और हैं जिनके अभाव में जीवन अपूर्ण है। भले ही भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार मनुष्य के सामने लगा हो, यदि उसका शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो उसके किस काम का। अतः भौतिक सुखों का आनंद लेने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना अति आवश्यक है। नियमित व्यायाम, सुपाच्य पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पर्यावरण और व्यक्तिगत स्वच्छता से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। इसी प्रकार पूर्ण जीवन के लिए मन का निर्मल होना भी उतना ही आवश्यक है। वास्तव में शरीर और मन का आपस में घनिष्ठ संबंध है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ और निर्मल मन की उपस्थिति संभव है। अर्थात मन का स्वस्थ होना मन को निर्मल रखने की पूर्व शर्त है और तन को स्वस्थ रखने के लिए जैसे व्यायाम आदि कुछ उपाय सुझाए गए हैं, उसी प्रकार मन को निर्मल रखने के लिए भी कुछ उपाय करने आवश्यक हैं। तभी मन को विकृतियों तथा दूषित विचारों से दूर रखा जा सकता है। उपाय बहुत सरल है। इसके लिए चार धामों की तीर्थ यात्रा भी आवश्यक नहीं। संत रविदास ने कहा है कि मन है चंगा तो कठौती में गंगा। स्वामी शंकराचार्य का मत है कि अगर मन को निर्मल रखने के लिए सर्वप्रथम उपाय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि गृहस्थी को त्याग कर सन्यासी बन जाओ। गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया जा सकता है। गृहस्थियों को करना यह है कि नैसर्गिक काम प्रवृत्ति का उपभोग केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही करें, जैसा कि पशु पक्षी करते हैं। उसे मनोरंजन का साधन न बनाएं। दूसरा उपाय है अहिंसा। हमारे ऋषि मुनियों ने अहिंसा को परम धर्म का स्थान दिया है। हिंसा मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार से होती है। किसी के प्रति मन में बुरे विचार आना भी हिंसा है। किसी की आत्मा को वाणी से आहत करना भी हिंसा है। किसी की बुराई सुनना भी हिंसा है। लेकिन यदि मनुष्य किसी अत्याचारी को अत्याचार करता देखे तो उसे रोकना हिंसा नहीं है। रोकने से भी ना रुके तो उसे मारना भी हिंसा नहीं है। अतः अहिंसा का अर्थ है अच्छाई का सत्कार और बुराई का प्रतिकार।
1: ये था हमारा आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। काव्यधारा में लीजिए सुनिए श्री अजय कुमार जौहरी का ये काव्य पाठ।
2: अपनी बात चार पंक्तियों से शुरू करता हूँ। देखें कि सोचा तुमको खत लिखूं, सोचा तुमको खत लिखूं और खत में सारी बात लिखूं, सोचा तुमको खत लिखूं और खत में सारी बात लिखूं, खुशियों के आंगन के हर पौधे का तुमको पाथ लिखूं। शेर देखें कि जब से मेरे सिर पर तुमने हाथ रखा है तात मेरे, आनंदित है जीवन मेरा, सारी सारी रात लिखूं, सोचा तुमको खत लिखूं और खत में सारी बात लिखूं। एक गजल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि हर तरफ छाया अंधेरा क्या करूं, हर तरफ छाया अंधेरा क्या करूं, कैसे हो अब दिन सुनहरा क्या करूं, और छोर मंजिल का अभी भी दूर ही है, छोर मंजिल का अभी भी दूर ही है, हो चला है अब दोपहरा क्या करूं, हर तरफ छाया अंधेरा क्या करूं। शेर देखें कि जो भी बच्चे हैं अनाड़ी अब तलक सीख पाए वो ककहरा क्या करूं, और मेरी माँ कहती तो यूं कुछ भी नहीं है, मेरी माँ कहती तो यूं कुछ भी नहीं है, उसको दे पाऊं सहारा क्या करूं, हर तरफ छाया अंधेरा क्या करूं। और शेर देखें कि चांद भी मुझसे नहीं अब बोलता है, चांद

मुझसे नहीं अब बोलता है, लौट आए दिन दोबारा क्या करूं, और कुर्सी कब्जे में मेरी तो सुबह से है, कुर्सी कब्जे में मेरी तो सुबह से है, कैसे चमकेगा सितारा क्या करूं, हर तरफ छाया अंधेरा क्या करूं। शेर देखें कि लौटकर घर अपने पहुंचा भी नहीं हूं, लौटकर घर अपने पहुंचा भी नहीं हूं, उसने फिर से है पुकारा क्या करूं, और सोचता हूं उनसे जाके बोल ही दूं। शेर देखें कि सोचता हूं उनसे जाकर बोल ही दूं, या तो फिर कर दूं इशारा क्या करूं, सोचता हूं उनसे जाकर बोल ही दूं, या तो फिर कर दूं किनारा क्या करूं। और थे देखें कि जिस किनारे पर मैं जाना चाहता था, कर गए वो ही किनारा क्या करूं, हर तरफ छाया अंधेरा क्या करूं। और शेर देखें कि तुम कहो तो जीत जाने दूं मैं उनको, तुम कहो तो जीत जाने दूं मैं उनको, या बिगाड़ूं खेल सारा क्या करूं, हर तरफ छाया अंधेरा क्या करूं। और दो शेर और देखें इसी उसके की मुफलिसी फैली हुई है हर तरफ, मुफलिसी फैली हुई है हर तरफ, कैसे हो सबका गुजारा क्या करूं। और अंतिम शेर देखें कि माना तेरे जैसा हो सकता नहीं हूं, माना तेरे जैसा हो सकता नहीं हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा क्या करूं, हर तरफ छाया अंधेरा क्या करूं, और कैसे हो अब दिन सुनहरा। मेरे हृदय को मेरी व्यथाएं घेरे रखती हैं, मेरे हृदय को मेरी व्यथाएं घेरे रखती हैं, उजाला तेज है फिर भी निशाएं घेरे रखती हैं, और मुट्ठी से फिसलता जा रहा है रेत की मानिंद, मुट्ठी से फिसलता जा रहा है रेत की मानिंद, समय है और उसकी आपदाएं घेरे रखती हैं। शेर देखें कि स्वाधीन होना चाह रहा मन प्राण मेरा भी, स्वाधीन होना चाह रहा मन प्राण मेरा भी, जगत द्वारा बनाई वर्जनाएं घेरे रखती हैं, और कभी संसार के प्रति मोह मुझको होने लगता है, कभी संसार के प्रति मोह मुझको होने लगता है, कभी मन प्राण को जलती चिताएं घेरे रखती हैं, और मैं कैसे शांत रह पाऊं, मैं कैसे शांत रह पाऊं, है ये उद्विग्न मन मेरा, मैं कैसे शांत रह पाऊं, है ये उद्विग्न मन मेरा, मुझे हरदम अछूती कल्पनाएं घेरे रखती हैं। और शेर देखें अंतिम इसका कि बहुत चाहा बनू निर्मोही और मैं मोह को त्यागूं, बहुत चाहा बनू निर्मोही और मैं मोह को त्यागूं, तुम्हारी माधुरी मोहक अदाएं घेरे रखती हैं, मेरे हृदय को मेरी व्यथाएं घेरे रखती है, उजाला तेज है फिर भी निशाएं घेरे रखती है। कि कुछ लोगों ने खिली धूप में आंगन कली चटकती देखी, कुछ लोगों ने खिली धूप में आंगन कली चटकती देखी, और कुछ लोगों ने उसी धूप में बगिया पुने महकती देखी, सोच है सबकी अपनी अपनी, सोच है सबकी अपनी अपनी, धूप का मतलब अपना अपना, सोच है सबकी अपनी अपनी, धूप का मतलब अपना अपना, मैंने तो बस उसी धूप में नंगी पीठ झुलसती देखी, कुछ लोगों ने खिली धूप में आंगन कली चटक। शेर देखें कि गांव से शहर आने वाली यूं तो सब सड़कें पक्की हैं, गांव से शहर आने वाली यूं तो सब सड़कें पक्की हैं, लेकिन उसी सड़क पर मैंने पीढ़ी नई फिसलती देखी, लेकिन उसी सड़क पर मैंने पीढ़ी नई फिसलती देखी। और शेर देखें कि मुझे पता है चांद को छूने की इच्छा हर बच्चे में है, मुझे पता है चांद को छूने की इच्छा हर बच्चे में है, पहले बेटा मचला करता बेटी आज मचलती देखी, कुछ लोगों ने खिली धूप में आंगन कली चटकती देखी। और देखें शेर की जो औरों की दुख की चादर को अक्सर धोते रहते हैं, जो औरों की दुख की चादर को अक्सर धोते रहते हैं, उनकी सुख चादर पर के ऊपर मैंने दया बरसती देखी, उनकी सुख

0: चादर के ऊपर मैंने दया बरसती देखी, कुछ लोगों ने खिली धूप में आंगन कली चटकती देखी। और शेर देखे कि जिस मुंडेर पर बैठ के मेरी बेटी उधम रोज मचाती, जिस मुंडेर पर बैठ के मेरी बेटी उधम रोज मचाती, उसी मुंडेर पर अक्सर मैंने चिड़िया एक चहकती देखी, उसी मुंडेर पर अक्सर मैंने चिड़िया एक चहकती देखी। और शेर देखें कि जो पीढ़ी पूरब के गीतों को गा गा कर बड़ी हुई है, जो पीढ़ी पूरब के गीतों को गा गा कर बड़ी हुई है, पश्चिम की आंधी के आगे पीढ़ी वही बहकती देखी। और शेर अंतिम देखें कि वक्त भी सह लेता है गर्मी सर्दी को बारी आने पर, वक्त भी सह लेता है गर्मी सर्दी को बारी आने पर, वर्षों से जो बर्फ जमी थी मैंने आज पिघलती देखी, कुछ लोगों ने खिली धूप में आंगन कली चटकती देखी, और कुछ लोगों ने उसी धूप में बगिया पुने महकती देखी। चार मिसरे देख लें कि अगर कुछ बोलना होता है पहले सोच लेता हूँ, अगर कुछ बोलना होता है पहले सोच लेता हूँ, निशाना लक्ष्य पर ठहरे ये खुद से बोल लेता हूँ, और कोई एक फैसला लेने में मुश्किल जब भी आती है, कोई एक फैसला लेने में मुश्किल जब भी आती है, पुरानी एक तराजू है उसी पर तोल लेता हूँ। और एक शेर और देख ले कि कभी जब आई है तकलीफ मुझको घर चलाने में, कभी जब आई है तकलीफ मुझको घर चलाने में, मैं अपनी मुस्कुराती माँ का चेहरा देख लेता हूँ, अगर कुछ बोलना होता है पहले सोच लेता हूँ, निशाना लक्ष्य पर ठहरे ये खुद से बोल लेता हूँ। और शेर देखें कि तुम्हें मैं क्या बताऊँ कि कहानी क्या है चादर की, तुम्हें मैं क्या बताऊँ कि कहानी क्या है चादर की, यह तो बस उसकी रहमत है जिसे मैं ओढ़ लेता हूँ। और शेर देखें कि उसी चादर के नीचे उम्र मैंने काट दी सारी, उसी चादर के नीचे उम्र मैंने काट दी सारी, गिला अब भी नहीं कोई मैं घुटने मोड़ लेता हूँ, गिला अब भी नहीं कोई मैं घुटने मोड़ लेता हूँ, अगर कुछ बोलना होता है पहले सोच लेता हूँ, निशाना लक्ष्य पर ठहरे ये खुद से बोल लेता हूँ। और शेर देखें कि बीमारी हद से बढ़ जाती है तो फिर मैं ये करता हूँ, बीमारी हद से बढ़ जाती है तो फिर मैं ये करता हूँ, दवा को छोड़ देता हूँ, दुआ को थाम लेता हूँ, अगर कुछ बोलना होता है पहले सोच लेता हूँ।
1: काव्यधारा में अभी आप सुन रहे थे श्री अजय कुमार जौहरी का ये काव्य पाठ।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में।

0: च संबोधयन् आसीत्।
1: बीएचएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है कि चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएचएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही है। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः अद्य प्रातः पञ्चदिवसीय भारत यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्स्यति। तेन सह नैके मन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणः व्यापार नेतारः उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं च भविष्यति। राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य एषा प्रथमा भारत यात्रा भविष्यति। अद्य अपराह्ने राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः नवदिल्ल्यां प्राप्स्यति। सः सायंकाले विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। सः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः म्यांमार भारत व्यापार मञ्चे भागं ग्रहीष्यति इत्यपेक्षास्ति। सोमवासरे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकं सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यति। सर्वकारः अवदत् यत् देशे पेट्रोल डीजल एलपीजी इत्येतेषां पर्याप्तः भण्डारः अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इष्टतमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय मन्त्रिमण्डलस्य विवरणं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक गैस इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतमस्तरे अस्ति यत् प्रतिदिनं एलपीजी इत्यस्य 290,000 टन परिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि एलपीजी वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधिप्रसारणस्य तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता। यस्याः लक्ष्यं समग्र शिक्षा 3.0 अधिकं दक्षं पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम् उल्लासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुखयोजनानां एकीकृत पद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीय शिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषि मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानाम् उपलब्धता सुनिश्चेतुं 74,000 क्विंटल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृतास्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयनासीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादविन्द्र सिंह अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चण्डीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 7 पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटन्स दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
1: बीएचएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है कि चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड

0: हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने ड्रोन रडार निगरानी टावर अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Naresh Margo. The government has asked public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as West.
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं. स्वास्थ्य चर्चा में हमारा आज का विषय है नारियल के पौष्टिक गुण.
2: नारियल एक ऐसा फल है जिसका महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से तो है ही, ये स्वास्थ्य रक्षक और रोग निवारक भी है. नारियल का प्रत्येक भाग मानव जीवन के लिए उपयोगी होता है, इसीलिए इसको जीवन तरु की संज्ञा भी दी गई है. आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम चर्चा करेंगे गुणों से भरपूर

0: भरपूर स्वादिष्ट और पौष्टिक फल नारियल की। नारियल अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही संसार में सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला फल है। धार्मिक कार्य हो या पूजा पाठ अथवा किसी का मान सम्मान करना हो, नारियल अनिवार्य है, क्योंकि ये रिद्धि सिद्धि देने वाला फल है। इसीलिए नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। नारियल बाहर से भले ही कठोर दिखाई देता हो, पर अंदर का प्रत्येक भाग सेहत और स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी होता है। खासकर समुद्री और नदी के किनारों पर इसके वृक्षों की बहुतायत होती है। इसकी अनेक किस्में होती हैं, जिनमें से कुछ के पेड़ छोटे तथा कुछ के बड़े होते हैं। नारियल के पानी को डाब का पानी भी कहते हैं। ये पानी प्राकृतिक रूप से स्टरलाइज्ड और पौष्टिक होता है। इसमें पोटेशियम और क्लोरीन प्राकृतिक रूप में विद्यमान रहता है। इसीलिए हृदय रोग, यकृत रोग तथा किडनी के रोगों में नारियल का पानी पीना लाभप्रद है। दवाइयों के विषैले प्रभाव को नारियल का पानी नष्ट कर देता है। ये हैजे में भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि हैजे में दस्त तथा उल्टी के कारण शरीर में पानी और क्षारीय तत्वों की कमी आ जाती है, फलस्वरूप जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में नारियल के पानी से शरीर को आवश्यक जल और क्षार उपलब्ध हो जाते हैं। नारियल का पानी जीवाणु नाशक होने से वो आंतों में स्थित हैजे के जीवाणुओं का नाश करता है। नारियल का पानी माता के दूध के समान गुणकारी है। इसके पीने से बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उनका विकास भी सुचारू रूप से होता है। जब किसी शिशु को जलाभाव यानी कि डिहाइड्रेशन अनुभव हो रहा हो, तब नारियल का पानी नींबू का रस मिलाकर पिलाया जा सकता है। इसे बच्चों को प्रति 10 मिनट पर 1 चम्मच दिया जा सकता है। शरीर में डिहाइड्रेशन होने पर नारियल का पानी सोडियम और पोटेशियम की पूर्ति भी करता है। सोते समय नारियल का पानी पीने से शुद्ध नाड़ी संस्थान को बड़ा आराम मिलता है, जिससे गाढ़ी और अच्छी नींद भी आती है। नारियल का पानी हल्का होने से प्यास को बुझाता है और थकावट को दूर करता है। ये शीतल होने के कारण पित्त प्रकृति वालों के लिए सर्वोत्तम है। बुखार, खांसी तथा शरीर में खुजली होने पर नारियल तेल से मालिश करने पर बहुत लाभ प्राप्त होता है। यदि आंतों में कीड़े हो गए हों तो रोजाना सुबह शाम गिरी वाले नारियल का पानी पिएं तथा गिरी खाएं। इससे कीड़ों का नाश हो जाएगा। नारियल का कच्चा फल सेवन करने से पित्त ज्वर एवं पित्त विकार का नाश होता है। कब्ज होने पर नारियल पानी पीने से लाभ होता है। ये मूत्राशय को भी शुद्ध करता है। नारियल के तेल में 1 भाग तुलसी के पत्तों का रस मिलाकर जले कटे अंगों पर लगाने से जलन शांत होती है। घाव जल्दी भर जाते हैं तथा जलने के निशान भी नहीं पड़ते। आधा सीसी का दर्द यदि सिर के बाएं हिस्से में है तो दाएं नथुने में, और यदि दर्द दाएं हिस्से में है तो बाएं नथुने में कच्चे नारियल के पानी की कुछ बूंदे टपकाने से लाभ मिलता है। 100 ग्राम नारियल के तेल में 25 ग्राम कपूर मिलाकर शरीर के दाद ग्रस्त हिस्सों पर लगाने से लाभ होता है। रात के भोजन के बाद 1 कच्चे नारियल का पानी पीने से स्वप्न दोष की शिकायत भी नहीं होती है। 10 ग्राम गुड़ और 10 ग्राम कच्चा नारियल घिसकर प्रसूता स्त्री को सुबह शाम खिलाने पर प्रसव के उपरांत होने वाली गर्भाशय की पीड़ा शांत होती है। मुंह से दुर्गंध आने पर पारिया में तथा दांतों और मसूड़ों की मजबूती के लिए नारियल पानी फायदेमंद है। इतने सारे गुणों से भरपूर है नारियल। इसका उपयोग कीजिए और लाभ उठाइए।
1: स्वास्थ्य चर्चा में हमारा आज का विषय था नारियल के पौष्टिक गुण, और अब खेती की बातें कार्यक्रम में हमारा आज का विषय रहेगा आपके लिए शिमला मिर्च की खेती।
2: किसान भाइयों राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं शिमला मिर्च की उन्नत खेती के संबंध में। इसकी उन्नत खेती करके आप कम समय में बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। शिमला मिर्च की उन्नत खेती के लिए भुरभुरी और अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। फसल की अच्छी व्यवहार के लिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को आदर्श माना गया है। इसकी खेती खुले खेत के साथ साथ पॉली हाउस में भी हम कर सकते हैं। शिमला मिर्च की बुआई उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मुख्य बुआई मुख्य रूप से जून जुलाई बरसात के मौसम के लिए और अक्टूबर नवंबर में सर्दियों के मौसम में की जाती है। किसान भाइयों, शिमला मिर्च से बढ़िया उत्पादन लेने के लिए जो इसकी अच्छी प्रजाति है वो हम आपको बता रहे हैं। अच्छे उत्पादन के लिए हमेशा उन्नत और

0: संकर किस्मों का ही चुनाव करें। हरी शिमला मिर्च की उन्नत प्रजातियां हैं अर्का मोहिनी, पूसा दीप्ति, कैलिफोर्निया वंडर, और रंगीन शिमला मिर्च जो कि हम पॉली हाउस में उगाते हैं उसकी अच्छी प्रजातियां हैं बॉम्बे लाल, ऑरेंज ग्लोरी पीली और इंदिरा। किसान भाइयों, शिमला मिर्च की बुआई करने से पहले खेत की 3-4 बार गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें और अंतिम जुताई के बाद खेत पर पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। अंतिम जुताई के समय प्रति एकड़ 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 2-3 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा अवश्य मिलाएं ताकि फफूंद जनित रोगों से बचाव हो सके। शिमला मिर्च की खेती करने के लिए पहले नर्सरी तैयार की जाती है और बाद में जब हमारे पौधे तैयार हो जाते हैं तो फिर इसकी रोपाई की जाती है। तो स्वस्थ पौधे प्राप्त करने के लिए प्रोट्रे और कोकोपीट का उपयोग सबसे अच्छा होता है। बीजों को कार्बाडाइजियम या ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके ही बीज बुआई करें। बीज बोने के लगभग 30 से 40 दिन बाद जब पौधे 4 से 6 पत्तियों के हो जाएं, तब उनकी रोपाई की जाती है। रोपाई के लिए लगभग 2 से 3 फीट चौड़े बेड बनाएं। पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखें। तो इस तरीके से किसान भाइयों, हमें शिमला मिर्च की पौध तैयार करके उसकी रोपाई करनी है और रोपाई हमेशा शाम के समय करें। और किसान भाइयों, जब हम पौधे की रोपाई करते हैं तो थोड़ी सी हल्का पानी भी हमें पौधे के आसपास लगाना है जिससे कि पौधे की जड़ें जो हैं आसानी से मिट्टी में चल सकें और हमारा जो पौधा है वो अपनी बढ़वार करना शुरू कर दे। किसान भाइयों, पानी की बचत और खरपतवार की रोकथाम के लिए ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जल बहुमूल्य है और जल की बचत करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। भविष्य में हमें पानी की बहुत ही आवश्यकता होने वाली है तो इसलिए जल को हमें बचाना है और इसके लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बहुत ही आवश्यक है। और इसी के माध्यम से अगर हम सिंचाई करें तो हम कम पानी में अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही मल्चिंग का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है और मल्चिंग अगर हम करते हैं घास फूस के माध्यम से या प्लास्टिक सीट के माध्यम से तो हमारे खेत में लंबे समय तक नमी बनी रह सकती है और हम कम पानी में अधिक फसल ले सकते हैं, फसल उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, शिमला मिर्च से बढ़िया उत्पादन लेने के लिए बुआई के समय 25 से 30 किलो DAP, पोटास और यूरिया का संतुलित मात्रा में हमें प्रयोग करना है। हम देखते हैं कि शिमला मिर्च में थ्रिप्स और माइट्स साथ ही फ्रूट बोरर का प्रकोप होता है तो इसकी रोकथाम के लिए नीम के तेल के 5 ml प्रति लीटर या इमिडोक्लोप्रिड का छिड़काव करना है। साथ ही उखटा रोग से बचाव के लिए अपने खेत में जल भराव न होने दें और खेत में अगर पानी इकट्ठा हो जाता है या बारिश हो जाती है तो अतिरिक्त पानी की निकासी की हमें व्यवस्था करनी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। शिमला मिर्च रोपाई के लगभग 60 से 70 दिनों में तुड़ाई के योग्य हो जाती है। फलों को पकने से पहले गहरे हरे या चमकदार रंग की अवस्था में तोड़ लेना चाहिए। उन्नत तरीके से खेती करने पर 1 एकड़ भूमि से लगभग 150 से 200 क्विंटल तक का बम्पर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाई पॉली हाउस में खेती कर सकते हैं या खुले खेत में हम शिमला मिर्च को लगा सकते हैं। साथ ही अगर हम बेमौसम पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो इससे और भी अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं और शिमला मिर्च की खेती करके हम बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हमें शिमला मिर्च को लगाना है और इससे बढ़िया उत्पादन लेना है और साथ ही अपनी आमदनी को बढ़ाना है। तो इसी के साथ हमारा आज का खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न होता है। कल आपके लिए हम कुछ और खेती की बातों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सब बहन भाइयों को हमारी राम राम।
1: आप सुन रहे थे खेती की बातें, विषय था शिमला मिर्च की खेती। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 7:15 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती आज रात 9:30 पर और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आज रात 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जिले की हलचल सवेरे 9:15 पर हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

आज दिन में 12:05 पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी लाइव का जो विषय रहेगा ना, बहुत ही खूबसूरत विषय हमने आपके लिए चुना है और इसमें आप बात करेंगे एसएमएस के जरिए, हम भी आपसे बात करेंगे, है ना। तो विषय क्या है जरा ये भी आप सुन लीजिएगा, लू या हीट वेव से हारती जिंदगी। बिल्कुल साहब, ये इस वक्त हम सब महसूस कर ही रहे हैं कि कितनी लू चल रही हैं और कितनी हीट वेव, यानी कि जो गर्म हवा को ही हीट वेव कहा जाता है, जिसकी वजह से शरीर को दिक्कत हो जाती है, कहीं बेहोशी भी आ जाती है। एक बार फिर हम आपको ये विषय बता दें, जिंदगी लाइव का जो दिन में 12:05 पर प्रसारित किया जाएगा, लू या हीट वेव से हारती जिंदगी। बहुत खूबसूरत विषय है और आपके काम का विषय है। वैसे हमारे सभी श्रोता बहुत सचेत हैं। इसके अलावा 1:15 पर जो महिला जगत का हमारा कार्यक्रम होता है, उसमें मेरी पाकशाला क्रम में इंदु आर्या से सुनीति आर्या की बातचीत सुनवाई जाएगी। तो इस कार्यक्रम को भी आप सुनना ना भूलिएगा। संगीत के कार्यक्रम में जो लोक धारा रहेगा हमारा, और ये लोक संगीत का कार्यक्रम है, इसमें आज हमारे कलाकार रहेंगे अमरदीप सिंह नेगी, और ये पेश करेंगे कुछ गढ़वाली लोकगीत। और एक ही गीत कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे गीतकार योगेश के विषय। तो ये थी हमारे केंद्र से कुछ जानकारी जो आने वाले समय में प्रसारित की जाने हैं। और 7:17 और 55 सेकंड हो रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, गांवों के विकास से साकार होगा विकसित भारत का सपना। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, शिक्षकों के लिए टीईटी पास करने की समय सीमा 1 वर्ष और बढ़ी। कल 2 पालियों में आयोजित की जाएगी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 72 जिलों में बनाए गए 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र। हाईटेक कमांड

0: कंट्रोल रूम से होगी परीक्षा केंद्र की निगरानी। और प्रदेश में आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बीच बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। ये विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
1: मऊ जनपद फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है।
2: इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं।
1: कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी? तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
0: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्रण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना गांव के विकास से ही साकार होगा।
3: गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के सामयिक प्रयास है और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब गाँव विकसित होंगे।
0: सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कल कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। उन्होंने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करना अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने TET को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं को कल खारिज करते हुए कहा कि TET केवल औपचारिक परीक्षा नहीं बल्कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में TET पास करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर अब 3 वर्ष कर दिया है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET पास करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
4: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है, रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है।

0: बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 72 जिलों में 1011 केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने वाले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे के अनुसार, परीक्षा को पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
1: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें।
0: इस बीच पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने बताया है कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस कोरोस केरोस होरमुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है। प्रदेश में बीते गुरुवार की रात से मौसम में आए परिवर्तन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज आंधी तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली से कई जिलों में जनधन की हानि हुई है। कल शाम आगरा में आंधी और तेज बारिश के चलते एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य लोग घायल हो गए, जबकि गुरुवार देर रात शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शाकंभरी देवी मंदिर प्रबंधन ने कल तक मंदिर में दर्शन पूरी तरह बंद कर दिए हैं। आंधी पानी से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आज और कल तेज हवाओं के बीच

0: संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 72 जिलों में बनाए गए 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र, हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम से होगी परीक्षा केंद्र की निगरानी। और प्रदेश में आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बीच बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 7:32 हो रहे हैं। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

0: कार्यक्रम सूरज के साथ साथ सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मनोज वर्मा का नमस्कार। शनिवार की एक नई सुबह में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, आज हम पहले एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जो तंत्रिका संबंधी बीमारी है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इसकी वजह से धुंधली दृष्टि, दोहरी दृष्टि, अंधापन, थकान, मांसपेशियों में कमजोरी और ऐठन, सुन्नपन, झुंझनी के साथ संतुलन और समन्वय संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति चिंता या अवसाद की स्थिति में भी जा सकता है। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे इन लक्षणों को। तो अब हम आपको ये भी बता दें कि इस बीमारी का नाम मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और इस बीमारी के बारे में जनमानस को जागरूक करने के लिए ही हर साल की 30 मई को विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस मनाया जाता है, जैसा कि आज ये दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ये खास दिन इस बीमारी से पीड़ित लोगों के शीघ्र निदान, उपचार और उनकी सहायता करने के महत्व पर जोर देता है ताकि उन्हें लाभ हो सके। श्रोताओं, हर साल इस दिवस को मनाने की थीम भी होती है, जैसा कि इस साल की थीम है माई मल्टीपल स्क्लेरोसिस डायग्नोसिस। तो श्रोताओं, यदि आप भी इसके किसी लक्षण से ग्रसित हैं तो तुरंत योग्य चिकित्सक की सलाह लें और उचित उपचार करें। तो ये बात हुई विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस की। और इसी क्रम में एक बात और करेंगे आपसे हम, हिंदी पत्रकारिता दिवस की, जिसे हम हर साल की 30 मई को मनाते हैं, जैसा कि आज भी मना रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आपको ये संदेश सुनवा दें।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: सिलसिला शुरू करते हैं हिंदी पत्रकार

संविधान दिवस का। तो हम आपको बता दें कि 30 मई सन 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने प्रथम हिंदी समाचार पत्र, जिसका नाम था उदंत मार्तंड, का प्रकाशन आरंभ किया था। हमारे देश भारत में पत्रकारिता की शुरुआत इन्होंने ही की थी। वैसे हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई थी, जिसका श्रेय राजा राम मोहन रॉय को दिया जाता है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि वर्तमान समय में समाचार पत्र एक बड़ा व्यवसाय माना जाता है। प्रिंट मीडिया भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और सारे विश्व में अपनी पहचान रखता है। 200 वर्षों में हिंदी अखबारों और समाचार पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी तेजी आई है, साक्षरता बढ़ी है। श्रोताओं, हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि हिंदी पत्रकारिता के पुरोधा आचार्य शिव पूजन सहाय 1910 से 1960 ईस्वी तक अनेक पत्र पत्रिकाओं में सार गर्भित लेख भी लिखते रहे। उनका कहना था कि भारत की साधारण जनता तक पहुंचने के लिए दैनिक पत्र ही सबसे अच्छा साधन है। तो श्रोताओं, आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई, पत्रकारिता यानी अखबार का जिक्र इसमें, और अखबार में तो एक से एक खबरें छपती हैं, छापी जाती हैं, ताकि वो प्रकाशित हो सके और दूर दराज तक घर बैठे ही जा सकें। इस वक्त भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चाय की चुस्की के साथ अखबार अगर पढ़ रहा होगा तो हमारा ये कार्यक्रम भी सुन रहा होगा, पूरा विश्वास है हमें। फिलहाल अखबार में तो अनेक खबरें छपती हैं, जरा देखते हैं ये खबर क्या कह रहे हैं।

0: aashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
0: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में आज के अंक में आपके साथ हैं मनोज वर्मा। एक बार फिर हम अपने सभी सुधीर श्रोताओं का स्वागत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि धूम्रपान करना सदियों से चला आ रहा है और आज भी लोग गाहे बगाहे धूम्रपान के शौकीन हैं, कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। हालांकि लोग जागरूक भी बहुत हुए हैं और उन्होंने धूम्रपान को ना भी कहा है, क्योंकि ये एक खराब लत मानी जाती है जिसका शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन वर्तमान समय में ई सिगरेट का भी चलन बढ़ा है और लोग ई सिगरेट का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। हम आपको बता दें कि सिगरेट से धुआं होता है और इसमें उपस्थित निकोटीन की मात्रा से शरीर को नुकसान भी होता है। श्रोताओं, आज 30 मई को पूरे विश्व में विश्व वेप दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में ई सिगरेट का उपयोग करने वाले लोगों में धूम्रपान से होने वाले नुकसान को कम करने का प्रयास करना है। हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा घोषित विश्व तंबाकू निषेध दिवस से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। यानी यह दिवस जो हम बात कर रहे हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस आने वाले कल मनाया जाएगा। और इसी से संबंधित आपने अभी हमारे कल के कार्यक्रम जागरूक श्रोता में भी तंबाकू से संबंधित विषय रहा था, उस पर बात हमने भी की और आपने भी इसमें बात की। तो ये हम बता रहे हैं, 3 दिन लगातार आप इस पर काम सुनेंगे हमारे आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से, क्योंकि बहुत ही एक संवेदनशील विषय है और इसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। श्रोताओं, हमारे देश भारत में धूम्रपान चाहे किसी भी तरीके का हो उसे निषेध करार दिया गया है और जागरूक किया जाता है कि धूम्रपान हमारे और हमारे आसपास रहने वाले व्यक्तियों के लिए नुकसानदायक है। हालांकि लोग जागरूक हैं लेकिन कहीं ना कहीं धूम्रपान करते नजर भी आ जाते हैं। तो श्रोताओं, विकल्प चाहे कोई भी हो, और भारत में भी प्रतिबंधित है ये ई सिगरेट का इस्तेमाल, तो वही बात हम कहना चाह रहे थे, विकल्प कोई भी हो, यानी इस चीज को छोड़ने के लिए आप इस चीज का सेवन करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो दुश्वारी तो उसके अंदर होती है। तो ऐसा करने से आप, हम तो यही कहेंगे इस आकाशवाणी के स्टूडियो से नजीबाबाद से, कि आप ऐसा करने से बिल्कुल परहेज करें, कोई विकल्प ना चुनें और बिल्कुल स्वस्थ रहें और हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें ऐसी ही जानकारियों को। चलिए नजर डाल लेते हैं अब हम 30 मई की प्रमुख घटनाओं की तरफ भी, यानी 30 मई के मायने आज ही है, लेकिन हम बात बीते वर्षों की करना चाह रहे हैं आपसे। तो 30 मई सन 1919 में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में जो उन्हें मिली हुई उपाधि थी सर, उसको वापस की। हम आपको बता दें कि जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक और दुखद घटनाओं में से एक है, जहां हजारों की संख्या में लोग शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए थे और जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिससे लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए थे। इसके अलावा 30 मई सन 2012 को विश्वनाथन आनंद 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियन बने। वे भारत के सबसे महान शतरंज खिलाड़ी हैं और देश के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। उन्हें मद्रास का शेर भी कहा जाता है। भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। 30 मई सन 1991 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा, मानवता के पुजारी और राष्ट्रवाद के अग्रदूत उमा शंकर दीक्षित का निधन हुआ। वे गणेश शंकर विद्यार्थी का करीबी सहयोगी थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा और उनके विचारों पर गांधी जी और स्वामी विवेकानंद जी का गहरा प्रभाव था। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन और श्रद्धांजलि। 30 मई सन 1950 को भारतीय अभिनेता परेश रावल, जी हां, हम बात कर रहे हैं परेश रावल साहब की, उनका जन्म हुआ।

उन्होंने अपनी हास्य और संजीदा दोनों ही तरह की भूमिकाओं से दर्शकों का दिल जीता है। आपने 240 से अधिक फिल्मों में काम किया है, इसके साथ ही आप एक निर्माता और पूर्व राजनीतिज्ञ भी हैं। कला के क्षेत्र में उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें आकाशवाणी नजीबाबाद और हमारी जानिब से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चलिए उन्हें की फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने

0: भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि हम जो सब्जियां रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं उन सब्जियों का एक राजा कौन कहलाता है? हमारे कई श्रोता समझ गए होंगे कि आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसमें अनेक सब्जियों के साथ बनाया जा सकता है। हम कहना चाह रहे हैं कि अनेक सब्जियों के साथ इसको आप बना सकते हैं और अकेले भी अनेक स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। वैसे समोसा तो हम सब जानते ही हैं। तो श्रोताओं, आलू को उसके अनेक तरह के इस्तेमाल के लिए ही, याद रखने के लिए या उसकी उपयोगिता समझने के लिए ही हर साल की 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, आलू की फसल विश्व स्तर पर तीसरी सबसे अधिक खपत वाली फसल मानी गई है। इसमें प्राकृतिक रूप से कम कैलोरी होती है, साथ ही ये उच्च गुणवत्ता वाले फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी और पोटेशियम से भरपूर होते हैं। इसकी फसल के लिए कम पानी और कम उर्वरक की जरूरत होती है। आलू की खेती लगभग 8000 वर्षों से अधिक समय से की जा रही है। जी हाँ, हमने बोला है 8000 वर्षों से भी अधिक समय से की जा रही है। वर्तमान में इसकी खेती 159 देशों में की जा रही है और इसकी विश्व भर में 5000 से ज्यादा ज्ञात किस्में हैं। बिल्कुल, ये हर व्यक्ति के बजट में फिट बैठता है और सभी इसके अनेक खाद्य पदार्थों को बहुत ही शौक से खाते हैं और कहते रहते हैं कि भाई क्या कहेंगे, जरा गीत में सुनवाएंगे आपको। जरा उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के अखबारों की अहम सुर्खियों की तरफ भी। बिल्कुल साहब, तो अखबार हैं हमारे पास, तीन अखबार आते हैं, अमर उजाला, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। इन तीनों से ही हमने ये सुर्खियां आपके लिए ली हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक नौकरी करने या कुछ वर्षों तक वेतन पाने भर से कोई अवैध नियुक्ति वैध नहीं हो जाती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि नियुक्ति नियमों और वैधानिक प्रक्रिया के विपरीत हुई है तो समय बीतने या सेवा जारी रहने के आधार पर उसे कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा DLED प्रशिक्षण 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन, काउंसलिंग के साथ साथ चयन प्रवेश प्रक्रिया की समय सारणी शासन ने जारी कर दी है, यानी उत्तर प्रदेश शासन की बात हम करना चाह रहे हैं। ऑनलाइन पंजीकरण 15 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक चलेगा। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई निर्धारित की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने भारी तबाही मचा दी है और गुरुवार जो एक दिन पहले रहा है, यानी कल शुक्रवार रहा है, देर रात और शुक्रवार तड़के, कल की बात करना चाह रहे हैं हम, पूरे प्रदेश में आई भीषण आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने से कुल 34 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोहराया कि सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, साथ ही सेवा में बने रहने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने की समय सीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ा दी गई है। और भाई, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि भाई आलू के लिए भी गीत बने हुए हैं और क्या क्या कहते हैं आलू के विषय में, जरा इस गीत में सुन लेते हैं।

भाई हमें ऐसा लग रहा है कि इस गीत को सुनने के बाद भी हमारे सुबह सुबह श्रोता जितने भी सुन रहे हैं ना, पूरे ताज़ा हो गए होंगे। और इसी के साथ आज के सूरज के साथ साथ का ये अंक संपन्न करने की मुझे यानी मनोज वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, अपना खास ख्याल रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 8 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: घर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को

0: 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
1: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
2: He'll be meeting our Prime Minister and where both leaders.
3: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे. इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे. इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा. ये एक आधिकारिक यात्रा है.
2: This is official visit and we look forward to welcoming.

0: प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
1: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही है। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीत कर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
3: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल 2 क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30

0: बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under 20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as the West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks. Ms. Sharma said India was also working to increase crude oil storage capacity.
3: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
2: Additional Secretary Gulf in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said that the government is closely monitoring developments in the Gulf and West Asia region. He said Indian embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals.
4: Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines. They are also in close touch with the local governments. Advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns.
2: Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, informed that the merchant vessel Nissos Keros, a crude oil tanker, has safely transited the Strait of Hormuz and is expected to arrive in Visakhapatnam on the 3rd of June. He said the vessel is carrying around 270,000 metric tons of crude oil.
5: A merchant vessel, Nissos Keros, a Marshall Island flag crude oil tanker, safely transited Strait of Hormuz on the night of 25th-26th and is bound to arrive at Visakhapatnam on 3rd June. This merchant vessel is carrying crude oil, approximately 270,000 metric tons. It has all foreign crew members and is a Marshall Island flag vessel. All Indian seafarers in the region are safe.
2: The Ministry of Health and Family Welfare has released the National Family Health Survey 6. With the data reflecting India's accelerated progress in maternal and child health, nutrition and financial protection. The survey released yesterday highlights that institutional deliveries increased from 88.6% to 90.6%. We have a detailed report.
0: The National Family Health Survey 6 showed 95.9% of pregnant women received antenatal care, while mothers receiving antenatal care in the first trimester increased from 70% to 76.2%. It also said that India's total fertility rate, TFR, remains at 2 and vaccines received by children aged from 12 to 23 months remains consistently high above 96%. The Health Ministry said that these improvements underscore the continued impact of national family planning programs, including Mission Parivar Vikas. The survey also records continued advancement in women's digital inclusion and financial empowerment. It said that women who had ever used the internet nearly doubled from 33.3% to 64.3%. The survey said that Ayushman Bharat, PMJAY and expanded health protection initiatives strengthen financial security in healthcare. With Akshit, Swati Rakheja, Akashwani News, Delhi.
2: President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, will arrive at Bodh Gaya in Bihar this morning on a five-day visit to India. He will be accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. This will be the first visit of President Hlaing to India in his current capacity. We have a report.
6: President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, will offer prayers at Mahabodhi Temple and Sujata Temple in Bodh Gaya. Later today, he will arrive in New Delhi, where he will meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. On Monday, he will hold discussions with Prime Minister Narendra Modi on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. Briefing the media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said all issues that form the part of the gamut of relations between Myanmar and India will come up for discussions during meeting between the two leaders.
7: This is Myanmar's president's first visit and first visit to India in his official capacity right now. Myanmar is a neighbor. It lies at the confluence of India's neighborhood first, Act East and Mahasagar policies. This visit is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries.
6: As a part of the visit, the Myanmar president will also travel to Mumbai on 2nd of June for business and industry interactions and site visits. With Suparna and Anupam, this is Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
2: Outgoing Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has called a Congress Legislative Party CLP meeting at 4 p.m. today to elect its new leader.

0: प्रोग्रामों के असरात की अहमियत जाहिर होती है, जिसमें मिशन परिवार विकास भी शामिल है। जायजे में ख्वातीन की डिजिटल शमूलियत और माली तफवीज अख्तियारात के मैदान में लगातार पेशरफ भी जाहिर की गई है। यह भी कहा गया है कि जिन ख्वातीन ने कभी न कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया है उनकी तादाद तकरीबन दो गुना हो गई है। पहले ये 33.3% थी, जबकि अब ये तादाद 64.3% हो गई है। सर्वे में बताया गया है कि आयुष्मान भारत, PMJAY और हिफ्जान सेहत के तौसी शुदा इकदाम से हिफ्जान सेहत में सबके लिए पैसे की यकीनी फराहमी का इस्तेहकाम पैदा हुआ है। वजारत ने बताया कि इस दरियाफ्त से तरक्याती मकासद हासिल करने की राह में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। स्वाति रखेजा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: म्यांमार के सदर मिन होंग यांग भारत के 5 रोजा दौरे पर आज सुबह बिहार के बोध गया पहुंचेंगे। उनके हमरा एक आला सतह का वफद भी होगा जो बहुत से काबीना वजीरों, सीनियर अफसरों और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल होगा। सदर मिन का उनकी मौजूदा हैसियत से भारत का यह पहला दौरा है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग ह्यांग बोधगया में महात्मा बोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आज बाद में उन्हें दिल्ली पहुंचेंगे, यहां वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि कल वो म्यांमार भारत तिजारती फोरम में शिरकत करेंगे। पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। नई दिल्ली में नामाजगार से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रंजीत जायसवाल ने कहा कि उन सभी मामलात पर जो म्यांमार और भारत के दरमियान बहुत से पहलुओं पर मबनी ताल्लुकात का हिस्सा है, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल किया जाएगा।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
3: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: दौरे के हिस्से के तौर पर म्यांमार के सदर 2 जून को मुंबई जाएंगे, जिसका मकसद ताजिरों और सनतकारों से बातचीत करना और मौकों का दौरा करना है। हमारे नामनिगार ने बताया कि म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम मशरक पर खसूसी तवज्जो और महासागर पॉलिसियों का कायल है। म्यांमार के सदर के भारत के सरकारी दौरे से उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: कर्नाटक के सुबुकदोश हो रहे वजीर आला सिद्धारमैया ने नया रहनुमा मुंतखब करने के लिए आज सपहर 4 बजे कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग तलब की है। इस दौरान डीके शिवकुमार वजीर आला सिद्धारमैया की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं। गवर्नर थावर चंद गहलोत ने जनाब सिद्धारमैया का इस्तीफा कबूल कर लिया है और नए रहनुमा के चुने जाने तक उनसे निगरान वजीर आला के तौर पर फरायद अंजाम देने को कहा है। इस दौरान कांग्रेस के सभी 136 अराकीन असेंबली को कानून साज पार्टी मीटिंग में शरीक होने से मुतालिक सर्कुलर जारी किया गया है। पंजाब मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में बरसर इख्तदार आम आदमी पार्टी ने 1977 में से 958 वार्ड्स में जीत दर्ज की है। रियासत की 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 75 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 19 नगर पंचायतों में ये इंतखाबात हुए थे। कांग्रेस ने 397, श्रोमणि अकाली दल ने 192 और बीजेपी ने 172 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की है। BSP महज 7 वार्ड्स में ही कामयाबी हासिल कर सकी। दिलचस्प बात यह है कि आजाद उम्मीदवार 251 वार्ड्स में जीत के साथ तीसरे नंबर पर हैं। 26 मई को पंजाब के शहरी मुकामी बल्दियाती इदारों में हुए इंतखाबात में कुल 7,554 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रियासत गोवा आज अपना यौम तासीस मना रही है। आज ही के दिन साल 1987 में गोवा को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया गया था और इस तरह यह भारतीय यूनियन की 25वीं रियासत बन गई थी। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन पणजी की कला अकादमी में गोवा यौम तासीस तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये मौका गोवा की आजादी से लेकर इंसानी तरक्की और म्यारे जिंदगी के मामले में भारत की सरकर्दा रियासत बनने तक के गोवा के सफर की अक्कासी करता है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। गोवा की यौम तासीस तकरीबात के दौरान आज रियासत की गुज़श्ता 4 दहाई के दौरान जो तब्दीली हुई है उसे नुमाया किया जाएगा। 1961 में पुर्तगाली तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने के बाद गोवा दमन और दीव के साथ मरकज के जेरे

0: इंतजाम इलाका बन गया था। 1967 में फैसला कुन लम्हा तब आया जब गोवा के लोगों ने गोवा की मुनफरिद शनाख्त को बरकरार रखने के लिए तारीखी ओपिनियन पोल में हिस्सा लिया। साल 1987 में कोंकणी जबान को सरकारी जबान का दर्जा मिलने से गोवा के रियासत बनने की राह हमवार हुई और उसी साल 30 मई को गोवा भारत की 25वीं रियासत बन गई। गोवा की यौम तासीस तकरीबात के दौरान नायब सदर सीपी राधाकृष्णन आज सीएसआईआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का दौरा करेंगे, जहां वो तहकीक और टेक्नोलॉजी से मुतालिक नुमाइशी अशिया का मुशाहिदा करेंगे और साइंसदानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान नायब सदर सीएसआईआर एनआईओ कॉफी टेबल बुक का इजरा भी करेंगे। पणजी से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: इस दौरान मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने गोवा के यौम तासीस के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। जनाब शाह ने कहा कि गोवा सकाफत और विरासत का अजीम शान इम्तजाज है जो दुनिया के सामने गर्मजोशी से भरपूर भारतीय ज़ियाफ़त का चेहरा पेश करता है। जनाब शाह ने कहा कि रियासत गोवा मुल्क की तरक्की और फख्र के मामले में अपना तआवुन जारी रखेगी। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों से ज्यादा मौसर तरीके से निमटने के लिए सरहदी मुहाफिज फोर्स BSF को इजाफी जिम्मेदारियां देने पर गौर कर रही है। जनाब शाह ने कल गुजरात के भुज में BSF एहलकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। इस दौरान जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद पर स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम दो नई सरहदी चौकियों का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने मजीद कहा कि BSF के क्याम के 60वें साल के मौके पर सरहदी हिफाजत के BSF के नजरिए को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का फैसला किया गया है। जनाब शाह ने महज सरहदी सलामती के रिवायती नुक्ते नजर को इलाकाई सलामती के नए नुक्ते नजर से बदलने के मकसद से क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड के क्याम को मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार जजायर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। IMD ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और चंडीगढ़ में झालाबारी के साथ आंधी तूफान की पेशगोई भी की है। महकमे ने शुमाल मशरकी रियासतों और साहेली कर्नाटक में गरज चमक के साथ आंधी तूफान का इम्कान जाहिर किया है, जबकि मगरबी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। हांगकांग में जारी 20 साल से कम उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। सोने के 4, चांदी और कांसे के 2-2 तमगे समेत कुल 8 तमगे जीतकर दर्जाबंदी में भारत चीन के बाद दूसरे मुकाम पर पहुंच गया है। कल मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय एथलीट्स ने 4 सोने के तमगे समेत 7 तमगे जीते हैं। 19 साल की पूजा सिंह ने खवातीन की 1.3 मीटर की हाई जंप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने का तमगा जीता है। भारत के लिए दीगर 3 सोने के तमगे नितिन गुप्ता, अमानत कंबोज और राहुल जाखड़ ने हासिल किए हैं। IPL क्रिकेट में कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए सेकेंड क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ अब

0: इन मैचों की सीरीज को जीतने के मकसद से मैदान में उतरेगी। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जुमेरात के रोज चेम्सफोर्ड में खेले गए इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड को 38 रन से शिकस्त देने के बाद भारत ने सरदस्त सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर वाक चौकी पर जवानों से बातचीत की और 14 निगरानी चौकियों का इफ्तिताह किया और कहा कि सरहदी इलाकों के लिए 4 रुखी सिक्योरिटी ग्रिड बनेगी। इस खबर को रोजाना प्रताप ने जरी सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजाना प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हाथों ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले बहादुर फौजियों के तजर्बात पर मबनी किताब के रस्म इजरा की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किताब ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश करती है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल मईशत बनकर उभरा। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 की रिपोर्ट में ये बात कही गई। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसी तौर पर शाये किया है। रोजामा इंकलाब ने अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान को बड़ी अहमियत दी है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुतअद्दिद निकात पर इत्तेफाक राय में पेशरफ्त हुई है, नीज आबनाए हुरमुज में बहरी ट्रैफिक की बिला तातुल बहाली यकीनी बनाई जाएगी। आज के बेशतर अखबारात ने उर्दू के नाम और शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद के इंतकाल पर उर्दू दुनिया उनके मद्दाहों की तरफ से जबरदस्त खराज अकीदत पेश किए जाने और ताजियती नशिस्तों के अहतमाम की खबर पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज की है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो मगरबी एशिया महाजराई जारी रहने के पेश नजर LPG के जखीरे 30 दिन तक बरकरार रखें। खानदानी सेहत के कौमी सर्वे से माँ और बच्ची की सेहत के मैदान में बड़े फायदों का पता चला है। इदारा जाती जचगी में इजाफा होकर ये 90.6% हो गई है और बच्चों की टीकाकारी 96% हो गई है। म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लैंग भारत के 5 रोजा दौरे के पहले मरहले में आज सुबह बिहार के बोधगया पहुंचेंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मुल्क की बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का बोलबाला रहा। उन्होंने दूसरे दिन सोने के 2 तमगों समेत 7 तमगे जीते हैं। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल मैच खेलने को यकीनी बना दिया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर 8:45 हो रहे हैं। समय है गोल्डन हिट्स का। तो गोल्डन हिट्स कार्यक्रम के हमारे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के इस अंक में शुरुआत करेंगे इस गीत के जरिए।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने आपको सुनवाया श्रीमान फंटूश फिल्म का, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

संगम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मुकेश और महेंद्र कपूर की आवाजों में। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सागर फिल्म का ये गीत था आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। जावेद अख्तर ने लिखा था और संगीत तैयार किया था आर डी बर्मन।

महेंद्र कपूर की आवाज़ थी अनमोल मोती फिल्म के लिए। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा था, रवि ने इसका संगीत बद्ध किया था। और ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये आवाज़ लता मंगेशकर और साथियों की है। फिल्म का नाम गंगा जमुना।

0: गंगा जमुना फिल्म के इस गीत के साथ आज का गोल्डन हिट्स कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। नमस्कार, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:15 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आप जिले की हलचल सुनेंगे।
1: झांसी जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए संत कबीरनगर और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संत कबीरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय कुमार श्रीवास्तव का।

0: संत कबीर नगर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बीते दिनों कलेक्ट्रेट परिसर में बुजुर्गों के सम्मान की एक नई मिसाल पेश की। ट्रेजरी कार्यालय के निकट नवनिर्मित पेंशनर कक्ष का उद्घाटन जिलाधिकारी ने जनपद की सबसे बुजुर्ग पेंशनर 95 वर्षीय दुलारी देवी से फीता कटवाकर कराया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने दुलारी देवी को पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कक्ष के बनने से अब पेंशनर को कलेक्ट्रेट आने पर बैठने और आराम करने की बेहतर सुविधा मिलेगी। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी, वरिष्ठ कोषाधिकारी त्रिभुवन लाल और पेंशनर संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव सहित कई सदस्य मौजूद रहे। प्रशासन की संवेदनशीलता की सभी पेंशनर ने सराहना की है। संत कबीर नगर जनपद की प्रभारी मंत्री और प्रदेश की राज्य मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास ग्रामीण अभियंत्रण विभाग श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम ने बीते दिनों खैलाबाद स्थित डाक बंगले में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में महिलाओं के अधिकार संबंधी बिल पेश किए जाने के दौरान राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं ने जिस तरह की टिप्पणी की और मजाक उड़ाया वह देश की आधी आबादी के लिए एक काला दिन था। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने महिलाओं के अधिकारों को संसद में छीनने का प्रयास किया है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश और देश की महिलाएं जन आक्रोश के साथ वोट की शक्ति का इस्तेमाल कर इस गठबंधन को खदेड़ने का काम करेंगी। संत कबीर नगर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने तहसील खैलाबाद के ग्राम पंचायत पटखौली में रवि वर्ष 2025-26 के तहत गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण सीसी ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप में संपन्न हुआ। डीएम की मौजूदगी में चयनित किसान शैलेश कुमार के गाटा के दायरे में फसल की कटाई कराई गई, जिसमें कुल 19.700 किलोग्राम प्लाट उपज प्राप्त हुई। इस आधार पर क्षेत्र में गेहूं की औसत पैदावार 45.50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अनुमानित की गई। संत कबीर नगर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता और मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद को 1600 का लक्ष्य मिला है, जिसे बैंकों को भेज दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स और जिला समन्वयकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों को निपटारा 1 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लीड बैंक मैनेजर पवन कुमार सिन्हा को उद्योग विभाग की योजनाओं का लगातार फॉलो अप करने के निर्देश दिए गए। संत कबीर नगर जिले के जिलाधिकारी आलोक कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा बैठक की। वर्ष 2026-27 के लिए जिले को मिले 1600 के लक्ष्य को बैंकों को भेजते हुए डीएम ने लंबित ऋण आवेदनों को 1 सप्ताह में निपटाने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले अग्रणी जिला प्रबंधक पवन कुमार सिन्हा, क्षेत्रीय प्रबंधक विजय प्रसाद और युवा उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर संदीप कुमार मीना द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स परिसर में निर्माणाधीन आधुनिक जिम एवं गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का ही उपयोग किया जाए और मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। उन्होंने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि पुलिसकर्मियों को जल्द ही इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने जिम में आधुनिक फिटनेस उपकरण उपलब्ध कराने का, गेस्ट हाउस में बेहतर वेंटिलेशन, स्वच्छता और भविष्य के लिए रखरखाव आदि को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। संत कबीर नगर जनपद में कानून व्यवस्था और जेल की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आलोक कुमार व पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने जेल परिसर के भीतर सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा और जेल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बैरक, मेस और पूरे जेल परिसर की सघन चेकिंग की गई, जिसके बाद अधिकारियों ने कैदियों से सीधे वार्ता कर उनकी समस्याओं और मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी पर मौजूद सभी कारागार कर्मियों को सख्त हिदायत दी कि जेल के अंदर किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रतिबंधित सामग्री नहीं जानी चाहिए और सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी पारदर्शिता व सही तरीके से करें। साथ ही जेल परिसर की साफ सफाई को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। औचक निरीक्षण के बाद जिला कारागार में कैदियों के हुनर और सुधार की दिशा में एक नया कदम बढ़ाते हुए नवनिर्मित बेकरी का फीता काटकर भव्य उद्घाटन भी किया गया। इस पूरे निरीक्षण उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जेल अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक PRO PK गुप्ता सहित अन्य जेल अधिकारी और भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
1: संत कबीर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का।
2: झांसी में मई के महीने में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने पर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूल और खेल एकेडमी के समय में बदलाव किया गया। खुले मैदान में दोपहर के समय खेल गतिविधियों पर रोक लगाई गई तथा बच्चों और बुजुर्गों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। नगर निगम द्वारा प्रमुख चौराहों पर प्याऊ, शीतल जल केंद्र और छायादार शेड लगाए गए। प्रदेश के कई शहरों की तरह झांसी में भी गर्मी से राहत के लिए सार्वजनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। उधर स्वास्थ्य विभाग ने लू से बचाव के लिए विशेष हेल्पलाइन और चिकित्सा व्यवस्था सक्रिय रखी। जिला अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेषकर झांसी को औद्योगिक और ऊर्जा हब के रूप में विकसित करने की योजनाओं को गति मिली। झांसी सोलर पार्क परियोजना तथा ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों पर कार्य आगे बढ़ा। शासन स्तर पर रोजगार और औद्योगिक विकास को लेकर लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी रहा। झांसी मंडल में सड़क और रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास भी जारी रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण, ग्रामीण संपर्क मार्गों की मरम्मत तथा शहर के यातायात प्रबंधन को लेकर कई योजनाओं पर काम तेज हुआ। शहर में ट्रैफिक सुधार और अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान को और गति दी गई। वार्ड स्तर पर सफाई निरीक्षण किए गए तथा खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही हुई। शहर के प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की निगरानी बढ़ाई। कई गांवों में टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की गई। खराब हैंडपंपों की मरम्मत तथा पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया गया। शिक्षा विभाग की बात करें तो ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले विद्यालयों में सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा नामांकन अभियान को गति दी गई ताकि इस नए शैक्षिक सत्र में अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ा जा सके। कृषि क्षेत्र में किसानों को गर्मी और सूखे की स्थिति से बचाने के लिए कृषि विभाग ने सलाह जारी की। किसानों को कम से कम पानी वाली फसलें, सिंचाई प्रबंधन और पशुओं की सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जिले में जल संरक्षण और तालाब पुनर्जीवन अभियान को लेकर प्रशासन सक्रिय दिखाई दिया। मनरेगा के अंतर्गत तालाबों की सफाई और ग्रामीण जल संरचनाओं के संरक्षण का कार्य जारी रहा। महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय रहा। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालयों और कॉलेजों में महिला हेल्पलाइन और साइबर सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए साइबर सेल द्वारा लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने की सलाह दी गई। पुलिस ने कई मामलों में कार्रवाई करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की। धार्मिक और सामाजिक आयोजन को लेकर भी जिला प्रशासन अलर्ट रहा। सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष प्रबंध किए गए। सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री पर निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सोशल मीडिया से जुड़े मामलों में पुलिस कार्रवाई भी चर्चा में रही। खेल गतिविधियों की बात करें तो झांसी और बुंदेलखंड क्षेत्र में क्रिकेट, हॉकी और एथलीट प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जारी रहा। भीषण गर्मी को देखते हुए सुबह के समय अभ्यास कराने की व्यवस्था की गई। खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई और प्लेटफॉर्म प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। गर्मी के मौसम में यात्रियों को राहत देने के लिए स्टेशन परिसर में सुविधाएं बढ़ाई गयी। स्वास्थ्य विभाग ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की तैयारी भी शुरू कर दी है। बीमारियों से बचाव के लिए फॉगिंग और साफ सफाई अभियान चलाया गया। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमें संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण कर रही हैं। युवा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं में कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया। विभिन्न विभागों द्वारा युवाओं को स्वरोजगार और प्रशिक्षण योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रदेश सरकार की निवेश और विकास योजनाओं के तहत बुंदेलखंड को विशेष प्राथमिकता देने की बात दोहराई गई। सड़क, ऊर्जा, सिंचाई और औद्योगिक परियोजना को गति देने पर जोर दिया गया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त फ्लैग मार्च भी किए गए। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी रखी गई। गर्मी और जल संकट के बीच पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी कई अभियान चलाए गए।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती गाती है। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे रामकुमार राठौर की

0: आवाज में आल्हा। लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

धरती गाती है कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आपने राम कुमार राठौर की आवाज में ये आल्हा सुना। ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, 9:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आस पास की।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम बात आसपास की में आपका स्वागत है। मैं हूँ इशिका कौशिक
1: और मैं दिव्यम कंडवाल।
0: और जैसा कि आप जानते ही हैं, बात आसपास की हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपने आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही स्थानीय समस्याओं और मुद्दों पर भी आपका ध्यान केंद्रित करते हैं।
1: श्रोताओं, हमारे जनपद बिजनौर की इस धरती में इतिहास की गहरी जड़ें हैं। आज बात आसपास की में हमारा कारवां आपको ले चला है एक ऐसी पावन चौखट पर जहां कदम रखते ही महाभारत काल का इतिहास जीवंत हो उठता है।
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दारा नगरगंज के पास स्थित ऐतिहासिक विदुर कुटी की। यह वो पवित्र भूमि है जहाँ हस्तिनापुर के ठाट बाट राजनीति और दुर्योधन के 56 भोगों को ठुकरा कर महात्मा विदुर ने गंगा किनारे अपनी कुटिया बसाई थी। स्वयं भगवान कृष्ण ने यहाँ आकर उनकी भक्ति को स्वीकार किया था।
1: लेकिन श्रोताओं, विदुर कुटी आज केवल एक ऐतिहासिक स्मारक या मंदिर नहीं है। महात्मा विदुर की सादगी और सेवा की इस धरती पर आज भी निस्वार्थ प्रेम की एक अविरल धारा बह रही है। वह है यहाँ चल रहे वृद्धाश्रम के रूप में। आज हम इस पावन स्थल की महत्ता को और अधिक गहराई से जानेंगे और वहाँ रह रहे अपनों की कहानियां भी सुनेंगे।
0: विदुर कुटी की माटी में कुछ ऐसा है कि यहाँ आते ही मन को एक असीम शांति मिलती है। यहाँ का इतिहास और धार्मिक महत्व क्या है, इसे गहराई से समझने के लिए आइए जानते हैं विदुर कुटी के मुख्य पुजारी एवं संरक्षक पंडित अनुज कुमार शर्मा से उनके विचार।
1: आप बताइए कि विदुर कुटी का पौराणिक इतिहास क्या रहा है।
2: तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि महाभारत काल में धृतराष्ट्र ने एक सभा बनाई, उस युद्ध को किस प्रकार रोका जाए, किस तरीके से इस महाभारत का संचालन हो सके। अब उस सभा में सारे राजा महाराज आए, सबने अपनी नीति बताई। आखिर में विदुर से पूछा गया कि विदुर आप ही कोई नीति बताइए। तो महात्मा विदुर कह रहे हैं कि महाराज, नीति ये कहती है कि पांडवों का राज्य पांडवों को लौटा दीजिए और दुर्योधन को बंदी बना लीजिए, आपका युद्ध स्वतः यहीं रुक जाएगा। ये बात दुर्योधन ने उस सभा में सुनी तो उसी समय महात्मा विदुर का उस समय अपमान किया। तो महात्मा विदुर ने सोचा कि आज ये इतनी बड़ी बात हमें कह दी। महात्मा विदुर ने वहाँ से अपना त्याग पत्र दे करके 12 किलोमीटर जहाँ हम यहाँ बैठे हैं विदुर कुटी, यहाँ करके उन्होंने अपनी कुटिया डाली, यहाँ रहे, तपस्या की। इसके पश्चात ही संधि का प्रस्ताव लेकर के श्री कृष्ण भगवान द्वारका के हस्तिनापुर आए। उन्होंने भी पांडव पक्ष के लिए दुर्योधन से अपनी बात रखी कि मेरे कहने से इनके लिए 5 गांव दे दीजिए, मगर दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध के इनको सुई बराबर कोई जगह नहीं दूंगा। अब भोग माता है, एक लाइन आती है उसमें भोग में कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। तो जब श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन के 56 प्रकार के भोग को छोड़ करके, तो उसी के पश्चात महात्मा विदुर ने अपने हाथ से उनको, जिसको हम बोलते हैं कि बथुआ, उनकी यहाँ साग बना करके उनको खिलाया, बथुआ का साग जो कि उसी समय से यहाँ

0: अथवा प्रसिद्ध है और उसी काल का समय चला रहा है और उसी का प्रसाद हम यह वितरण करते हैं, रोज उनका ठाकुर जी को भोग लगता है।
1: श्रीमान, कौन कौन से स्थल यहाँ बिद्रकुटी के आसपास में देखने को मिलते हैं?
0: जैसे कि हम बात करें कि बिद्रकुटी सबसे पहला स्थान, मुख्य जो स्थान है बिद्रकुटी तपस्वी मंदिर है, उसके बाद अपनी गौशाला जाती है और उसके बाद अपना एक वानप्रस्थ आश्रम है, वृद्धाश्रम है और श्री बिद्र गुरुघंटर कॉलेज है और बिद्र पोस्ट ऑफिस है और बिद्र महादेव पार्क है और उससे आगे चल करके एक वन्य जीव विभाग है, वन विभाग का, उसमें का भी वनस्पतियाँ तरह तरह की बोई हुई है और गंगा जी का किनारा है, ये सब बिद्रकुटी के आसपास है।
2: जानना चाहेंगे कि कोई अगर यहाँ आना चाहे तो कौन सा समय आने के लिए ज्यादा सही है और उसके अलावा यहाँ पे किस प्रकार के कब कब मेले आयोजित किए जाते हैं?
0: आने के लिए तो ये कि किसी भी टाइम अपना श्रद्धा भाव से अपना यहाँ आ सकता है, यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर है या किसी भी संपर्क कर सकते हैं। और जैसे मान लिया है दो मेले लगते हैं, एक कार्तिक पूर्णिमा और एक लगता है अगस्त में, 7, 8, 9, 10।
1: आपकी ओर से कोई संदेश हमारे श्रोताओं के लिए?
0: हम तो यही कहना चाहेंगे कि बिद्रकुटी पे एक बार अपना माँ दर्शन करें और महादेव बिद्र का जो प्रसाद है श्री कृष्ण ने जो खाया उसको ग्रहण करें। और हम ये कहना चाहेंगे अपने श्रद्धालुओं की गंगा जी पर जो कूड़ा कचरा है, श्रद्धालु श्रद्धाएं माले नहाने के लिए जा रहे हैं या अपना कुछ भी कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें स्वच्छता का खुद ही विशेष ध्यान रखें। ऐसा स्थिति रही तो गंगा जी भी देखेंगे श्रद्धा की, हाँ गंगा जी कभी है थी या ऐसा था। तो मैं अपने श्रद्धाओं से यही कहना चाहूंगा कि गंगा जी पर किसी प्रकार की कुछ सामग्री अगर लेके जाए तो वो अपना कायदे से उसको अर्पण करें।
1: सुनकर गर्व होता है कि हमारे जनपद में एक ऐसा स्थान है जो अध्यात्म और सच्चाई का प्रतीक है। यही वजह है कि यहाँ सभी पर्वों पर श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा रहता है।
2: दिव्यम, विदुर जी की इसी सेवा भावना को आगे बढ़ा रहा है यहाँ का वृद्धाश्रम। जो बुजुर्ग समाज या हालातों की वजह से अकेले हो गए हैं उन्हें बिद्रकुटी की इस शांत गोद में एक नया परिवार मिला है।
1: बिल्कुल ऋषिका, आइए सुनते हैं आश्रम की मुख्य संयोजिका और वहाँ रह रहे बुजुर्गों से हुई हमारी बातचीत।
2: आइए बात करते हैं वृद्धाश्रम की संचालक और प्रभारी श्री लक्ष्मी गुप्ता जी से। मैम, आप वृद्धाश्रम के बारे में पहले हमें थोड़ा सा बताइए।
3: वृद्धाश्रम में हमारे यहाँ 60 साल से जैसे ऊपर के व्यक्तियों को रखा जाता है, इनके रहने की खाने की दवाइयों की सारी व्यवस्था है।
2: और किस तरह से आप इनकी देखरेख करते हैं?
3: देखरेख बस इनका टाइम पे भोजन हो जाए, चाय नाश्ता, इनका घूमना आना जाना, बीमारी होती है तो ये हॉस्पिटल भी ले जाते हैं लोगों को और वैसे यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप भी लगाई जाती है।
2: स्वास्थ्य कैंप कब कब लगते हैं यहाँ पर?
3: हमारे यहाँ बिजनौर के द्वारा 15 दिन में एक बार लगता है और PHC है हमारी गंज में, वहाँ से साप्ताहिक कैंप लगता है, सप्ताह में एक बार।
2: और यहाँ कौन कौन सेवा दे रहे हैं, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं?
3: 12 लोग स्टाफ है जो इनकी सेवा के लिए हर टाइम रहते हैं यहाँ। इनका टाइम पे भोजन है, नाश्ता है इनका, और भी इनके कपड़े धोना है, किसी को नहलाना है और बस इनके हॉल की साफ सफाई है, ये सब स्टाफ भी द्वारा देखभाल को।
2: तो बाहर से भी कोई लोग अगर सेवा देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं?
3: काफी समय से भी आते जाते रहते हैं, जिसको जो करना है अपनी स्वेच्छा के ऊपर है वो कर देते हैं इन लोगों के लिए। किसी को भोजन कराना है, किसी को नाश्ता कराना है, किसी को कोई कपड़े देने, बहुत सारी चीजें आती जाती रहती है, बस किसी तरह कहीं ना कोई परेशानी नहीं।
2: आइए जानते हैं यहाँ उपस्थित कुछ सेवकों से।
1: सर, आपका नाम?
4: गौरव जोशी।
1: गौरव जी, इस वृद्धाश्रम में कितने हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनका पालन पोषण कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं और इस वृद्धाश्रम की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप लोग क्या करते हैं?
4: हमारे यहाँ पर समाज के लोग द्वारा लगभग यहाँ पर 55 वृद्ध रह रहे हैं, 55 महिला पुरुष दोनों। यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था सरकार की तरफ से, कपड़ा लत्ता खाना पीना, 2 टाइम नाश्ता है, दोपहर सुबह 2 टाइम खाना है, दोपहर शाम रात को दूध है। स्वास्थ्य का इनका इनके लिए मेडिकल टीमें लगी हुई है 2-3 बिजनौर से, CMO साहब ने, DM साहब ने, यहाँ पर वृद्धाश्रम के लिए।
1: और यदि किसी और अन्य व्यक्ति को वृद्धाश्रम में जुड़ना हो तो वो किस तरह जुड़ सकते हैं?
4: उसकी ID, एक आधार कार्ड की फोटोस्टेट, एक फोटो।
2: आइए जानते हैं यहाँ उपस्थित कुछ वृद्ध जनों से।
1: आपका नाम?
5: प्रताप सिंह है।
1: प्रताप सिंह जी, आप कहाँ से हैं और वृद्धाश्रम में कब आए?
5: बिजनौर 3-4 महीने 5 महीने हो गए।
1: तो किस तरह की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं?
5: बहुत बढ़िया, कोई कमी नहीं है।
1: क्या आपको यहाँ पे कुछ नए दोस्त मिले?
5: हमारे ये पुराने वाले, ये जान पहचान के निकले।
1: तो आप यहाँ दिन भर में क्या क्या कार्य करते हैं?
5: बस तब बैठे अपना, जब लाइट आती है अपना TV देख लिया और क्या।
1: श्रीमान, दारानगर गंज में दारानगर का अर्थ क्या है?
0: जो दारानगर है पीछे इसकी एक थोड़ी सी व्याख्या है। भारत काल में जब कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ तो बेचारे योद्धा मारे गए, उनकी पत्नियां विधवा हो गईं। तो सोचा कि चलो ये विधवाएं हैं बेचारी, कहाँ जाएंगी कहाँ नहीं, तो उनको बिद्रु की शरण में लाया गया। तो विधवाओं का एक पर्यायवाची में बदल दिया गया कि विधवाओं को दारा भी कहते हैं। तो उसी काल से इस बस्ती का नाम दारानगर रखा गया।
2: आपका नाम?
6: ओमवती।
2: ओमवती जी, आप हमें वृद्धाश्रम में आपके अनुभव के बारे में थोड़ा बताइए।
6: वृद्धाश्रम में सब सही है, सब ठीक ठाक है, सब चीज की मौज है, कोई परेशानी नहीं है किसी को भी, किसी तरह की ना किसी से शिकायत है, सब ठीक ठाक मिलता है, टाइम से मिलता है और टाइम से सबका।
2: को कितना समय हो गया है यहाँ पर?
6: मुझे हो गए जी 6-7 महीने।

0: प्रणाम।
1: राधा।
0: राधा जी ये बताइए कि आप इस वृद्धाश्रम में कब से जुड़े?
1: मुझे 5वां साल लग रहा है।
0: इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ऐसी कौन सी वो खास बात है जो आपको यहीं पे महसूस होती है?
1: बस शांति यही है और ठीक है, खाना पीना सब ठीक है।
0: और आपकी जो सहेलियाँ हैं?
1: मेरी सहेलियाँ भी सब ठीक है।
2: अब जानते हैं के मेंबर्स हैं। आपका नाम?
3: मुन्नी।
2: और कब से आप यहाँ रह रहे हैं?
3: मुझे हो गए 19 साल।
2: हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ की सुविधाओं के बारे में या कोई परेशानी आपको?
3: परेशानी नहीं, सब बढ़िया, सब तरह से बढ़िया ही बढ़िया, आराम से टाइम कट रहा, बहुत बढ़िया, खुशी से सब चीज खाने पीने की सब टाइम पे मिलती, बाहर के लोग भी आते रहते रहे।
2: मन लग जाता है आपके यहाँ?
3: बहुत बढ़िया मन लग रहा।
2: श्रोताओं, इनकी बातें सुनकर एहसास होता है कि बुढ़ापे को अगर सही माहौल और सम्मान मिले तो जीवन का आखिरी पड़ाव भी कितना खूबसूरत हो सकता है।
0: महात्मा विदुर ने अपनी विदुर नीति में समाज और रिश्तों को सहेजने के बड़े गहरे संदेश दिए। आज इस वृद्धाश्रम में बैठे हमारे बुजुर्ग भी अनुभव की चलती फिरती विदुर नीति ही तो है।
2: श्रोताओं, जब भी आप विदुर कुटी दारानगर गंज घूमने जाएं, तो सिर्फ मंदिर या गंगा घाट देखकर ना लौटें, दो पल इस आश्रम के भीतर भी गुजारें। इन बुजुर्गों के पास बैठना, उनकी स्मृतियों को सुनना आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा।
0: जी हाँ, विदुर कुटी की यह पावन यात्रा हमें सिखाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वह हमारे बुजुर्गों के अनुभव में भी तैरता है। अपनी जड़ों का सम्मान करें और अपनों को प्यार दें।
2: श्रोताओं, आज के लिए बात आसपास की के इस विशेष अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद।
2: नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आस पास की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में सुहाना सफर।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुहाना सफर और मैं हूं आपकी अपनी साथी सदफ सैदी, जो बनी रहूंगी आपके साथ इस खास सफर में।
1: और सदफ के साथ मैं हूं आपका साथी मनोज वर्मा। सुहाना सफर सुनने वाले सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हर साल आपने अपने साथ कुछ यादें लेकर आता है, कुछ खुशियां, कुछ हैरान कर देने वाले पल, कुछ उपलब्धियों के साथ साथ कुछ ऐसी बातें जिन्हें दुनिया लंबे समय तक याद रखती है।
0: बिल्कुल सही कहा मनोज जी, और आज हम अपने श्रोताओं को लेकर चलेंगे एक ऐसे ही यादगार सफर पर, जहां हम बात करेंगे साल 2022 की। इस साल के खेल जगत, फिल्मी दुनिया, विज्ञान समाज, तकनीक और उन खास घटनाओं की जिन्होंने पूरे साल सुर्खियां बटोरी हैं।
1: बिल्कुल सदफ, यानी आज का ये पूरा कार्यक्रम होगा 2022 की यादें, लोगों की बातें और दुनिया के बदलते हालात।
0: तो श्रोताओं, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि शुरू होने वाला है यादों का खूबसूरत कारवां।
1: बिल्कुल सही, कारवां खूबसूरत तो बहुत है सदफ। तो चलो बात करते हैं साल 2022 के पहले पड़ाव की। सदफ, जब 2022 शुरू हुआ था तब दुनिया अभी भी कोरोना महामारी के असर से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई थी।
0: जी बिल्कुल मनोज जी, लोग धीरे धीरे आम जिंदगी की तरफ लौट रहे थे, स्कूल खुलने लगे थे, कॉलेजों में फिर से चहल पहल लौट आई थी और बाजारों में रौनकें दिखाई देने लगी थी।
1: और सबसे अच्छी बात क्या थी पता है क्या तुम्हें सदफ?
0: नहीं पता, बताइए क्या बात थी।
1: लोग फिर से एक दूसरे से मिल पा रहे थे, मास्क के पीछे छिपी मुस्कानें अब खुलकर दिखाई देने लगी थी।
0: सच में 2022 ने लोगों का ये एहसास कराया कि जिंदगी वाकई में बेहद अनमोल है।
1: बेशक, बिल्कुल सही बात आपने की है कि भाई जिंदगी तो हमेशा ही अनमोल होती है, खूबसूरत होती है।

0: बस इतना रहता है कि हम उसको समझते कैसे हैं।
1: जी
0: फिलहाल हमने बात तो कर ली, अब यह है गीत की बारी है, सुनवा दिया जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए तो भाई सुनवा देते हैं हम 2022 की फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी का ये गीत।

0: और सदफ,
1: जी
0: अब हम बात करते हैं खेल जगत की, जहां 2022 में रोमांच भी था, रिकॉर्ड भी थे और भावनाएं भी थीं।
1: जी मनोज जी, क्रिकेट प्रेमियों के लिए 2022 काफी यादगार रहा, जिसमें भारतीय टीम ने कई शानदार मुकाबले खेले।
0: और एक खिलाड़ी जिसने पूरे साल लोगों का दिल जीता, वो रहे हैं सूर्य यादव।
1: जी बिल्कुल सही मनोज जी, उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लगता था जैसे मैदान पर कोई कलाकार खेल रहा है। 360 डिग्री शॉट्स, तेज रन और कॉन्फिडेंस से भरा अंदाज।
0: वहीं

0: विराट कोहली ने भी शानदार वापसी की, उनकी सेंचुरी का इंतजार कर रहे फैंस आखिरकार खुश हो गए।
1: और मनोज जी, वो एशिया कप का मैच जब विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाया था, लोग खुशी से झूम उठे थे।
0: बिल्कुल। और सदफ 2022 में महिला क्रिकेट ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी।
1: हाँ जी, भारतीय महिला खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से ये साबित किया कि वो किसी से कम नहीं।
0: आज लड़कियां सिर्फ पढ़ाई या नौकरी तक सीमित नहीं है सदफ, वो खेलों में भी देश का नाम रोशन कर रही हैं।
1: मनोज जी, जब बात हो रही है तो हम कॉमनवेल्थ गेम्स को कैसे भूल सकते हैं?
0: बिल्कुल सदफ, साल 2022 में भारत ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, निखत जरीन जैसे खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर देश को गर्व महसूस कराया।
1: जी हाँ, और नीरज चोपड़ा का नाम तो हर युवा की जबान पर मौजूद है।
0: उन्होंने युवाओं को सिखाया कि मेहनत और अनुशासन से हर सपना पूरा हो सकता है।
1: और मनोज जी, अब जब हम बात कर ही रहे हैं खेल जगत की, तो इस इवेंट का जिक्र हम कैसे कर सकते हैं जिसको पूरी दुनिया याद कर रही है, फीफा वर्ल्ड कप 2022।
0: बिल्कुल सदफ, इसे कैसे भूल सकते हैं। इस इवेंट को कतर में आयोजित किया गया था और इस टूर्नामेंट ने फुटबॉल प्रेमियों को भावुक कर दिया था।
1: और फाइनल मैच के तो क्या ही कहने, अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच रोमांच से भरा मुकाबला हुआ।
0: और लियोनेल मैसी का सपना आखिरकार पूरा हुआ जब उन्होंने वर्ल्ड कप हॉकी उठाई। दुनिया भर के फैंस की आंखें नम हो गई थी।
1: सच में कुछ जीत सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं, वो भावनाएं बन जाती हैं, वो एक सपना बन जाती हैं जो दुनिया को नजर आने लगती हैं।
0: बेशक। और भाई देखिए, हमारे जो श्रोता लगातार, वो तो बात नजर होने की आई थी, नजर कर रहे थे, और
1: बिल्कुल।
0: हमारे श्रोता अब इंतजार कर रहे हैं। भाई हैं तो वो उस पार, माइक के इधर हम हैं, तो
1: जी
0: भाई वो भी जो उनका जो इंतजार है ना, जो सुनेंगे अपने कानों से और दिल में उतारेंगे, तो
1: जी
0: उस सुहाने सफर को आगे बढ़ाते हैं और
1: और
0: एक गीत और
1: बिल्कुल
0: सुनवा देते
1: बिल्कुल।
0: हैं।

0: सदफ गीत
1: जी
0: हमारे श्रोताओं ने सुन लिया,
1: जी
0: और भाई हम ये चाह रहे हैं कि अपने श्रोताओं का इस 15 मिनट में एक बार फिर स्वागत कर दें, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल
0: हमारा कार्यक्रम जो है ना भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में सुहाना सफर
1: सुन
0: रहे
1: रहे
0: हैं।
1: हैं।
0: तो भाई एक बार फिर हम दोनों की जानिब से आप सम्मान स्वागत स्वीकार करिएगा, क्यों सदा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और श्रोताओं अब चलते हैं फिल्मी दुनिया की ओर, जहां 2022 में बड़े पर्दे पर कई धमाकेदार फिल्में आई।
1: सबसे पहले बात करते हैं फिल्म RRR की। इस फिल्म ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया।
0: और आपको याद है ना नाटू नाटू गाना और हर शादी हर पार्टी और हर रील में
1: यही
0: वो गाना
1: गाना
0: सुनाई
1: सुनाई देता
0: देता
1: है।
0: है। इतना ज्यादा फेमस गाना था कि लोगों ने उस गाने के स्टेटस सीखने की पूरी
1: पूरी कोशिश की,
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: स्टेप्स सीखने की पूरी कोशिश की थी भाई। ये
1: जी
0: फिल्म उस
1: जी
0: दौर में हमने भी देखी थी।
1: बहुत ही बढ़िया ये गीत था और हर बंदे ने इसके मतलब गाने पे इस पे हर बंदा थिरकता था।
0: बिल्कुल।
1: और इसके बाद फिर आई फिल्म KGF चैप्टर 2।
0: जी बिल्कुल, यश का अंदाज डायलॉग और एक्शन लोगों ने खूब पसंद किया था।
1: कई लोगों ने तो फिल्म देखकर वही स्टाइल्स भी कॉपी करना शुरू कर दिया था।
0: सदफ 2022 में एक और चीज थी जो बहुत लोकप्रिय हुई, जानती हो क्या थी वो?
1: नहीं बता दीजिए आप क्या थी।
0: बिल्कुल, तो OTT प्लेटफॉर्म्स।
1: OTT प्लेटफॉर्म,
0: बिल्कुल
1: मनोज जी, OTT प्लेटफॉर्म जिससे लोग घर बैठे वेब सीरीज और फिल्में देखने लगे थे।
0: बिल्कुल, तभी तो लोग कहते थे कि थिएटर बाद में जाएंगे, पहले
1: OTT
0: पर
1: पर
0: देख
1: फिल्म
0: लेते
1: देख लेंगे।
0: हैं।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और भाई देखिए ये बात हमने OTT की प्लेटफॉर्म की भी
1: जी
0: की है ना, और फिल्म तो OTT प्लेटफॉर्म दिखाते ही, और फिल्मों में गीत होते हैं। तो फिलहाल एक गीत और 2022 की फिल्म का हम अपने श्रोताओं को सुनवा
1: बिल्कुल
0: देते हैं, और उसके बाद सदफ आगे बढ़ेंगे।
1: जी बिल्कुल,
0: ठीक है,
1: पहले आप गीत का आनंद लीजिए।
0: बिल्कुल।

0: ये जो सन चल रहा था ना 2022 वाला,
1: जी
0: तो इसमें दौर कुछ ऐसा आया कि गीतों की जो है ड्यूरेशन होते हैं ना, वो भी थोड़ा सा कम की तरफ आई।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और बात करें संगीत की दुनिया की, तो 2022 के गानों ने लोगों के दिलों तक अपनी छाप छोड़ी। क्यों सदा?
1: बिल्कुल, वाकई में ऐसा हुआ है कि 2022 में कई गाने लोगों की जुबान पर छाए रहे। जैसे 2022 में आई कुछ फिल्में, जिनमें से एक थी ब्रह्मास्त्र।
0: वाकई में गाना ही ऐसा है कि इंसान गुनगुनाने पर मजबूर हो जाए। तो कार्यक्रम में वापस आते हैं और हम बात कर रहे थे श्रोताओं संगीत की दुनिया की, तो अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल जैसे कलाकारों ने लोगों के दिलों को छू लिया।
1: दिल को छू जाने से याद आया मनोज जी कि 2022 में आई फिल्म कलंक के सुपरहिट सॉन्ग्स ने भी दिलों को छुआ।
0: तो आइए सुनते हैं, और भाई सुनवाएंगे अभी आपको गीत हम। और सदफ, ये गाना सुन के तो मैं समझ चुका हूं कि कुछ गाने ऐसे थे साल 2022 के जिन्हें सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती थी।
1: बिल्कुल मनोज जी, और कुछ गाने ऐसे हैं जिन्हें सुनकर लोग इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं,
0: हाँ
1: उनके स्टेप्स
0: बिल्कुल
1: फॉलो करते हैं और उन पर नई नई कलाकारियां करके दिखाते
0: बिल्कुल,
1: हैं,
0: हाँ जैसे 2022 में आई फिल्म भेड़िया का अपना बना ले सॉन्ग
1: जो अभी
0: इंस्टाग्राम
1: हमने
0: पर
1: सुना,
0: बिल्कुल रील्स पर बहुत वायरल हुआ था और बहुत लोगों ने
1: इसको
0: इसको
1: पसंद भी किया।
0: बिल्कुल
1: ये गीत तो हम सुन चुके, अब
0: बिल्कुल
1: हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं एक और 2022 में आई फिल्म का गीत।
0: बिल्कुल सुनवा देते हैं।

0: सदफ गीत हमारे श्रोताओं ने सुन लिया,
1: जी,
0: कार्यक्रम को
1: और आगे की ओर बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल, तो क्या कहना चाह रही हो आप?
1: कार्यक्रम को अब हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और अब रुख करते हैं विज्ञान और तकनीक की ओर।
0: बिल्कुल
1: मनोज जी, 2022 में दुनिया ने अंतरिक्ष की कुछ ऐसी तस्वीरें देखी जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया।
0: बिल्कुल सदफ, वेब्स
1: जेम्स वेब,
0: स्पेस। अच्छा
1: जी, जेम्स वेब ने
0: अच्छा जेम्स
1: स्पेस।
0: वेब।
1: हाँ
0: हाँ,
1: जी,
0: थोड़ा सा ये हमें लग रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई है क्या। खैर, हो जाता है, लाइव काम कर रहे हैं हम। स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की
1: अद्भुत
0: अद्भुत
1: तस्वीरें खींची।
0: भेजी थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लग रहा था जैसे सितारे खुद अपनी कहानी सुना रहे हों।
0: श्रोताओं, 2022 वो साल रहा जिसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा भी बहुत हुई।
1: बेशक मनोज जी, लोग समझने लगे कि आने वाला वक्त टेक्नोलॉजी का वक्त है।
0: आज मोबाइल फोन सिर्फ बात करने के लिए नहीं रहा, बल्कि पढ़ाई, काम और मनोरंजन का साथी बन चुका है।
1: जी श्रोताओं, 2022 सिर्फ एक साल ही नहीं था बल्कि यादों, अनुभवों, संघर्षों और एक खुशियों भरा सफर रहा।
0: बिल्कुल, और
1: इन खुशियों को थोड़ा और बढ़ाते हैं और एक और गीत अपने कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा ही बचा है।
0: बिल्कुल, तो बातें हमारे पास बहुत हैं,
1: बहुत
0: लेकिन
1: है।
0: बस चलते चलते एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए और
1: बिल्कुल
0: रहेगा हम दोनों की तरफ से।
1: जी,

0: श्रोताओं
1: बोलो,
0: इस साल ने हमें सिखाया कि जिंदगी हर साल आगे बढ़ती रहती है, कभी जीत मिलती है और कभी सीख मिलती है, लेकिन हर साल हमें पहले से थोड़ा और मजबूत बना देता है।
1: बिल्कुल।
0: उम्मीद करते हैं श्रोताओं आज का ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने एक नए सफर में एक नए साथी के साथ, और ऐसे ही आपके लिए लेकर आते रहेंगे हर रोज ये कार्यक्रम जिसका नाम है सुहाना सफर। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ये कार्यक्रम।
1: और इसी के साथ आज का सुहाना सफर संपन्न करने की मुझे और मेरी साथी सदफ को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में सुहाना सफर, और इस सफर में आज हमने आपसे बात की सन 2022 की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत तुम्हारे। तो गीत तुम्हारे कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मनोज वर्मा और मेरे साथ मेरी साथी
1: सदाब सैदी का प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार। एक बार फिर हम अपने श्रोताओं का दोनों मिलके यहां से यानी कि नजीबाबाद आकाशवाणी की जानिब से इस स्टूडियो से बैठकर स्वागत करते हैं, है ना।
1: जी
0: और सिलसिला वही रहेगा, आपके व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने, आपकी पसंद के गीतों को सुनवाने की पूरी कोशिश करना, है ना, इस आधे घंटे में, है ना, रहेगा पूरा हमारा प्रयास रहेगा, सफल प्रयास कहूंगा मैं इसको। लेकिन सदफ
1: जी
0: करना क्या होगा हमारे श्रोताओं को?
1: हमारे श्रोताओं को अपना मोबाइल उठाना है और उसके ऊपर व्हाट्सएप पर जाना है। व्हाट्सएप पर जाने के बाद आप लिखिए अपना नाम, अपना पता, अपनी फरमाइश और व्हाट्सएप मैसेज को भेज दीजिए हमारे मोबाइल नंबर पर। नंबर है 9457078288।
0: और अगर मैं हिंदी में बता दूं अपने श्रोताओं
1: बिल्कुल
0: को तो
1: बिल्कुल
0: भाई इसको जरा सा याद कर लीजिए। वैसे हमारे श्रोताओं को

0: 9457708288।
1: और अगर मैं हिंदी में बता दूं अपने श्रोताओं को, तो भाई इसको जरा सा याद कर लीजिए। वैसे हमारे श्रोताओं को
0: इसे विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुरहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल का। ये अगला मैसेज हमें आया है कस्बा भोजपुर मुरादाबाद से, भेजने वाले हैं नरेश कुमार कश्यप, रविंद्र कुमार कश्यप, शिवानी, स्वाति, मानसी कश्यप। और अगला मैसेज, ये मैसेज हमें मिला है रिंगणी छत्तीसगढ़ से, भेजा है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिना कौसल। अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें मिला है शाही मार्केट सहारा जिला बिजनौर से, भेजने वाले हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी।
1: इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं हमारे श्रोता सप्तरंग श्रोता परिवार, कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनवणे भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से हमारे नियमित श्रोता बिल्कुल अभी जुड़े हैं भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरश। इसके अलावा ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे कुमार, संचित कुमार, प्रथमेश कुमारी प्रणाली, कुमारी सर्वद, कुमारी सानवी और कुमारी कल्पना देशमुख। के अलावा इस गीत को सुनने के लिए हमारे नियमित श्रोता लगातार जुड़ रहे हैं भाई, जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। के अलावा ये हमारे श्रोता जुड़े हैं बिल्कुल अभी मोहल्ला धर्मदास नजीबाबाद के श्रोता हैं हमारे गुलाम हसन, निशात बानो, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, साबरा खातून, शहजादी, शराफत अली, अब्दुल रहमान, रानी बिटिया, मदीहा। और हमारे श्रोता कह रहे हैं कि साहब हमें भी शामिल कर लो, आप तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि साहब अपने सभी श्रोताओं को हम शामिल करें। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का भी इनके साथ जुड़े हैं। सदफ
0: जी
1: थोड़े से मैसेज और पढ़िएगा।
0: बिल्कुल, परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली मीरा सराय बदायूं से
1: जी जी
0: आफरीन
1: जी।
0: खान और जमीर खान।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोता पूरा लिस्ट बना के भेजते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैसेज हमें आया है गुजरात गांधी ग्राम से, भेजने वाले हैं प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी। अगली फरमाइश हमें मिली है जिला किशनगंज बिहार से, भेजने वाले हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया।
1: इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे नियमित श्रोता आप भी हैं सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग। के अलावा यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अगले एसएमएस में, ये सीरियल वाइज हमने पढ़े हैं। इसके अलावा भाई हमारे श्रोता जो लगातार जुड़े हुए हैं वो ये जुड़े हुए हैं वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। तो सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को इनके पसंद का गीत।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: चलिए

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: गीत तुम्हारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इस कार्यक्रम में इस समय मैं मनोज वर्मा और मेरे साथ मेरी साथी सदफ जैदी आपसे जुड़े हुए हैं, और सदफ बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार हैं आपके अगले एसएमएस को।
2: जी, ये अगला

0: नमन केजल, अजीत, रघुवीर, वेदिका, नित्यम, ओम प्रकाश और परिवार के समस्त सदस्य।
1: ये मैसेज पढ़िएगा।
0: ये मैसेज हमें मिला है ग्राम महेशपुर खेम से, भेजने वाले हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सकलेनी और गुलशन साहिबा का।
1: ये मैसेज पढ़िएगा।
0: जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिना नूर।
1: उसके अलावा
0: ये मैसेज हमें आया है बीड शहर महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं नंद किशोर, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाबा साहेब कारवां, रामनिवास अग्रवाल और धनंजय।
1: ये
0: धनंजय और पीबी कुल
1: के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सदर
0: ये हमें मिला है प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठण से, भेजने वाले हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल जाधव, बेबीसिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव का।
1: ये हमारे पास मैसेज है उत्तम नगर, हमारे दिल्ली के नए, बिल्कुल नए तो नहीं कहेंगे, पुराने श्रोता हैं बहुत हमारे, लेकिन हमारे पास इतने SMS होते हैं कि भाई कहीं ना कहीं तो कुछ तो रहते ही हैं। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा, सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता आप भी हैं। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, चेतन और सुलोचना भगत के अलावा हम आपको बता दें कि इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया के अलावा ये मैसेज हमें मिल रहा है भाई, कहाँ से मिल रहा है, जी हाँ, नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई, अब्दुल रहमान, सैयद खलील, मुबीन भाई, MD यासिन, शेख चांद, फारूक फूलवाले, मुसा करीम और इनका पूरा परिवार। और ये मैसेज मुझे मिला है बिल्कुल अभी, नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज हाशमी, सलमा, असद अरहाम, मोहम्मद आलम हाशमी और इनका पूरा
0: परिवार।
1: तो सुनवा देते हैं इनको हम ये कार्यक्रम का अगला भी गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, फिल्म का नाम है यादों के मौसम और इसमें आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल के साथ, अभिनेता सुरेश ओबेराय।

वो भीगे बाल, वो भीगा बदन, वो भीगी भीगी हर धड़कन, वो गाल हया में डूबे हुए, वो होंठ वफा से लरसे हुए, वो आंखें सोई सोई सी, वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो, क्यों खामोश हो तुम? इस दिल से क्या नाराज हो तुम?

क्या अब भी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है? क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है? क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है? क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है?

मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

0: संदेश से पहले जो गीत आपने सुना था उसकी फिल्म का नाम था यादों के मौसम। अनुराधा पौडवाल और अभिनेता सुरेश ओबेरॉय की उसमें आवाजें थी। एक अंतिम गीत और है सदफ हमारे पास में,
1: जी
0: और हम ये चाहते हैं कि कुछ एसएमएस पढ़ें। तो एसएमएस पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ खत भी हैं, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ खत को पढ़ दिया जाए।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: पहले
0: ये
1: खत
0: खत
1: शामिल कर
0: हैं,
1: लेते हैं।
0: बिल्कुल, जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और शीतल कश्यप। मोहल्ला अफगानान शिरकुट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर और जन्नत। सहारनपुर दाऊद सराय से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, इरम साबरी, अमन साबरी। दूल्हापुर मुरादाबाद से हमारे श्रोता हैं महबूब दुकानदार, साहिबा महबूब और उनके परिवार के सभी सदस्य। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या, भाई सुच्चा पाठक भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। ग्राम लुहेड़ी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, आराधना, अरविंद, रागिनी और इनका पूरा परिवार। कस्बा चिलकाना से मोहम्मद जरीफ अंसारी, नईम अंसारी, आमिर अंसारी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरव शर्मा। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं एसएमएस के जरिए। ये हमारे श्रोता हैं भाई, मैसेज में लिखा है इन्होंने, लुधियाने वाले अनिल विनोचा, शम्मी विनोचा, अक्षय विनोचा, कनिका, सहज, गीत अरोड़ा और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे श्रोता आप भी हैं, विजय सुरलकल, रतनमाला सुरलकल, गौरी सुरलकर, मोताला महाराष्ट्र से। इसके अलावा हमारे श्रोता देखिए लगातार जुड़वाएं, शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। और मैसेज हमने पढ़ दिया लेकिन श्रोता उसके बाद भी कह रहे हैं कि भाई हमें शामिल कर लीजिए और चेक कई बार हो जाता है। और ये मैसेज मुझे मिल रहा है, जी हाँ, यहाँ से बहुत नीचे था और कुछ फोटो भी हैं इनके पास में। लाल माता सुदामा नगर अटलाई, जिला झालावाड़, राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी और बागरी मोहल्ला अटलाई, जिला झालावाड़, राजस्थान से मनभावन, शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण, कुंदी बाई और इनका पूरा परिवार। और ये मैसेज सदफ पढ़ो जरा।
1: ये मैसेज हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार का।
0: अगला मैसेज,
1: अगला मैसेज है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और इनके समस्त परिवार का।
0: ये मैसेज,
1: ये मैसेज हमें आया है जलालाबाद वेस्ट से, भेजने वाले हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा।
0: ये मैसेज,
1: ये है बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान।
0: इसके अलावा ये मैसेज,
1: इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज आया है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से, भेजने वाले हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान।
0: और
1: और
0: ये अंतिम गीत है, सुनवाते हैं आपको आप सबकी पसंद का ये अंतिम गीत।

0: और सदफ, इस गीत के साथ मैं अपने श्रोताओं से अनुमति लेना चाहूँगा, तो गीत तुम्हारे कार्यक्रम से मुझे यानी मनोज वर्मा को दीजिए अनुमति, और आपके साथ यहाँ से रहेंगी सदफ जैदी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। 11 बज चुके हैं और अब पेश है चित्रपट संगीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम का पहला गीत, अरिजीत सिंह, शिल्पा और अनिरुद्ध की आवाज में। गीत लिखा था कुंवर ने, गीत को संगीत दिया था अनिरुद्ध ने। फिल्म का नाम था जवान।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

श्रोताओं, अभी आपने सुना वाजिद की आवाज में ये गीत। गीत लिखा था जलीस शेरवानी ने, गीत की धुन तैयार की थी साजिद वाजिद ने, फिल्म का नाम था वांटेड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत की ये अगली पेशकश। गीत है शब्बीर अहमद का, संगीत तैयार किया है प्रीतम ने, फिल्म का नाम है अपना सपना मनी मनी, आवाज है मिक्का सिंह की।

इस समय आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश। फिल्म का नाम है धूम 2। आवाज है सुनिधि चौहान की, गीत समीर का है और संगीत प्रीतम का।

सुनिधि चौहान को अभी आपने सुना फिल्म धूम 2 में। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। कुणाल गांजावाला की आवाज में फिल्म का नाम है क्रिश। शब्द रचना विजय की है और संगीत राजेश रोशन का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना इब्राहिम अश्क का लिखा ये गीत। गीत का संगीत दिया था राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम था कोई मिल गया, आवाज थी तेज और साथियों की। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है सेंगिस किंग, आवाजें हैं सुजी और साथियों की। गीत लिखा है मयूरपुरी ने और गीत की धुन तैयार की है प्रीतम ने।

इस समय आप आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश सुखविंदर सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है एक था टाइगर। गीत लिखा है नीलेश मिश्रा ने और गीत के लिए संगीत दिया है सुहेल सेन ने।

पतियाला हाउस, अभी आपने सुना। इस फिल्म में महालक्ष्मी अय्यर, जसबीर जस्सी और साथियों को। गीत लिखा था अन्विता दत्त ने और गीत के लिए संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत का ये अगला गीत। गीत लिखा है आनंद राज आनंद ने और इस गीत की धुन भी आनंद राज आनंद ने ही बनाई है। गीत को आवाज दी है आनंद राज आनंद ने और फिल्म का नाम है वेलकम।

हंसिका अय्यर की आवाज में सुना भी आपने ये गीत फिल्म रावण से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत की ये आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है झूम बराबर झूम, आवाजें हैं शंकर महादेवन और साथियों की। गीत लिखा है गुलजार ने, गीत के लिए संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.67 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। अब हम अपने श्रोताओं को हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा बता दें। अब से कुछ ही देर में यानी के 12:05 पर हमारे सभी श्रोता सुनेंगे व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कंपेयर्ड कार्यक्रम जिंदगी लाइव। श्रोताओं, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको अपने फोन के व्हाट्सएप पेज पर जाकर अपना नाम, अपना पता और आज का हमारा विषय जो कि है लू यानी कि हीट वेव से हारती जिंदगी विषय पर अपने सुझाव लिखकर भेज देने हैं। नंबर नोट कीजिए 9457078288 पर। लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा सुनिएगा दिन में 1:45 पर, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे गढ़वाली लोकगीत। गायक कलाकार होंगे अमरदीप सिंह नेगी। राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका 9:30 पर और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम 10:00 हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। हमारी बहनें सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत दिन में 1:15 पर। श्रोताओं, दिन में 2:30 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक ही गीतकार के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे गीतकार योगेश के कुछ गीत। आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है, आप सुनेंगे शाम 5:00। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक और पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी रोजाना की तरह शाम 5:15 पर। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 6:45 पर आप सुन सकते हैं डॉक्टर अपर्णा की वार्ता। वार्ता का विषय होगा बिना पंखों के भी उड़ता आशा का पक्षी। शाम 7:32 पर कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे रामेश्वर प्रसाद शर्मा के गाए चंद भजन। शाम 6:05 पर हमारे सभी किसान भाई सुन सकते हैं कार्यक्रम कृषि जगत। कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे लोकगीतों और रागनियों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंचरी। कार्यक्रम के दौरान आप कार्यक्रम के अंतर्गत कॉल करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद की लोकगीत और रागनियां। फिल्मी गीत आप सुन सकते हैं हमारे केंद्र से शाम 6:55 पर कार्यक्रम छाया गीत के अंतर्गत, 8:00 कार्यक्रम गीत संध्या के अंतर्गत और रात 8:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत। हम अपने श्रोताओं को पुनः

याद दिला दी, राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका रात 9:30 पर और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन के 12:05 हुए हैं और अब पेश है आप सभी के व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव। कार्यक्रम जिंदगी लाइव में आप सभी का स्वागत है और आज का आपका ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं सदफ सैदी। श्रोताओं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। प्यारे प्यारे पंक्तियों के साथ और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जिंदगी लाइव। श्रोताओं, शुरू हो चुका है आपका ये अपना कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हमें इंतजार रहता है आपके ढेर सारे व्हाट्सएप मैसेजेस का। तो देर किस बात की, आपके पास लगभग 50 मिनट अभी भी बाकी हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो उठाइए अपना फोन और जाइए व्हाट्सएप के टेक्स्ट मैसेज पर और व्हाट्सएप पेज पर जाकर आपको लिखना है अपना नाम, अपना पता और उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। नंबर है 9457078288। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये कार्यक्रम। श्रोताओं, स्वस्थ शरीर निरोगी काया, ये कहावत हम सब ने सुनी है। अपने जीवन के किसी न किसी दौर में सभी के कानों तक ये आवाज जरूर आई है कि स्वस्थ शरीर निरोगी काया। जी हाँ श्रोताओं, इसका मतलब होता है कि जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारे पास बीमारियां भटकती भी नहीं। आज हम आपसे इसी विषय पर कुछ बातें करने वाले हैं और हमारा विषय हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लू। लू क्या होती है श्रोताओं? गर्मियों में चलने वाली बहुत तेज गर्म हवा या एक बहुत खुश्क हवा, जिसे शुष्क हवा भी बोलते हैं, उसको हम लू कहते हैं। इसे मौसम विभाग में अगर देखा जाए तो मैदानी इलाकों में जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तब ये हवाएं चलती हैं। इसके जलवायु परिवर्तन की वजह से या फिर पेड़ों की कटाई की वजह से इस तरीके के प्रकोप हर साल बढ़ जाते हैं। इसे अगर हम विज्ञानी भाषा में कहें तो इसे हम हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। ये एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या मानी जाती है। श्रोताओं, इससे हमें हमेशा बच के रहना चाहिए, हर तरीके से हमें इससे अपना बचाव करना चाहिए। देखिए श्रोताओं, शरीर जो है वही हमारा असली धन है। हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारा असली धन है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हम लोग ठीक हैं, हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल सही चल रहा है तो हमारे पास हर धन हो सकता है। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो आप धन नहीं कमा सकते। इसलिए हमेशा हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, गर्मियों के मौसम में भारत में बहुत तेज गर्म हवाएं चलती हैं, धूल भरी आंधियां आती हैं, हवाएं शुष्क हो जाती हैं, सूख जाती हैं। ऐसी गर्म हवाओं में लू का प्रकोप बहुत ज्यादा या इस हीट वेव का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम आपको बता देते हैं कि इससे के कारण क्या होते हैं, मतलब ये लूएं क्यों चलती हैं, क्या वजह होती है। तो श्रोताओं, इसकी वजह में क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है। जैसे कि तापमान में लगातार हीट की वेव बढ़ती चली जाती हैं तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। कई बार पेड़ों का ज्यादा काटना, पेड़ों का जो हम काट रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने घर बनाने के लिए, अपने आशियाने बनाने के लिए, मैरिज हॉल बनाने के लिए या फिर हम कई बार बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, जगहों को यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, अंधाधुंध कटाई की वजह से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है और गर्मियों का स्तर बढ़ जाता है। गर्मी बढ़ती है, तापमान बढ़ता है तो क्या होता है कि लू जो है, वो लू वाली जो हवाएं होती है, जो गर्म हवाएं होती हैं, वो चलने लगती हैं। श्रोताओं, हम बातों को थोड़ा विराम देते हैं, हमारे कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं इस कार्यक्रम में से शामिल कर लेते हैं। ये मैसेज हमें आया है जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से, भेजने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सुरेश, सोनू, राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य।

मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह ये लिखते हैं कि लू से बचाव के लिए इन्होंने कुछ हमें सुझाव लिख भेजे हैं। ये लिखते हैं, घर से जरूरी काम से ही बाहर निकलें, घर से छाता या कोई कपड़ा जरूर लेकर निकलें, और एक पानी की बोतल साथ में रखें, नींबू का पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, घर में पानी पीने का पानी ढककर रखें, सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की है। और एक और अगला मैसेज हमें दिखाई दे रहा है, ये मैसेज आया है विलेज एंड पोस्ट रहुंगली आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षय चौहान और भूमिका चौहान। ये लिखते हैं कि आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, हमें अपने आप को हर प्रकार से गर्मी धूप से बचाना है। मौसम के जो फल होते हैं, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, और जितने भी हमारी ठंडी सब्जियां होती हैं, लौकी, तुरई, करेला, टिंडा, इस तरीके की सब्जियों का हमें प्रयोग करना चाहिए। कॉफ़ी से बचना चाहिए, नींबू पानी या बेल का शरबत और शहद, दही की लस्सी, आम का पन्ना प्रयोग करना चाहिए, और समय के अनुसार योग व्यायाम भी करना चाहिए। श्रोताओं, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस हमारे कार्यक्रम में आज तो शुरुआत से ही शामिल हो गए हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा बहुत इनको और मोटिवेशन देते हैं। पहले सुनते हैं कार्यक्रम में ये प्यारा सा गीत।

पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे सी भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आकी, तभी जवान पाते जय। श्रोताओं, हम चर्चा कर रही हैं अपने स्वस्थ जीवन के बारे में, किस तरीके से हम इस हीट वेव से अपने शरीर को, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, बचा सकते हैं। श्रोताओं, कई बार ऐसा होता है कि स्वास्थ्य समस्याएं आ तो जाती हैं, लेकिन जाती बहुत समय से हैं, तो उनके आने जाने का समय या उनको आने से कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, लू लगने से हमें तेज़ बुखार आता है, सर दर्द होता है, चक्कर आता है और मांसपेशियों में ऐठन जैसी महसूस होने लगती है। ऐसी जब ये वाली सारी समस्याएं होती हैं, तो इन समस्याओं को ही हीट स्ट्रोक कहा जा सकता है। कई बार श्रोताओं, अगर ये गंभीर हो जाएं तो ये जानलेवा भी हो सकती है, इसलिए हमें इन चीज़ों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा घर का कोई बच्चा या बड़ा हमसे ये वाली बात बोल रहा है कि उसको सर दर्द हो रहा है या उसकी मांसपेशियों में ऐठन हो रहा है, तो हमें उसे निगलेक्ट नहीं करना है, हमें उसे अनदेखा नहीं करना है, हमें उसकी पूरी जाँच परख करनी है, पता लगाना है कि आखिर ऐसा क्यों हो सकता है। उसे लू लग गई हो सकता है वो हीट वेव के प्रभाव में आ चुका हो। कई बार ऐसा होता है श्रोताओं कि इस चिलचिलाती धूप में काम करने की वजह से जो हमारे बाहर रहने वाले लोग हैं, जो रोज़ाना अपने काम पर जाते हैं, रोज़ाना अपनी मजदूरी पर जाते हैं, वो इस तेज़ हवा के या तेज़ धूप के प्रभाव में आ जाते हैं और उनको उल्टियाँ आने लगती हैं, जी मसलाने लगता है, बुखार हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं श्रोताओं, ये छोटी छोटी मतलब सिम्टम्स आते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, छोटे छोटे एक शुरुआती दौर आते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हाँ, अब ये व्यक्ति जो है ये बीमार पड़ने वाला है, तो हमें उस शुरुआती दौर में ही उस बीमारी की रोकथाम कर लेनी चाहिए, तुरंत हमें प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए और सुधार ना होने की स्थिति में अपने चिकित्सक से, अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। तो श्रोताओं, एक और व्हाट्सएप मैसेज हमारे कार्यक्रम में शामिल हुआ है, ये है जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से, भेजा है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने। ये लिखते हैं, जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है तब तक मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए, जब मृत्यु सर पर आ जाएगी तब आप क्या ही कर पाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तक हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं तब तक हमें उसे ठीक रखने की कोशिश करते रहना चाहिए। ये आगे लिखते हैं कि इस समय काफी तेज गर्मी हो रही है और लू चल रही है, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और साथ में बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखें, अपने पशुओं को अनावश्यक तौर पर उन्हें धूप में ना खड़ा करें, उनको उनका ध्यान रखें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें और हमें अपने खाने पीने में जो मौसमी फल हैं जिनमें ज़्यादा पानी होता है, ऐसे फलों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा, ककड़ी, नींबू पानी, नारियल पानी, इन चीज़ों को हमें प्रयोग करना चाहिए। असल में श्रोताओं, क्या होता है कि हमारी जब लुएँ चलती हैं या मौसम में हवाएँ खुश्क हो जाती हैं, ड्राई हो जाता है मौसम, तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों की जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो उस पानी की कमी को हमें पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा तादाद में पानी पीना चाहिए। अगर आपसे ज़्यादा पानी नहीं पिया जा रहा है तो आप अपनी डाइट में ऐसे चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे आपके मौसमी फल हो गए और इस मौसम में खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये पानी को स्टोर करने वाली चीज़ें हैं, ये पानी को एक भारी मात्रा में अपने अंदर इकट्ठा करने वाली चीज़ें हैं। ये क्या करनी है, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे शरीर के अंदर जो पानी की कमी हो जाती है उसको पूरा करने में हमारी मदद करती हैं। तो रेगुलर बेसिस पे हमेशा हमें दिन में अपने मतलब खाने के अंदर फलों को, खीरा, ककड़ी को शामिल करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, जो हमारे शरीर की नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी, हमारे शरीर में पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। एक और व्हाट्सएप मैसेज हमारे यहाँ आया है, इस मैसेज को हम शामिल करते हैं, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से, भेजने वाले हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया और हिना कौसर। ये लिखते हैं, आपको हमारा प्यार भरा सलाम, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सदफ जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है, ईद मुबारक, आपको भी खैर मुबारक। टॉपिक बहुत अच्छा है, लू से बचने के लिए घर पर रहें, धूप में बाहर ना जाएं, तरबूज खरबूजा खाएं और नींबू पानी ज्यादा पिएं लू से बचने के लिए।
हाँ, इन्होंने आगे एक बहुत ही बढ़िया बात लिखी है। इन्होंने लिखा है कि लू से सिर्फ हमें अपने आप को नहीं बचाना, अपने परिवार को नहीं बचाना, इन्होंने लिखा है कि अपने पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना है। हमें अपने ही नहीं, हमें सारे पशु पक्षियों का ध्यान रखना है। अपने घर के बाहर एक छोटे से बाउल में, एक छोटे से कटोरे में पानी और दाना आप रख सकते हैं, जिससे जो हमारे पंछी हैं, जो हमारे आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं, उनका क्या होता है कि वो बेचारे, उनको कहाँ पानी मिल रहा है कहाँ नहीं। अगर आपकी छतों पर एक छोटा सा बर्तन पानी का रखा होगा तो उनकी प्यास बुझ जाएगी, उनका शरीर जो इस खुश्क हवा में कमज़ोर पड़ रहा है उनको उससे ताकत मिलेगी। तो इस तरीके से हम अपना ही नहीं, अपने पशु पक्षियों का ही नहीं, सभी का हम ख्याल रख सकते हैं, सभी का हम ध्यान रख सकते हैं।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: स्वागत आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम जिंदगी लाइव में। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं गर्म हवाओं यानी कि लू और हीट वेव के बारे में। श्रोताओं, अगर हमें बाय चांस लू लग जाती है या घर के किसी भी सदस्य को लू लग जाती है या वो हीट वेव के प्रभाव में आ जाता है, तब हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो उसको ठंडी हवा वाली जगह पर ले जाना चाहिए, जहाँ पर या तो एसी के नीचे उसको, मतलब जहाँ पर एसी की ठंडी हवा आ रही हो वहाँ पर उसको लेटाना चाहिए, या फिर तेज़ हवा या पंखा होना चाहिए या कूलर होना चाहिए, ऐसी ठंडी जगह पर उसको लेटाना चाहिए। उसके बाद उसके, अगर उसने बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहने हैं जैसे कि जीन्स पहनी है या फिर बहुत ज़्यादा टाइट उसके कपड़े हो रहे हैं, तो उनको लूज़ कर देना चाहिए। और ठंडे पानी की पट्टियाँ उसके माथे पर, हाथों पर और पैरों के तलवों पर लगानी चाहिए। उसको पीने के लिए हमें सिर्फ क्या देना है उस समय पर, ORS का पानी देना है, या फिर अगर आप जल्दी से नींबू पानी बना सकते हैं तो नींबू पानी ही दे सकते हैं, या फिर पानी के अंदर नमक और चीनी ये मिक्स करके नमक चीनी का घोल बनाकर उसको पिला सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति में गंभीर हालत हो जाए और कोई व्यक्ति होश में नहीं आ रहा है या उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो गई हैं या बहुत ज़्यादा उसकी स्थिति गंभीर है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास उसको ले जाना है या डॉक्टर से सलाह लेनी है। उसको तुरंत इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। जितना हम प्राथमिक उपचार उसको दे सकते हैं उतना हमें देना चाहिए। और अगर उस सब चीज़ों के बाद भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज़्यादा हीट वेव के अटैक में बहुत ज़्यादा आ चुका है, उसको बहुत गंभीर स्थिति में हो गया है, उसकी हालत ख़राब है, तो हमको उसको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है, डॉक्टर के पास उसको लेकर जाना है। कई बार क्या होता है श्रोताओं कि हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। जब हम किसी भी अपने अजीज की या अपने परिवारजनों की किसी की भी ऐसी कोई हालत देखते हैं, तो हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या चाहिए, कि हमको कैसे उसको डील करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि हम सभी लोग, हमारे सारे श्रोता इतने ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, उनको पता होता है कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है। उसकी थोड़ी थोड़ी टिप्स हम आपको इस पूरे प्रोग्राम के दौरान हम देते रहेंगे कि आपको किस तरीके से इस गंभीर स्थिति में खुद का और अपने परिवार का बचाव करना है। लेकिन उससे पहले हम अपने श्रोताओं को ये भी याद दिला दें कि श्रोताओं, ये कार्यक्रम व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम है। तो श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम में व्हाट्सएप मैसेजेस आ नहीं रहे हैं, आप जल्दी जल्दी व्हाट्सएप मैसेजेस कीजिए ताकि हम आपको इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें, आपके परिवारजनों को इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें। हम एक बार पुनः अपने व्हाट्सएप का जो हमारा नंबर है हम आपको बता देते हैं। नंबर है हमारा 9457078288। श्रोताओं, टाइम थोड़ा कम बचा है, जल्दी जल्दी व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजते रहिए और इस कार्यक्रम में शामिल होते रहिए। और श्रोताओं, हम अपने श्रोताओं को एक बारी और ये बताना चाहते हैं कि हमें दिन में लगभग 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितना भी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, पसीने ज़्यादा आते हैं, जब हम भी घर से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, हम पूरा पसीने में लथपथ हो जाते हैं। तो इसलिए जब शरीर से पानी ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलता है तो उतना ही हमें इनटेक करना होता है, उतना ही पानी हमें पीना होता है। तो हमें लगभग एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। कभी भी हमें प्यास लग रही है तो हमें ये नहीं सोचना कि चलो अभी थोड़ी देर में पानी पी लेंगे, नहीं, तुरंत आपको पानी पीना है। हल्के कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए और जब भी घर से बाहर निकलना है तो हमेशा शरीर को ढक के निकलना है, कॉटन के सूती कपड़ों से हमें शरीर को ढक के निकलना है। आप चाहते हैं तो आप अपने साथ छतरी भी ले जा सकते हैं। हमेशा जब भी घर से बाहर निकलना है तो एक पानी की बॉटल साथ में लेके जाना है। श्रोताओं, मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य होता है। जिस दिन स्वास्थ्य आपका साथ छोड़ देगा उस दिन मनुष्य का हर रिश्ता उसके लिए बोझ बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, हर तरीके की स्थिति में अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाकर रखें। वो कोई भी बीमारी हो, वो लू हो, वो हीट वेव हो या फिर कोई अन्य बीमारी हो, तो आपको अपने स्वास्थ्य को सबसे अच्छा मित्र बना के रखना है और उस मित्र का हमेशा ख्याल रखना है। क्या होता है कई बारी कि ये जो हीट वेव होती है इससे ना जिंदगियां हार जाती हैं, क्योंकि गर्मी जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर का सिस्टम कुछ बिगड़ सा जाता है, हम ना चाहते हुए भी लापरवाही कर बैठते हैं। हमें पता होता है कि दोपहर को 12 बजे से लेकर 3 से 4 बजे तक के बीच में हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन कुछ अनावश्यक काम ऐसे आ जाते हैं, कुछ अनावश्यक स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है। और जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम जल्दबाजी में अपने आप को प्रिपेयर करना भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि जो जब हम बाहर जाते हैं तो आजकल मैंने देखा है कि दुकानों के बाहर जो भी दुकानदार होते हैं वो अपनी दुकानों के बाहर वाटर कूलर रखे हैं या फिर पानी के ड्राम उन्होंने रखे हैं। उन कई जगहों पर ऐसी स्थिति मैंने देखी है कि वहाँ पर ठंडा पानी मौजूद होता है। अगर आप घर से पानी ले जाना भूल गए हैं तो आप बाहर बिल्कुल भी ये लापरवाही ना करें। बाहर भी जहाँ भी आपको पानी मिल रहा है तो आप पानी को पीते रहें और जो भी आपके काम हैं उन कामों को आप जल्दी से निपटाकर घर वापस आ जाएं ताकि आप ठंडी हवा में बैठ सकें। बीमारी एक बार आ जाती है तो वो जल्दी से नहीं जाती, उसको जाने में बहुत समय लगता है। तो इस लू से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घर के बच्चों को और बुजुर्गों को सबसे बचा कर रखिए। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।

गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का कार्यक्रम जिंदगी लाइव में। और श्रोताओं, ये हमें एक मैसेज अभी अभी मिला है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। भेजने वाले हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन। ये लिखते हैं कि हमें गर्मियों में अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में घर से बाहर कमी से निकलना चाहिए। ये अगला मैसेज हमें आया है चौक बाजार नजीबाबाद से। भेजने वाले हैं रूपा वर्मा, तनु वर्मा, विशाल वर्मा, अगम्य वर्मा और आराध्या वर्मा। लिखते हैं जिंदगी लाइव कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली सदब जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी बिल्कुल नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे आप सुबह से कार्यक्रम बहुत ही सुंदर प्रस्तुत कर रही हैं। आपकी कोयल जैसी आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, धन्यवाद। आगे हम कहना चाहते हैं कि आपने आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का विषय लिया है हीट वेव यानी कि लू। देखिए, हीट वेव से बचने के लिए सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि हमारा दिन का कोई भी काम है तो उसे हम 10 से पहले या फिर शाम को 4 के बाद ही करें, क्योंकि दिन में इतनी गर्म हवाएं, तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं कि अगर वो हमें लग जाएं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। और बीमार पड़ने से अच्छा है कि हम अपना बचाव करें। यदि मजबूरी में बाहर निकलना भी पड़े तो छाता, काला चश्मा, पानी की बोतल और ORS के घोल को अपने बैग में ज़रूर रखें। ज़रूरी नहीं कि आपको ही आवश्यकता पड़ जाए, किसी और को भी इस चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है। बेशक, बहुत ही प्यारा मैसेज आपने हमें भेजा है और बहुत ही जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है। श्रोताओं, इन्होंने लिखा है कि जब भी हम घर से बाहर निकलें तो पानी की बोतल, ORS का घोल हमें साथ में लेके जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि इस चीज़ की आवश्यकता हमें ही पड़े। हो सकता है जब आप घर से बाहर गए हों किसी अन्य व्यक्ति को चक्कर आ जाए, हो सकता है कोई अन्य व्यक्ति बेहोश हो जाए या गर्मी से पसीने निकल रहे हों या उसको पानी ना मिल रहा हो, तो इस तरीके से हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं और इस तरीके से हम एक दूसरे के स्वास्थ्य का ख्याल भी रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने हमें भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आपका शामिल होने के लिए। रूपा वर्मा और तनु वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने लिखा है। श्रोताओं, आगे जो है आपको कुछ बताने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि कुछ ऐसे रंग होते हैं, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हें हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए, जिन्हें मतलब हम कुछ समय के लिए तो रख कर हमें भूल ही जाना चाहिए। जैसे कि काले रंग के कपड़े या फिर कोई भी तेज़ रंग के कपड़े, जैसे कि तेज़ लाल रंग हो गया, तेज़ पीला रंग हुआ, तेज़ नारंगी रंग हुआ, इस तरीके के जो तेज़ रंग के कपड़े होते हैं ये क्या होते हैं, ये गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं। इनको पहनने से या इन रंगों का इस्तेमाल करने से हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। इसकी जगह पर हमें ठंडे रंग पहनने चाहिए। ठंडे रंग का मतलब हल्का गुलाबी, हल्का पीला,

जब तक मन और तन स्वस्थ रहते हैं तब तक ही धन और सुख सुविधाओं का आनंद ले पाते हैं। इसीलिए तन और मन को स्वस्थ रखने की कोशिश करते रहना चाहिए। श्रोताओं, लू के मौसम में ये जो है एक मौसमी समस्या नहीं है बल्कि ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। ऐसे घातक गर्मी में, इतनी खतरनाक गर्मी में हर किसी को अपने व्यक्तिगत तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए, साथ साथ पर्यावरण की भी थोड़ी बहुत हमें हेल्प करनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों से क्या होगा कि जो वातावरण बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से गर्म हवाएं, शुष्क हवाएं चल रही हैं, उनको कम करने में हम थोड़ी सी अपने और अपने स्वास्थ्य के लिए इतनी अपने लिए इतना कुछ कर सकते हैं कि हम पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने से क्या होगा, अपने घरों में आप पेड़ लगा सकते हैं, घर के बाहर पेड़ लगा सकते हैं, जैसे भी आप चाहें वैसे लगा सकते हैं। श्रोताओं, स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना होता है। ये हमारे सुख और सफलता और खुशियों की एक कुंजी है। ये केवल हमारे शरीर का ही नहीं बल्कि एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मतलब कहना चाहिए कि हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसे हमें हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वास्थ्य को हमें हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए और हमें अपना ही नहीं अपने परिवारजनों का भी ख्याल रखना चाहिए। स्वास्थ्य ही हमारे लिए सबसे असली धन है। श्रोताओं, हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं लू और हीट वेव के बारे में, लेकिन अभी हम पहले एक मैसेज शामिल कर लेते हैं। मैसेज हमें आया है जसपुर रोड दूलापुर जिला मुरादाबाद से। भेजने वाले हैं महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी और मोहम्मद और बेटी अलशिफा परवीन का। ये लिखते हैं, गर्मी के मौसम में शरीर को डिहाइड्रेटेड रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि पसीने के रूप में हमारे शरीर से काफ़ी पानी निकल जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को गर्मी के दिनों में आमतौर पर 3 से 4 लीटर लगभग 12 से 16 ग्लास पानी रोज़ाना पीना चाहिए। हालांकि पानी की सही मात्रा हर व्यक्ति के काम और शारीरिक ज़रूरत पर निर्भर करती है। नॉर्मली रूटीन के लिए अगर आप ज़्यादातर समय घर या ऑफिस के अंदर एसी या पंखे में बिता रहे हैं तो लगभग आपको 2.5 से 3 लीटर पानी पीना भी काफ़ी होगा। बिल्कुल ये सही लिखा है इन्होंने। आपका मैसेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज़ इनके मैसेज से मुझे याद आई, बहुत अच्छी चीज़ें हमारे श्रोता हमें लिख के भेज रहे हैं, बहुत अच्छे सुझाव हमारे श्रोता हमें लिख के भेज रहे हैं। वो ये कि जब हम काम करते हैं, जब हम जॉब करते हैं या फिर हम ज़्यादातर हमारे घरों में एसी लगे हुए हैं, हम एक लंबे टाइम तक 2 से 3 घंटे या 4 से 5 घंटे हम एसी में रहते हैं और हमें बाहर जाना है तो हमको क्या करना है कि एसी से तुरंत हमें धूप में नहीं जाना है। उससे क्या होगा कि हमारे शरीर का जो तापमान है, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, वो बिगड़ जाएगा क्योंकि हम एकदम से ठंडक से एकदम से गर्मी में जा रहे हैं। तो इसलिए कभी भी एसी से या ठंडक वाले माहौल से, अपने ऑफिस से, अपने दफ्तर से, अपने घरों से, जब भी कभी हमें बाहर निकलना है तो

अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट होने के लिए 2 से 5 मिनट देने होते हैं। मतलब जो आप ठंडक में से निकल के आए हैं, तुरंत धूप में आपको नहीं जाना है। 2 से 5 मिनट आप उस ठंडक वाले दायरे से बाहर निकलिए, लेकिन आपको धूप वाले दायरे से भी दूर रहना है। 2 से 5 मिनट अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट होने का वक्त दीजिए, उसके बाद आप धूप वाले माहौल में जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको बीमारी होने के चांसेस 10 से 15% कम हो जाएंगे। ऐसा करने से आप अपने शरीर को लू लगने से भी बचा सकते हैं। और अब हम शामिल करते हैं कार्यक्रम में एक और मैसेज हमारे पास आया है। ये आया है नगीना से, भेजने वाले हैं अनिल विनोचा जी। ये लिखते हैं, सदर जी को सादर नमस्कार। नमस्कार, टॉपिक बहुत अच्छा है, लास्ट सैटरडे को भी यही था। चलो नए लिसनर्स के लिए कुछ लिख रहा हूँ। लू, गर्म हवाएं या फिर हीट स्ट्रोक सच बहुत ही खतरनाक है, इससे बचना चाहिए। इसके लिए जब घर से निकलें, खा पी कर निकलें, सिर पर कपड़ा डालकर निकलें, पानी ज़रूर पीते रहें, नींबू पानी लें, खरबूजा तरबूज खीरा खाएं, 11 से 5 के बीच घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि बचाव ही इलाज है। लू लगने पर कभी पसीना नहीं आता, कभी आता है तो रुकता नहीं है। बेहोशी हो सकती है, तेज़ बुखार हो सकता है, उल्टी आ सकती है, पेट भी खराब हो सकता है। ज़्यादा परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। लूज और हल्के रंग के कपड़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने इतना लंबा सा मैसेज हमें भेजा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है।

श्रोताओं, आज की व्यस्त जिंदगी में लोग सेहतमंद बने रहने के लिए कुछ क्या कुछ नहीं करते। हमेशा फिट दिखने के लिए कई लोग दवाइयों का उपयोग भी करते हैं, तो कई प्राकृतिक स्वास्थ्य को अपनाते हैं। श्रोताओं, स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत सी आदतें छोड़नी पड़ती हैं और कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है। सबसे पहले संतुलित आहार लेना शुरू करना चाहिए। हेल्दी डाइट न सिर्फ आपको फायदा पहुंचाती है।

ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी मजबूत होगी तो हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम हो जाएगा। इसके लिए कुछ खास तरीकों या फिर कुछ खास पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाए। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो हमें इतनी जल्दी लू नहीं लगेगी, हीट वेव का अटैक नहीं होगा, कोई बीमारी हमारे शरीर पर हावी नहीं हो पाएगी। श्रोताओं, में स्वस्थ रहने के लिए योग का भी प्रयोग करना चाहिए। एक्सरसाइज हमें हमारी मांसपेशियों को मजबूत करने में या हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी करने में भी सहायता करती है। हर व्यक्ति को 6 से 8 घंटा सोना बेहद ज़रूरी होता है। एक अच्छी नींद हमारे कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क और हार्ट से जुड़ी बीमारियों से भी हमारी मदद करती है। इसके साथ ही साथ हमें किसी भी तरह के तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि निरंतर तनाव की स्थिति में व्यक्ति लगातार हमले से महसूस करता है और शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने लगती है। तन की बीमारी को कभी भी मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमेशा खुद को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, और आप अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर महसूस करेंगे। श्रोताओं, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वो लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जी हाँ श्रोताओं, हर कठिनाई का सामना डटकर करना चाहिए और इसी तरह हर तरीके की परिस्थितियों से बचकर निकल जाने चाहिए। और अब हम चलते चलते एक बार फिर से अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि आज का हमारा ये व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फोन इन कार्यक्रम जिंदगी लाइव इस गीत के साथ अब यहीं पर हम संपन्न करने जा रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम समाप्त करने से पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अब इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम अब हमें संपन्न करने की अनुमति दीजिए। अगले सप्ताह एक नए विषय और एक नए साथी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी लाइफ लेकर। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।

0: कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमा के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमा के राष्ट्रपति कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
3: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर

0: India's accelerated progress in maternal and child health, nutrition and financial protection. The survey highlighted that institutional deliveries in India increased from 88.6% in 2019-2021 to 90.6% in 2023-24. The survey said India's total fertility rate remains at 2 and vaccines received by children aged from 12 to 23 months remains consistently high above 96%. The India Meteorological Department IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over West Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands today. The IMD has also predicted thunderstorm accompanied with hailstorm over Haryana, Punjab, Delhi and Chhattisgarh. In IPL cricket, Gujarat Titans stormed into the final of the IPL 2026 with a commanding 7-wicket victory over Rajasthan Royals in Qualifier 2 at New Chandigarh last night. With this victory, Gujarat Titans have set up the title clash defending champions Royal Challengers Bengaluru, which will be played in Ahmedabad tomorrow at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। दारुल हुकूमत लखनऊ में तैयार नौसेना शौर्य वाटिका का आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इफ्तिताह किया। 19 करोड़ की लागत से तैयार ये नौसेना शौर्य वाटिका हिंदुस्तानी बहरिया की बहादुरी, जज्बे और तकनीकी सलाहियत को मानवन है। ये वाटिका सीजी सिटी में डेवलप की गई है। यहाँ कायम रिटायर्ड जंगली पोत INS गोमती सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज है। हिंदुस्तानी बहरिया और उत्तर प्रदेश महकमा सयाहत की मुश्तरका कोशिशों से तैयार ये ओपन एयर म्यूजियम जदीद इंटरप्रिटेशन सेंटर के तौर पर डेवलप किया गया है। इससे दारुल हुकूमत में सयाही सरगर्मियों में भी इजाफा होने की उम्मीद है। आज नौसेना शौर्य वाटिका की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा,
2: लखनऊ में एक तरफ राष्ट्र प्रेरणा

0: वजारत की मुश्तरका सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत हिकमत अमली जखीरों के तवसुत से ईंधन तहफ्फुज मजबूत करने और बगैर किसी रखने के फरामी यकीनी करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर मरकज पर फरामी की कमी की कोई खबर नहीं है।
1: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच कल इस मामले में दायर अर्जियों की समाअत कर रही थी। इनमें एक अर्जी में एनटीए के नौ तश्कील या इसके हटाने के अहकाम देने और इसकी जगह पर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बाइख्तियार और खुद मुख्तार इदारे के तश्कील का मुतालिबा किया गया था। बेंच ने मरकज से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की आइंदा समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। एडवोकेट जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा है कि हुकूमत नौजवानों के लिए फिक्रमंद है और यह यकीनी करने के लिए पुरहद है कि आगे ऐसी कोई चूक ना हो। दरियासना मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक का मामला बेहद अफसोसनाक है। डीडी न्यूज को दिए एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने यकीन दहानी कराई कि री एग्जाम का अमल बगैर किसी दिक्कत के मुनज्जम तरीके से मुनक़िद होगा।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: मरकजी सानवी तालीमी बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल यकम जून से एक्टिव हो जाएगा। दरख्वास्त करने के ख्वाहिशमंद तलबा की आंसर शीट की तस्दीक और दोबारा तशखीस के शफाफ अमल को यकीनी करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इसमें तशखीस का आला मेयार कायम होगा। बोर्ड ने कहा है कि तलबा किसी भी जानकारी के लिए सीबीएसई की टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन 1800-1108-004 और रिजल्ट cbsc2026@cbsc.shiksha.in पर राब्ता कर सकते हैं। बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम कल दो मीटिंगों में मुनक्किद होगा। पहली मीटिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी मीटिंग दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इम्तिहान के लिए रियासत के 72 जिला में 1011 मराकज बनाए गए हैं, जहां तकरीबन 4.5 लाख लोग इम्तिहान देंगे। रियासत में गुज़िश्ता जुमेरात की रात से मौसम में आई तब्दीली से अवामी जिंदगी मुतासर हुई है। तेज आंधी तूफान बारिश और आसमानी बिजली से कई इज़िला में जानो माल का नुकसान हुआ है। कल शाम आगरा में आंधी और तेज बारिश के चलते एक खातून समेत दो अफराद की मौत हो गई और कुछ दीगर जख्मी हो गए। जौनपुर में भी बारिश से दर्ज हरारत में गिरावट आई है। आंधी पानी से हुए नुकसान को लेकर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को फौरी फील्ड में जाकर सर्वे और राहती रकम जल्द जारी करने के अहकाम दिए हैं। वजीर आला ने रियासती आवाम खराब मौसम के दौरान अलर्ट रहने, गैर जरूरी सफर से बचने और इंतजामिया के जरिए जारी गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की है। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने रियासत के कई हिस्सों में आज और कल तेज हवाओं के दरमियान बारिश और आसमानी बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत सुनने वाली सभी बहनों को आपकी बहन गजाला खान का प्यार भरा नमस्कार। और बहनों, कैसी हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी खुश होंगी, स्वस्थ होंगी और साथ ही साथ आज के महिला जगत कार्यक्रम का आनंद ले रही होंगी।

0: कार्यक्रम में आगे की ओर चलते हैं और बात करते हैं, विविधता में एकता हमारी संस्कृति है। विविधता में एकता ही हमारे भारत की सबसे बड़ी पहचान है। बहनों, हमारे देश भारत में अलग अलग भाषा है, अलग अलग पहनावा और अलग अलग ही रहन सहन है, पर दिलों में प्रेम और सम्मान एक ही है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि भिन्नताओं को अपनाकर समाज को, राष्ट्र को मजबूत बनाना है। बहनों, जब कई रंग आपस में मिलते हैं तभी भारत जैसा इंद्रधनुष बनता है। हमारा देश, हमारी पहचान एक ही है। बहनों, एकता की भावना ही हमें सिखाती है आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी हमें एकता की ही भावना देती है। विविधता में एकता ही हमारी संस्कृति है और सबसे बड़ी पहचान है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि भिन्नताएं दूरियां नहीं बढ़ाती, बल्कि मिलकर भारत को और भी सुंदर बनाती है। बहनों, कार्यक्रम में आगे की ओर चलते हैं और क्रम आधी आबादी सुनते हैं। बहनों, क्रम आधी आबादी के अंतर्गत हम एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जिनकी कहानी सिर्फ सम्मान की ही नहीं, अदम्य हौसले की जीत की कहानी है। सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में एसिड अटैक, 36 बार सर्जरी और उसके बाद भी अपनी हिम्मत और हौसलों के दम पर हर परेशानी, हर मुश्किल का डटकर सामना किया। तो बहनों, उनका नाम है मंगला कपूर। वाकई उनकी कहानी अपने में एक अत्यंत ही प्रेरणादायक कहानी है। उन्हें साहसी, आत्मविश्वास और संघर्ष से जीत की मिसाल मानी जाती है। उन्हें अपने इसी संघर्ष और साहस के लिए 2026 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। बनारस वाराणसी की रहने वाली डॉक्टर मंगला कपूर महज 12 साल की उम्र में एक एसिड अटैक की शिकार हो गई थी। इसी दर्दनाक हादसे ने उनका पूरा शरीर झुलस गया था। उन्हें 6 साल तक अस्पताल में लंबा दर्दनाक दौर झेलना पड़ा। वो अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताती हैं।
1: ऐसा मैं 12 साल की थी जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था, और उसके बाद करीब 6 साल तक मैं हॉस्पिटलाइज थी। करीब 36 ऑपरेशन हमारे हुए शरीर में अलग अलग जगह, तो मैं निकलती नहीं थी डर के मारे घर से। बहुत दिन तक घर में छुप के बैठी रहती थी, कोई आ जाए तो सामना नहीं करती थी, ये हालत हो गई थी।
0: अपनी स्थिति को देखकर उनका कहीं आने जाने का मन नहीं करता था। सिर्फ और सिर्फ वो अपने घर में ही रहने लगी, लोगों से मिलने से, बात करने से कतराने लगी। इन हालातों में उनके माता पिता ने उनका बहुत साथ दिया, वो बताती हैं।
1: उसके बाद जब मैं ठीक हुई, कहीं जाने लायक हुई, तो मेरे माता पिता चिंतित थे कि बच तो गई है लड़की, पहले यही नहीं था कि शायद बचेगी भी। बच गई है तो कुछ तो इसको करना चाहिए ताकि इसका जीवन आगे की ओर चले। तो चूंकि मुझे संगीत से बहुत लगाव था बचपन से ही और अच्छा गा भी लेती थी, तो पिताजी ने मुझे म्यूजिक सीखने के लिए डाल दिया। कुछ समय तक तो मैं उधर ही, स्कूल था हमारे घर की तरफ, वहाँ सीखा। फिर मैं सीधे BHU में मैंने ज्वाइन किया, तो BA एंड PhD तक मैंने BHU से शिक्षा प्राप्त की। मैंने PhD तक किया वहाँ।
0: वहीं से शिक्षा प्राप्त करने के बाद BHU में ही शिक्षा के पद पर कार्यरत रहीं। लगभग 30 साल तक उन्होंने वहाँ पर कार्य किया। वो एसिड अटैक की जो यात्रा रही उसके बारे में वो बताती हैं।
1: जो संघर्ष था उतने समय का, जो एसिड अटैक के बाद का एंड उसके बाद की जो यात्रा रही, वो बहुत कठिन, बहुत संघर्षमय जीवन था। लेकिन ये है कि सब झेलते झेलते करती गई। पिताजी कहते थे कि बेटा लक्ष्य की ओर ध्यान दो, कोई कुछ भी कहे ध्यान मत दो। तो रिश्तेदार, समाज, सभी ने मेरा एक तरह से बहिष्कार ही किया, मतलब कोई पूछता ही नहीं था, सभी उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे मुझे। लेकिन सब में सहते हुए, यानी कि शारीरिक, मानसिक एंड आर्थिक सभी तरह की बाधाओं से संघर्ष किया, और फिर उस मकाम पे पहुंची जहाँ शिक्षिका हुई मैं, और प्रोफेसर के पद से अभी 2019 में मैं रिटायर हुई। रिटायर होने के बाद भी मैं बैठी नहीं रही और कई पुस्तकों का लेखन किया, जिसमें आखिरी पुस्तक मेरी अभी तक जो है वो मेरी आत्मकथा है, इसका नाम सीरत है। तो सीरत जब आई तो लोगों ने जब पढ़ा मेरे संघर्ष को, तो बहुत सारे फोन वगैरह मेरे पास आए, बहुत जगह बुलाई जाने लगी अपने संघर्ष को बताने के लिए। ताकि बच्चों में प्रेरणा डाली जा सके। तो फिर सीरत ने काफी मुझे नाम दिया और उसके बाद मैं जुड़ गई कुछ संस्थाओं से।
0: बहनों, उन्होंने कई पुस्तकों का भी लेखन किया जिसमें आखिरी पुस्तक उनकी आत्मकथा है जिसका नाम उन्होंने रखा सीरत। सीरत में उनका संघर्ष जो शुरू से आखिरी तक झेला उन्होंने वो सब अपने लेखनी में लिखा है। बहनों, मंगला कपूर बताती हैं जब उन्हें पद्मश्री सम्मान मिलने के बारे में पता चला तो वो क्षण उनके लिए कितना सुखद पल थे।
1: मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, काफी बड़ी, मैंने सोचा नहीं था। राज्य स्तरीय पुरस्कार मुझे 3 मिले, एक तो आचार्य भरत मुनि अवार्ड उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से, और एक योगी जी ने दिया था रोल मॉडल पुरस्कार मुझे, और तीसरा अवार्ड राजस्थानी से मिला था, और ये जो है ये सर्वोच्च जो मतलब देश का बहुत ही पुरस्कार, बड़ा पुरस्कार है, और ये मुझे दिया गया। और मैं कितनी कृतज्ञ हूँ मोदी जी की कि मुझे इसी युग समझ के और मुझे नामित किया गया और मुझे ये अवार्ड आज अनाउंस हुआ। तो खुशी की तो आप बात ही मत समझिए कि ये उतना करने के बाद और ये परिणाम अगर मिला है तो नेचुरली मैं बहुत खुश हूँ।
0: अपनी तमाम शारीरिक और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने संगीत और शिक्षा को अपनी ताकत बनाया। मंगला कपूर हमें सिखाती हैं कि असली सुंदरता चेहरे से नहीं हौसलों में होती है। जिन हालातों ने उन्हें तोड़ना चाहा, उन्हीं हालातों को उन्होंने अपनी ताकत बना लिया। बहनों, अपनी बातों का सिलसिला यहीं पे जारी रखते हुए थोड़ी देर के लिए चलते हैं संदेशों की ओर और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: बहनों, संदेशों के बाद आपका दोबारा स्वागत है कार्यक्रम महिला जगत में। बहनों, गर्मी का मौसम और आम के अचार और मुरब्बों की बात ना हो तो कुछ अधूरापन सा लगता है। तो चलिए बहनों, क्रम मेरी पाकशाला के अंतर्गत सुनते हैं इंदु आर्य से सुनीति आर्य की बातचीत और जानते हैं मुरब्बा, आम का पन्ना और आम के अचार की रेसिपी।
3: बहनों, खाना बनाना एक कला है जो रचनात्मकता, स्वादों के संतुलन और मसालों की समझ को मिलाकर भोजन को स्वादिष्ट बनाती है। ये केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि भावनाओं, संस्कृति और प्यार को व्यक्त करने का एक तरीका है जिसे पाक कला कहा जाता है। इसी क्रम में बहनों, आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है एक मेहमान को। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज में।
4: धन्यवाद।
3: तो सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और आप क्या करती हैं?
4: मेरा नाम इंदु है और मैं घर संभालती हूँ।
3: यानी कि आप एक गृहिणी?
4: गृहिणी हूँ मैं।
3: तो इंदु जी, गृहिणी है तो सभी गृहिणियाँ खाना तो बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ अलग ही बात है। तो आज हम आपसे बात करेंगे कुछ रेसिपीज के बारे में। जैसे आजकल सीजन चल रहा है आम का, तो क्या आप हमें आम के अचार के बनाने की विधि बता सकती हैं?
4: जी हाँ।
3: तो मैम, आम के अचार बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिएगा, सबसे पहले उस बारे में बता दीजिए।
4: आम चाहिए, 5 किलो आम ले लेने हैं
3: जी,
4: और उसमें सौंफ लेनी है और धनिया ऐड करना है
3: जी,
4: और कलौंजी और सौंफ, उसमें काला नमक और सादा नमक, तेल, हींग और मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। तो उसमें ये सारी चीजें ऐड होती हैं। इन मसालों को सबको एक साथ मिक्स करके मिक्सी का जार लेके उसमें मोटा मोटा दरदरा ये पीस लेना है
3: जी,
4: और पीसने के बाद उसे रख दें एक तरफ। हमें आम को अच्छे से साफ से धो के और उन्हें थोड़ी देर के लिए उसे धूप में रखना है
3: जी,
4: जिससे उसका पानी अच्छे से सूख जाए
3: जी,
4: और फिर उसको काट लेना है, उसे 4 भागों में काट लेना है। और काटने के बाद को नमक लगा के, जैसे शाम में हमने काटा है
3: जी,
4: तो हम उसे शाम में नमक लगा के
3: जी
4: पूरी रात के लिए ढक के किसी भी बर्तन में करके ढक के रख देंगे
3: जी,
4: और सुबह होने पर जब धूप निकलेगी तो धूप में कोई पलंग या चटाई वटाई डाल के उस पर हमें उसे फैला देना है
3: जी,
4: एक एक फांक को सही से फैला देना है,
3: अलग अलग,
4: अलग करके
3: जी
4: उसे फैला देना है।
3: तो मैम, कितने टाइम हम उसको धूप में डालें, इसका कुछ आइडिया है किस
4: धूप,
3: तरह से? मतलब
4: अगर तेज धूप है तो उसे 3 से 4 घंटे धूप में डाल सकते हो। उसके बाद उसमें पानी नहीं होना चाहिए
3: जी,
4: सूखन सा हो जाता, तो 2 से 3 घंटे की धूप काफी है
3: जी,
4: ज्यादा नहीं सुखाना चाहिए उसको, थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि सूखा ना हो ज्यादा, और फिर उसे किसी भी बर्तन में भिगोने में टप अप में
3: जी
4: कर लेते हैं
3: जी,
4: क्योंकि सूखने के बाद थोड़ा ही हो जाता है वो, तो उसमें कर लिया। अब जो हमने उसका मसाला बना के रखा था वो हम उसमें डाल लेंगे। उसके बाद सारी नमक, मिर्च, हल्दी डाल के और उसमें तेल डाल के सारे को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स ऐसा करेंगे मतलब जो सारी फांकों पे वो चिपक जाए
3: जी, मसाला सभी पे मतलब एक बराबर
4: लगना चाहिए
3: जी,
4: उसमें सभी पे लग जाना
3: तो
4: चाहिए।
3: इसका कुछ क्या रीजन है मैम कि सब पे ही लगना चाहिए?
4: सब पे ही लगना चाहिए क्योंकि जैसे कि कोई ऐसी रह जाती है उसमें फांक के तो उनमें स्वाद नहीं आता है
3: जी,
4: हाँ, तो उसमें सभी में भर देना चाहिए, अच्छे से मिलाना चाहिए उसे, और उसे जार में करना चाहिए
3: जी,
4: प्लास्टिक में नहीं लेना चाहिए, प्लास्टिक में खराब होने की भी चांसेस रहते हैं।
3: प्लास्टिक के जार में?
4: जार में,
3: तो
4: उसे कांच के जार में स्टोर कर देना चाहिए
3: जी,
4: उसे उसमें भरने के बाद उसे अच्छे से हाथ से दबा के रखना चाहिए, फुलफुला नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें अगर तुम ऐसे दबाओगे नहीं, ऐसे ही भर दोगे
3: जी,
4: तो उसमें फुई आने का खतरा हो जाता है, हवा लगती है तो हवा घुसती है उससे उसमें फुई आने का खतरा होता है, तो उसे दबा के अच्छे से भर लेना है और फिर उसके ऊपर तेल डाल देना, मतलब अचार से ऊपर तेल होना चाहिए जिससे वो खराब ना हो, फिर वो साल दो साल अच्छे से चलेगा आपका,
3: खराब
4: नहीं होगा।
3: यानी कि मतलब तेल यदि अचार के ऊपर
4: है
3: तो अचार के खराब होने के चांसेस
4: कम
3: है, नहीं है,
4: हाँ,
3: और कम ही है,
4: कमी है, होगा नहीं वो खराब
3: जी।
4: तब अगर आपको उससे में से निकालना है तो सूखी चम्मच और हाथ भी सूखे ही होने चाहिए, अगर आप गीली चम्मच से या गीले हाथों से उसे छुओगे या निकालोगे तो वो खराब हो सकता है
3: जी।
4: इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, सूखी चम्मच लेनी है और सूखे हाथ करने हैं और तभी वो उसमें से निकालना है।
3: जब भी अचार लेना हो तो
4: सूखी चम्मच
3: सूखे हाथों से ही
4: निकालना है
3: जी। तो इंदु जी बहुत अच्छी आपने विधि बताई। और सीजन आम का है तो आजकल घरों में आम के अचार, चटनियां और कई तरह की चीजें चल रही हैं। तो अब उसी क्रम में हम आपसे एक चटनी है यूपी में, उत्तर प्रदेश में फेमस चटनी है सिरके की आम की चटनी, तो क्या उसकी विधि बता पाएंगी कि उसमें क्या क्या सामान चाहिए और किस तरह से वो बनाई जाती है?
4: उसमें आम हो 5 किलो आम लिए हमने और उसमें सौंफ, कलौंजी, मेथी और अजवाइन, काला नमक, हल्दी और सादा नमक, मिर्च, सिरका और हींग, ये सारी चीजें
3: चाहिए
4: उसे बनाने के लिए। फिर हमने आम लिए हैं
3: तो इसको, इस मसाले को हम साबुत ऐसे ही डालेंगे या इसको भी हमें दरदरा करके पीस?
4: साबुत नहीं डालना, इसको को मिक्सी के जार में थोड़ा दरदरा करके पीस रख लेना है
3: जी। जी,
4: और दरदरा करके रखने के बाद आपको आम साफ से धुलने हैं और धुल के उन्हें अच्छे से, उन पर पानी ना रहे, और फिर उनको छील के आपको काट लेना है,
3: फांके बना लेनी है।
4: तो 4 पीस में काटो, 8 में काटो, ये मर्जी है आपकी, जैसे भी आप करना चाहते हो
3: जी। जी,
4: और फिर उन्हें सब सामान को एक तरफ रख लेना है। उसके बाद गैस पे कढ़ाई चढ़ानी है
3: जी,
4: उसमें लगभग 1 से 1.5 गिलास सिरका डालना है आपको
3: जी।
4: और तब सिरका पकने लग जाए तो उसमें जो झाग आते हैं वो उतारते रहना है, तब तक वो झाग आएंगे उसे उतारते रहना है। फिर उसके बाद जब वो झाग खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको जो आपने आम काटे हैं वो आम
3: उसमें
4: डालने हैं आप। फिर जब वो पकने लगे, थोड़ा गल जाए, उसके बाद आपको उसमें गुड़ ऐड करना है। गुड़ या चीनी कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन गुड़ ज्यादा अच्छा होता है। फिर उसमें गुड़ ऐड कर देंगे और जब वो गुड़ पिघल जाए, अच्छे से पकने लगे, तो उसमें सारे मसाले जो हमने पीस के दरदरे करके रखे हुए थे वो हमें सारे उसमें ऐड करने हैं
3: जी।
4: और मसाले ऐड करने के बाद थोड़ी देर हम उसे पकाना है, जब तक वो थोड़ा गाढ़ी हो जाए तब तक उसे पकाएंगे। फिर तब वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो हम गैस बंद कर देंगे और उसे थोड़ी देर रख देंगे ठंडा करने के लिए। जब वो ठंडा हो जाए तो उसे किसी भी जार में, प्लास्टिक को छोड़ के किसी भी जार में, जैसे मिट्टी के भी घड़े होते हैं उनमें कर लेते थे पहले
3: जी,
4: उनमें भी कर सकते हो,

0: या कांच का बोट आते हैं,
1: या फिर वो चीनी के बोट आजकल आ रहे
0: चीनी
1: हैं,
0: के बोट
1: चीनी
0: आते
1: के
0: हैं,
1: जी
0: उनमें
1: ज्यादा अच्छा रहेगा
0: ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: जी,
0: तो उनमें करके उन्हें रख सकते हो, साल 6 महीने खा सकते
1: वो
0: हो,
1: खराब नहीं,
0: खराब नहीं होती है
1: खराब
0: वो।
1: नहीं होती जी। उत्तर प्रदेश की बहुत ही मतलब एक अच्छी डिश में मानी जाती है और सब इसे बहुत पसंद भी करते हैं, सिरके की चटनी को। अब जैसे गर्मियां चल रही हैं, लू भी बहुत चलने लगेगी अब आगे, अभी थोड़ी कम है लेकिन चलेगी आगे, तो कहते हैं कि आम का पन्ना इन दिनों बहुत अच्छा रहता है, लू नहीं लगने देता आम का पन्ना, तो क्या आप आम के पन्ने की विधि हमारी श्रोताओं को बताएंगी?
0: जी, उसमें आम लेना है,
1: जी
0: 2 से 3 आम लेने हैं और उन्हें अच्छे से धुल के और गैस पे कुकर में चढ़ा देने हैं, और
1: तो
0: उसमें
1: कुकर में कितना पानी डाल,
0: लगभग 1 से 2 कप पानी डालना है
1: जी
0: और उन्हें उबाल लेना है। उबालने के बाद उन्हें उसमें से निकाल के थोड़ा ठंडा कर लो, उनका छिलका उनसे
1: उतार
0: अलग निकाल दो और गुद्दा निकालो, उसकी गुठलियां भी अलग कर देना है।
1: जी
0: और फिर उसमें थोड़ा पुदीने के पत्ते,
1: जी
0: काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर, अदरक, हरी मिर्च 1 से 2 मिर्च डालनी है, काला नमक, थोड़ा सादा नमक उसमें ऐड करना
1: तो ये हमें सब मिक्स कर
0: है,
1: देना
0: मिक्स
1: है।
0: कर देना है। मिक्स करने के बाद मिक्सी के जार में डाल के इन्हें सारी चीजों को पीस लेना है,
1: मतलब
0: इनका पेस्ट
1: पेस्ट बना लेना है
0: बना लेना है।
1: जी।
0: पेस्ट बनाने के बाद 1 गिलास में 2 से 3 चम्मच आपको ये पेस्ट डालना है और फिर उसमें पानी ऐड करना है। अगर आपको मीठा पसंद है तो इसमें और मीठा डाल सकते हो, नमक तो इसमें स्वाद अनुसार पड़ी हुई है,
1: जी
0: तो इसमें 2-3 चम्मच डाल के उसमें पानी ऐड कर लेना है आपको।
1: जी
0: फिर कुछ बर्फ के टुकड़े डाल लेने हैं, और आपके घर में मेहमान आते हैं या पड़ोसी आ जाते हैं तो उन्हें देने के लिए आपको इसमें अगर कुछ सजावट करनी है तो पुदीने की पत्ती डाल सकते हो, और पुदीने की पत्ती डाल के दे सकते हो, पी सकते हो। ये पेट को भी ठंडक देता है और पाचन में भी बहुत अच्छा होता है।
1: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि मतलब ये पाचन में भी अच्छा रहता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अच्छा रहता है, तो फिर पेट सही सारी चीजें हैं, पेट सही होगा तो
0: तो
1: नेचुरली बात है सब चीजें
0: सही
1: अच्छी
0: होंगी।
1: होंगी जी। बिल्कुल।
0: ठीक।
1: तो इंदु जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको खाने बनाने का शौक कैसे हुआ, ये जरूर जानना चाहेंगे
0: खाने बनाने का शौक मुझे, मेरे छोटा बेटा है
1: जी।
0: तो वो, उसे खाने का बहुत शौक है, तो
1: जी
0: तब से वो हुआ, तब से उसने अपना होश संभाला, तो वो क्या डिमांड करता था मेरे से, मम्मी आज ये खाना है, आज वो खाना है, तो उसी उससे मुझे जो भी मन जो वो बोलता था तो मैं बनाती थी। तो बस मुझे तभी से रुचि हो गई इसमें खाना बनाने में। मैं जैसे मेरे कोई मेहमान आते हैं उनको भी खाना मैं अच्छे से बना के खिलाती हूँ, पड़ोस में भी कोई कहता है तो उसे भी खाना देती हूँ, मुझे खाना बनाने का शौक है, खिलाने का सबको अच्छे से।
1: तो इंदु जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज बताई और तो हमारे तो मुंह में भी पानी आ गया है ये चीजें रेसिपी सुन के, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा इस बारे में जानकारी प्राप्त करके, और वो भी हमारी बहनें भी कोशिश करेंगी घर पर ये बनाने की। तो आप हमारे स्टूडियोज में आई और आपने इतनी अच्छी रेसिपी हमसे शेयर करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
2: बहनों, अभी हम सुन रहे थे इंदु आर्य से सुनीति आर्य की बातचीत। बहनों, इंदु आर्य जी ने हमें आम के अचार, आम की चटनी और आम का पन्ना और भी बहुत सारी चीजें बताई। तो आम का पन्ना, देखिए बहनों, गर्मी जैसे मौसम चल रहा है और थोड़े टाइम के बाद लू भी चलने लगेगी, तो लू चलने पर हमें आम का पन्ना लेना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी साबित होता है। तो बहनों, अब बातें तो बहुत हो चुकी, अब थोड़ा चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहनों, अभी आप आनंद ले रही थी इस प्यारे से गीत का। तो बहनों, आप देख रही हैं इस वक्त गर्मी किस कदर हो रही है। गर्मी से बचाव के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पर घर की, बच्चों की, पति की और साथ ही साथ अगर ज्वाइंट फैमिली है तो सास ससुर और बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी हमें ही निभानी पड़ती है। अगर हम सब का ध्यान अच्छे से रखेंगे तो हमारे घर के सब सदस्यों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो बहनों, इस गर्मी के मौसम में खाने में कम मिर्च मसालों का इस्तेमाल करें, ज्यादा मसालेदार खाने से बचें, घी तेल का भी इस्तेमाल कम करें, हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा लें, खाने में दही और छाछ अवश्य लें। छाछ लेने से ठंडक बनी रहती है। गर्मी के मौसम में छाछ हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। फलों को भी लेने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा फल लें। जैसे इस टाइम तरबूज, खरबूजा आदि फल खूब बाजार में देखने को मिल रहे हैं, और तरबूज तो अपने में पानी की कमी को पूरी करता है। बहनों, कोशिश करें घर के बाहर जाने से बचें, और बच्चों को भी ज्यादा बाहर ना जाने दें। और अगर घर के बाहर जाना भी पड़ रहा है तो कोशिश करें कि घर से पानी की बॉटल, छाता जरूर लेके जाएं, क्योंकि इस टाइम की जो धूप है वो एक झुलसाने वाली धूप है। इस गर्मी में पानी की कमी भी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, और घर के बाकी सदस्यों को भी पानी खूब पीने के लिए बोलें। नींबू पानी गर्मी के मौसम में बहुत सुकून देता है। गन्ने का रस, नारियल का पानी, ये सब हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होते हैं। बहनों, अब धीरे धीरे कार्यक्रम का समय पूरा होता जा रहा है, तो आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं

कार्यक्रम में के विषय में बताने के लिए आप हमें सुझाव दे सकती हैं। सुझाव के लिए आप हमें पत्र लिख सकती हैं और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत द्वारा के निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 2467063। बहनों आप अपने सुझाव हमें हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकती हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। एक बार दोबारा से आप हमारा व्हाट्सएप नंबर सुन लीजिए 9457078288। तो बहनों आपके पत्रों का और आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ आज के महिला जगत कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करने की अपनी बहन गजाला खान को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

हमारी बहनें अभी सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत, आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर।

गीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अमरदीप सिंह नेगी के गाए गढ़वाली लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गढ़वाली लोकगीत।

इस समय आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा सुन रहे हैं। अमरदीप सिंह नेगी के गाए ये गढ़वाली लोकगीत।

अमरदीप सिंह नेगी की आवाज में इस गढ़वाली लोकगीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मीन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी

0: किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ओमी नावलायन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
2: आज डी के शिवकुमार राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,40,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि

0: सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही गीतकार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आज के गीतकार हैं योगेश गौड़। नमस्कार श्रोताओं, हमारे आज के फनकार हैं सुप्रसिद्ध गीतकार योगेश। भारतीय संगीत के प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली गीतकारों में से एक हैं योगेश जी। इनके गीतों की बात करें तो इनके गीत बेहद हसीन और सुंदर नजर आते हैं। इनके गीतों में एक अलग ही भाव महसूस होता है। योगेश हमेशा संगीतकार की धुन पर गीत लिखते थे और अपने गीतों में एक अलग ही सौंदर्य दर्शाने की कोशिश करते थे। कहूँ तो आंखें बंद करके वास्तविक सौंदर्य इनके गीतों में नजर आने लगता था।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: की गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: श्रोताओं, आपका जन्म 19 मार्च 1943 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। वो काम की तलाश में 16 साल की उम्र में ही बॉम्बे चले गए और अपने चचेरे भाई योगेंद्र गौड़ से मदद मांगी, जो कि एक पटकथा लेखक थे। उनका पहला काम 1962 में हुआ था, जब उन्होंने बॉलीवुड फिल्म सखी रॉबिन के लिए 6 गीत लिखे, जिसमें तुम जो आए गीत भी शामिल था, जिसे मन्ना डे ने गाया था। इस गीत ने बॉलीवुड में उनके करियर की शुरुआत की। उन्होंने भारत के कुछ बेहतरीन निर्देशकों जैसे ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चटर्जी के साथ काम किया। श्रोताओं, योगेश ने सुपरहिट फिल्म आनंद को परिभाषित करने वाले हिट गीतों के बोल कहीं दूर जब दिन ढल जाए और जिंदगी कैसी है पहेली जैसे गीत भी लिखे।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, योगेश हमेशा संगीतकार की धुन पर गीत लिखते थे। सलिल चौधरी, एसडी बर्मन, आदि बर्मन जैसे दिग्गजों के साथ आपने काम किया। फिल्मों के अलावा उन्होंने चंद्रकांता, हसरती, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है जैसे लगभग 200 से ज्यादा टीवी सीरियल्स के लिए टाइटल ट्रैक भी लिखे हैं। श्रोताओं, उनकी एक फिल्म जो कि 2017 में आई थी, अंग्रेजी में कहते हैं, का एक गाना बहुत लोकप्रिय हुआ, पिया मुझसे रूठ गए।

योगेश के यादगार गीतों में से कुछ गीत इस तरह से हैं। रजनीगंधा फूल तुम्हारे, रिमझिम गिरे सावन, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, आए तुम याद मुझे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, शामिल है। आपके कुछ फेमस फिल्में भी हैं जैसे कि आनंद, मिली, छोटी सी बात, रजनीगंधा, बातों बातों में, और अंग्रेजी में कहते हैं। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए उन्हें 2010 में दादा साहेब फाल्के अकादमी पुरस्कार और यश भारती पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया।

गीतकार योगेश गौड़ हिंदी सिनेमा के वो गीतकार थे जिनके सरल शब्दों में गहरे जज्बात छुपे होते थे। उनका सिद्धांत था, जो देखा जो जिया वो लिख दिया। श्रोताओं, इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर रहने वाले योगेश जी करियर के अंत में 29 मई 2020 को 77 साल की उम्र में मुंबई के वसई में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। लता मंगेशकर उनके बारे में लिखती हैं कि दिल को छूने वाले गीत लिखने वाले कवि योगेश जी बहुत शांत और मधुर स्वभाव के इंसान थे। आज भी उनके गीत हर दिल की धड़कन है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही गीतकार। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रही हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 3 बज चुके हैं। हमारी इस सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। हमारी संध्याकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। कार्यक्रम रिश्ता ये खास है में आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं। आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित इस कार्यक्रम में आज हम आ पहुँचे हैं ग्राम नारायणपुर रतन। तो हमारे साथ हैं हमारे एक श्रोता जो हमें सुनते हैं और बहुत सराहना भी करते हैं। जी अपना परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम साजिद अली उस्मानी, मैं नारायणपुर रतन में रहता हूँ।
0: साजिद भाई बहुत बहुत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको इस समय बहुत लोग सुन रहे हैं और जैसे मैं जानना चाहूँगा कि आज भी मैं देख रहा हूँ कि आप रेडियो सेट के साथ बैठे हैं, तो ये रेडियो से इतना जुड़ाव कैसे रहा आपका?
1: दरअसल रेडियो से मेरा जुड़ाव विद्यार्थी जीवन से ही रहा है। मैं लगभग 1990 से रेडियो से आज तक जुड़ा हुआ हूँ और सारे प्रोग्राम बखूबी मैं सुबह से शाम तक सुनता हूँ और एक लगन के साथ सुनता हूँ।
0: जैसे आपने बात की साजिद भाई के सन 1990 से आप आकाशवाणी नजीबाबाद के प्रसारण सुन रहे हैं, तो उस समय की कुछ यादें बताइए, जैसे कि आपको कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते थे और जो अनाउंसर्स उस वक्त आया करते थे उनके बारे में थोड़ा बताइए।
1: उस जमाने में प्रेम कुमार सोडाना जी, जय रंधर जी और रजनीश गुप्ता जी और एजाज भाई, डॉक्टर एस के जौहर, अचला अग्रवाल, ये बहुत अच्छे हमारे वरिष्ठ उद्घोषक हुआ करते थे।
0: जी आपने हमारे बहुत ऐसे रत्नों के नाम ले दिए हैं जिन्होंने आकाशवाणी नजीबाबाद को एक ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और आकाशवाणी से कुछ ऐसे प्रोग्राम के बारे में भी बताइए जिन्हें सुनना आपका बड़ा शौक हुआ करता था। कौन से प्रोग्राम उस वक्त आप सुना करते थे?
1: जैसे गीतों भरी कहानी है, ये उस जमाने का बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ करता था।
0: जी
1: और भी बहुत

0: प्रोग्राम थे जैसे सुगम संगीत वगैरह, और एक ही कलाकार उस जमाने में प्रोग्राम आया करता था, ये भी प्रोग्राम बहुत अच्छा लोकप्रिय होता था।
1: अच्छा, जैसे कि सभी श्रोता हेलो नजीबाबाद की बात करते हैं, तो इस बारे में थोड़ा बताइए कि उस वक्त कैसे फ़ोन लगाने के लिए ट्राई करते थे, क्योंकि उस समय फिक्स फ़ोन होते थे, तो आपने भी कभी ऐसा ट्राई किया?
0: हेलो नजीबाबाद वीकली यानी कि साप्ताहिक प्रोग्राम होता था, आज भी चलता शायद, तो उसमें काफ़ी लोग ट्राई करते हैं और मैंने भी ट्राई किया है और मेरा भी नंबर उसमें लगा है और मेरी भी उनसे बात हुई।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई। और कोई ऐसी याद जो आकाशवाणी से जुड़ी है, रेडियो से जुड़ी है, आप साझा करना चाहते हो?
0: वैसे तो सभी यादें बहुत अच्छी यादें हैं, लेकिन मेरी एक बात है कि सन 1992 में मैंने पहली बार आकाशवाणी केंद्र पहुंचकर पंचायती राज पर शुरू में पहली बार मेरी वार्ता प्रसारित हुई, तब मुझे बहुत खुशी जाहिर हुई।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई। और साजिद भाई, जैसे कि रेडियो है, तो रेडियो अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत है, तो आजकल का जैसे आप समाज देख रहे हैं, तो आजकल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रेडियो जैसे अब मोबाइल पर भी आ चुका है, तो आज के समय के लिए कोई बात आप बताइए।
0: नहीं, रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि आदमी अपने खेत में भी काम कर सकता है, घर में भी बैठ कर काम कर सकता है, कुछ और भी काम कर सकता है, लेकिन मोबाइल पर या और किसी माध्यम में ऐसा संभव नहीं है।
1: जी, आपके कहने का मतलब है कि आप रिजर्व हो जाते हैं और किसी मीडिया के थ्रू, लेकिन रेडियो में आप जो है अपने काम भी कर सकते हैं और इसे सुन भी सकते हैं। साजिद भाई, ये जो रेडियो है, इसने जो है आज जिन मुकामों को छुआ है, जो ऊंचाइयां रेडियो छू रहा है, और ख़ास तौर से जब हम मन की बात करते हैं तो मन की बात का प्रसारण आता है, साथ ही शाम में युवाओं के लिए एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है युववाणी, और किसान भाइयों के लिए कृषि जगत एक कार्यक्रम है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है किसान भाइयों को लाभान्वित करता है, तो ऐसे कार्यक्रम आप सुनते हैं?
0: जी, मैं सारे प्रोग्राम सुनता हूँ, मन की बात भी सुनता हूँ, युवाणी भी सुनता हूँ, कृषि जगत भी सुनता हूँ, स्वास्थ्य चर्चा भी सुनता हूँ और सारे प्रोग्राम सुनता हूँ। ये प्रोग्राम बहुत अच्छे, बहुआयामी प्रोग्राम होते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम लगते हैं।
1: जी, अच्छा, कुछ आप थोड़ा आपके टेस्ट की ओर चलते हैं, तो जितना आपने रेडियो सुना है, तो मतलब ऐसा होता है कि पुराने गानों से बड़ा लगाव हो जाता है, तो कोई ऐसा गाना जो आपके इस समय मन मस्तिष्क में आ रहा हो?
0: देखिए, वैसे तो गाने तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जो हमारे पुराने गीत हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के वो या लता जी के, वो बहुत अच्छे गीत हैं। तो फिल्म मेरे महबूब का गीत है, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, इसको मैं बचपन से ही पसंद करता आ रहा हूँ।
1: आपने बड़ा अच्छा गाना चुना है, आपके लिए हम ये गाना प्ले करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े साजिद भाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

अभी आप आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए अब आपको हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

आज रात्रि हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। समय रहेगा रात्रि 10 बजे। आज रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से ही रिले होगा राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका। सुगम संगीत का प्रसारण समय रहेगा आज शाम 7:32 पर। सुगम संगीत में आप आनंद ले सकेंगे श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा के गाए भजनों का। कार्यक्रम विविधा का प्रसारण समय रहेगा आज शाम 6:45 पर। विविधा में होगी डॉक्टर अपर्णा की पूर्व प्रसारित वार्ता, जिसका शीर्षक होगा बिना पंखों के भी उड़ता आशा का पक्षी। किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का प्रसारण समय रहेगा हमारे केंद्र से आज शाम 6:05 पर। कार्यक्रम में आज का आकर्षण होगा लोकगीतों और रागनियों का सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी।

हमारे कल के कार्यक्रम में कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा। कल सुबह 6:05 पर श्री रामचरितमानस गान का प्रसारण समय रहेगा। कल सुबह 6:30 पर कार्यक्रम चिंतन प्रसारित होगा हमारे केंद्र से। कल सुबह 6:40 पर काव्यधारा में श्री सुल्तान सिंह सुल्तान का पूर्व प्रसारित काव्य पाठ हमारे श्रोता सुन सकेंगे। समय रहेगा कल सुबह 6:45 पर। स्वास्थ्य चर्चा का समय रहेगा कल सुबह 7:05 पर। कार्यक्रम में जानकारी होगी, शीर्षक होगा तंबाकू के सेवन से बचें, खेती की बातें। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होगा कल सुबह 7:10 पर। जानकारी का विषय होगा ग्रीष्मकालीन जुताई का महत्व। इन्फोटेनमेंट आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का प्रसारण समय रहेगा हमारे केंद्र से कल सुबह 7:31 पर। हमारे लखनऊ केंद्र से कल दिन में 9:15 पर सामयिक चर्चा का प्रसारण रहेगा। धरती गाती है होगा कार्यक्रम ये कल 9:20 पर। कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे रोहेलखंडी लोकगीत, कलाकार होंगी माधुरी शर्मा। बात आसपास की, ये कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होगा कल दिन में 9:50 पर। वाचन स्वर और संकलन होगा दिव्यम कंडवाल और ईशिका कौशिक का। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर हमारे श्रोता सुन सकेंगे कल दिन में 10:00। 10:55 पर हमारे दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की जनता को संबोधित 134वां संस्करण हमारे श्रोता कल सुन सकेंगे। फिल्मी संडे का समय रहेगा कल दोपहर 12:30 पर। कल की हमारी फिल्म होगी 100 डेज। बालवाटिका बच्चों का यह कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होगा कल दिन में 1:15 पर। और लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में हमारे श्रोता सुन सकेंगे राजस्थानी लोकगीत, समय रहेगा कल दिन में 1:45 पर। कलाकार होंगी शारदा सिंह। ये थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। और आज प्रोग्राम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त उज्मा।
1: और उज्मा के साथ प्रोग्राम में मैं हाजिर हूँ आपकी अपनी रेडियो पार्टनर सिमरन।
0: दोस्तों, आज है सैटरडे और सैटरडे को होता है हमारा एक स्पेशल सेगमेंट गीत आपके नाम, जिसमें अगर आपको भी अपने नाम कराना है कोई गीत
1: तो जल्दी से करिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज, और आपको पता ही है जिसके लिए नोट करना होगा आपको हमारा नंबर। हमारा नंबर है 9457078288।
0: हमें रहेगा आपके मैसेजेस का इंतजार। और दोस्तों, हम आपको आगे बता देते हैं, आज आप प्रोग्राम में सुनेंगे रहस्य सीरीज का सीजन 2 खामोश घाटी, जिसका होगा आज एपिसोड नंबर 5।
1: और आप सुनेंगे बात एक राज की।
0: बिल्कुल, आज आप जानेंगे कि इस बात एक राज की में आखिर कौन सा राज छुपा है। इसका मतलब सिमरन, आज हमारे दोस्तों के पास दो दो ऐसी चीजें हैं जिसमें वो कोई ना कोई राज जानेंगे ही।
1: बिल्कुल, तो चलिए दोस्तों सुनवाते हैं हम आपको हमारी प्यारी सी शाम का पहला और प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल, क्योंकि आज हमारा सेगमेंट ही है गीत
1: गीत
0: आपके
1: आपके
0: नाम।
1: नाम।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा।
0: जी हाँ, मजा आ गया।
3: अरे दामाद जी।
4: जी ससुर जी, बताइए।
3: जी ये मेरी बेटी मैं आपको सौंप रहा हूँ, जरा इसका ख्याल रखना।
4: अरे ससुर जी, आप किस बात की टेंशन ले रहे हैं, मैं तो इसका पूरा ख्याल रखूंगा।
3: हाँ दामाद जी, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसकी आंखों में आंसू ना आने पाए।
4: अरे अरे, आप परेशान ना हो, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, इसकी आंख में एक भी आंसू नहीं आएगा। बस प्याज मैं काट दिया करूंगा, पर देखिए बर्तन तो इसे ही धोने पड़ेंगे।
0: यहाँ मजा आ गया।
4: सिमरन, इमेजिन करो अगर हमारी जिंदगी एक फिल्म होती तो उसका हीरो मतलब के मुख्य किरदार कौन होता, हम या फिर कोई और?
3: उज्मा, सवाल तो एकदम सही है, लेकिन सोचने वाली बात भी है।
4: बिल्कुल सिमरन, कई लोग अपनी पसंद से नहीं बल्कि दूसरों की पसंद से जीते हैं।
3: हाँ, कभी दोस्तों के हिसाब से, कभी रिश्तेदारों के हिसाब से, और कभी समाज के डर से।
4: बिल्कुल, फिर एक दिन उन्हें एहसास होता है कि भाई हम तो अपनी ही कहानी में साइड कैरेक्टर बने हुए थे।
3: वैसे हीरो बनने का मतलब ये नहीं कि आपके पास सुपर पावर्स हो।
4: बिल्कुल, हीरो वो होता है जो मुश्किलों का सामना करता है, गिरता है लेकिन हार नहीं मानता, जो अपने सपनों के लिए मेहनत करता है और जो अपनी गलतियों से सीखता है।
3: दोस्तों सोचिए, अगर किसी फिल्म का हीरो हर वक्त ये सोचता रहता कि लोग क्या कहेंगे तो
4: शायद फिल्म इंटरवल तक भी ना पहुंचते। सिमरन
3: बिल्कुल, क्योंकि असली हीरो वही है जो आपके फैसले, जो अपने फैसले खुद लेता हो और अपनी जिंदगी की कहानी को खुद लिखता हो।
4: दोस्तों अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अगर कोई सपना है जिसे पूरा करना चाहते हैं, तो पहला कदम उठाइए,
3: क्योंकि हीरो बनने की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। तो आज खुद से एक सवाल जरूर पूछिए कि क्या मैं अपनी लाइफ का हीरो हूँ
4: या फिर मैं किसी और की कहानी में सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बनकर रह गया हूँ।
3: बिल्कुल, अगर जवाब दूसरा है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि कहानी बदलने का मौका ये लाइफ हमें हर दिन देती है।
4: बिल्कुल, और याद रखिए, आपकी जिंदगी की कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण किरदार आप खुद हैं।
3: तो चलिए इसी के साथ आपको हमारे सेगमेंट गीत आपके नाम का सुनवा देते हैं अगला प्यारा सा सॉन्ग।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: पप्पू वो पप्पू।
2: हाँ भाई बोलो।
3: चल तुझे आज को सुनाता हूँ यार।
2: हाँ हाँ सुनाओ। अरे रुको एक मिनट, रुको, पीछे हटो दरवाजे से, अब सुनाओ।
3: अरे यार पप्पू, आंखों में आंसू चेहरे पे हंसी है, सांसों में आहें दिल में बेबसी है।
2: अरे अरे भैया, पहले क्यों नहीं बताया यार कि दरवाजे में आपकी उंगली फंसी है।
0: यहाँ मजा आ गया।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: Akashwani at 90.
1: वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको सुनवा ही देते हैं आज बात एक राज की। दोस्तों ये बात है एक राज की। रिया की माँ काफी बीमार चल रही थी, लेकिन अपनी बीमारी में भी वो उस किताब को अपने से दूर ना होने देती और ना ही कभी रिया को उसे छूने देती। रिया अपनी माँ का सारा काम करती, उनका ध्यान रखती, लेकिन उसकी माँ बस उसे उस किताब को छूने ना देती। रिया ने कई बार कोशिश की, लेकिन जब भी वो उसे छूने की कोशिश करती, उसकी माँ उसे हर बार डांटकर भगा दिया करती और बोलती, चाहे कुछ भी हो जाए तो इस किताब को कभी नहीं छुएगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही रात होती, रात के 12 बजते, तो हर रोज रिया की माँ उस किताब को लेकर कमरे से बाहर चली जाती और लॉबी में बैठ जाती। वो माँ जो सुबह चलने तक से मजबूर होती है, वही माँ रात को अकेले उस किताब को लेकर कमरे से बाहर जाती है, लॉबी में बैठकर उस किताब को खोलती है और रोना शुरू कर देती है। बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहा। रिया रोज अपनी माँ को इसी हालत में देखा करती और सोचती, आखिर इस किताब में ऐसा क्या है, क्या कोई जादुई शक्ति है या फिर कुछ और सोचती रहती, लेकिन कभी उसकी हिम्मत उस किताब को छूने की नहीं हुई। रिया को लगता कि शायद वो कोई जादुई किताब है जिस कारण माँ मुझे उसे छूने तक नहीं देती, और शायद ये किताब ही है जिसके कारण मेरी माँ की ऐसी हालत है। वो रोज इसे लेकर मुझसे दूर चली जाती है। दोस्तों धीरे धीरे समय निकलता गया। सालों की बीमारी ने रिया की माँ को और ज्यादा बीमार कर दिया, लेकिन उस हालत में भी उन्होंने उस किताब को ऐसे संभाल रखा था जैसे कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ा राज छिपा हो। वो उसकी एक बच्चे की तरह देखभाल करती, साफ सफाई करती और गले से लगा कर रखती, लेकिन रिया को कभी छूने ना देती। रिया को लगने लगा था कि शायद माँ की दिमागी हालत खराब हो चुकी है और जिसकी जिम्मेदार सिर्फ ये किताब है। और एक दिन वो ठान लेती है कि वो उस किताब के राज को जानकर रहेगी जिसे माँ ने इतने दिनों तक, इतने सालों से अपने अंदर छुपाए रखा है। फिर एक दिन रोज की तरह रात के 12 बजते हैं, माँ उस किताब को लेकर लॉबी में चली जाती है। मगर इस बार रिया सिर्फ देखती ही नहीं बल्कि छुपकर अपनी माँ के पीछे पीछे जाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कोई जादुई किताब है। जैसे ही रिया माँ का पीछा करना शुरू करती है, उसकी माँ को एहसास होता है कि शायद मेरे पीछे कोई है, लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखती तो रिया छिप जाती। फिर माँ ने लॉबी में बैठकर जैसे ही उस किताब को

0: बोला, उनकी आंखें भर आईं। ये देखते ही रिया की चुप्पी टूट गई। उसने भागकर उस किताब को माँ से छीन लिया। जैसे ही वो किताब माँ के हाथों से दूर हुई, माँ की तबीयत और बिगड़ गई। देखते ही रिया ने उस किताब को अपने हाथों से फेंका और माँ को पकड़ लिया। वो किताब जाकर पीछे खुले हुए एक स्टोर रूम में गिर गई। माँ को लेकर रिया अस्पताल पहुंची। जैसे ही माँ को होश आया, उन्होंने उस किताब के बारे में पूछा तो रिया ने बताने से इनकार कर दिया और कहा, माँ मुझे नहीं पता वह कहाँ है, बस आप ठीक हो मेरे लिए इतना काफी है। माँ को घर लेकर आने के बाद रिया उस जगह दोबारा गई। उस किताब के रहस्य को जानने की जिज्ञासा में रिया ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया, जो कि उसे स्टोर में पड़ी हुई मिली। जैसे ही रिया ने उसे कांपते हुए हाथों से खोला, उसके अंदर एक इंसान की तस्वीर और कुछ लाइनें लिखी थी, जिस पर लिखा था कि बेटा मैं तेरा पिता हूँ, तो जब बड़ी हो जाएगी इस किताब को देखेगी तो मुझे जरूर पहचानेगी और मुझे पता है कि तू मेरा सपना जरूर पूरा करेगी। ये सब देखकर रिया को कुछ समझ नहीं आया। वो उस किताब को लेकर माँ के कमरे में आ पहुंची और माँ से बोली, माँ वो किताब अब मुझे मिल चुकी है, तो अब आप मुझे इसका सच बताइए। इतना सुनते ही रिया की माँ की आंखें भर आईं और उन्होंने कसकर उसे गले लगा लिया और रोना शुरू कर दिया। फिर सहमे हुए शब्दों में माँ कहती है कि रिया ये कोई किताब नहीं, ये तेरे पिताजी की डायरी है जिसमें उनकी कुछ यादें हैं। जब तू बहुत छोटी थी तब वे हम दोनों को छोड़कर चले गए। वे एक नेवी ऑफिसर थे और उनका सपना था कि जब उनकी बेटी बड़ी हो तो वो भी नेवी ऑफिसर बने। इस खुशहाल जिंदगी में एक दिन ऐसा आया कि वे समुद्र की लहरें उन्हें अपने साथ हमेशा के लिए डुबा ले गई और तेरे पिताजी हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चले गए। लेकिन उनकी ये डायरी जिसमें लिखा था कि वे तुझे भी एक नेवी अफसर बनता देखना चाहते हैं, ये देखकर मैंने इस डायरी को कई सालों से तुझसे अलग रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू भी अपने पिताजी की तरह हमेशा के लिए उन समुद्र की लहरों में समा जाए। मुझे डर था कि कहीं तू भी तेरे पिताजी की तरह मुझसे दूर ना चली जाए, इसीलिए मैंने ये डायरी तुझे कभी नहीं दिखाना चाहा, क्योंकि मेरा डर मेरी इस ममता के सामने आकर खड़ा हो जाता और ये डायरी ही थी जो तेरे पिताजी की यादों और मेरे जीने का सहारा थी।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो तो दोस्तों अब शामिल कर लेते हैं अपने दोस्तों के कुछ मैसेजेस, जिनमें से हमें एक

0: मिला है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से भेजने वाले हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबर राही, महराज जहां, महराज जहां। और इसी के साथ हमें एक और मैसेज मिला है, ये मिला है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। इसी के साथ हमें एक और मैसेज दोस्तों मिला है और भेजने वाले हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, सबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। और ये हमें भेजा गया है मसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से। और दोस्तों साथ ही हमें अगला मैसेज मिला है जिला अमरोहा नई बस्ती पतेई खालसा से भेजने वाले हैं बहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, नाविया सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। और साथ ही हमें अगला मैसेज मिला है पर्वतपुर मखदुमपुर से मोहम्मद सैफ, अयान, मोहम्मद ताहिर, अनस अब्बासी, कासिम अंसारी।
1: और एक और दोस्तों में मैसेज मिला है और ये हमें मिला है मोहल्ला हलवा यान शेरकोट जिला बिजनौर से भेजने वाले हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। एक और मैसेज हमें हमारे एक दोस्त ने लिख भेजा है और ये हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
0: तो चलिए दोस्तों इसी के साथ पहले हम आपको सुनवा देते हैं हमारे प्रोग्राम का रहस्य सीरीज जो कि जाने वाला है हमारे एपिसोड नंबर 2 और हमारी रहस्य सीरीज है खामोश घाटी।
1: बिल्कुल दोस्तों, अब आप बहुत सारे राज आज सुन रहे हैं तो उसमें एक और राज जो हमारा कई दिन से लगातार चल भी रहा है जिसका नाम है रहस्य सीरीज, हम इसको भी सुन लेते हैं जिसका है सीजन 2 खामोश घाटी। और आज आप इसका सुनेंगे एपिसोड नंबर 5। तो चलिए देखते हैं कि आखिर आज कौन सा राज इसमें खुलने वाला है।
2: हाय, मेरा नाम आदिल है, आदिल सैफी, और आप सभी लिसनर्स का स्वागत है हमारे रहस्य सीरीज के सीजन 2 में। इस कहानी का नाम है खामोश घाटी और ये है रहस्य सीरीज की 5वीं कड़ी यानी एपिसोड नंबर 5।

और आइए अब जान लेते हैं अब तक की कहानी। कहानी शुरू होती है 5 अक्टूबर साल 1987 में। एडम और बाकी टीममेट्स ट्रैक पर जाते हैं। उनकी डेस्टिनेशन थी साइलेंट वैली और काफ़ी परेशानियों और एडवेंचर के बाद वो शाम तक वैली में पहुंच जाते हैं। अब थोड़ा समय वो वहां पर बिताते हैं, लेकिन 6 अक्टूबर साल 1987 की रात तकरीबन रात के 2 बजे डेनवर पुलिस हेडक्वार्टर्स में एक सिग्नल रिसीव होता है जो कि साइलेंट वैली से ही आ रहा था, जिसे एडम ने भेजा था। नेक्स्ट डे जब रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचती है तो उनको वहाँ कोई नहीं मिलता। सब हैरान हो जाते हैं। फिर 3 दिन बाद 2 से 3 किलोमीटर दूर उनको टीम के मेंबर्स की डेड बॉडीज मिलती हैं, जिसमें से एक था एडम और दूसरा बेंजामिन। जब सर्चिंग टीम को उनकी बॉडीज मिलती हैं तब उन पर कोई भी कपड़े नहीं थे, सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहन रखे थे। लेकिन उसके अगले दिन फॉरेंसिक लैब उनकी डेथ से रिलेटेड रिपोर्ट पेश करने वाली थी। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि एडम की अंदर की पसलियां टूटी हुई थी और बेंजामिन की खोपड़ी टूटी हुई थी। पर सवाल ये था कि बिना किसी बाहरी चोट के इतनी ज्यादा अंदरूनी चोट कैसे लग सकती है। एडम के कुछ कपड़ों पर रेडिएशन के पार्टिकल्स भी मिले थे। आखिर उनके साथ उस रात ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि ये कोई साधारण हादसा नहीं लग रहा था। अब जब ये ऑटोप्सी रिपोर्ट बाहर लीक हुई तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। मीडिया से लेकर रक्षा मंत्रालय तक हर कोई जवाब ढूंढ रहा था, क्योंकि 5 लोग बिना कपड़ों के रेडियो एक्टिव निशानों के साथ। सवाल हजारों के पास थे लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। अब ये रिपोर्ट आने के 3 दिन बाद बर्फबारी बंद हुई और रिसर्च टीम दोबारा खोजबीन शुरू करती है। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, बाकी बचे हुए 3 टीम मेंबर्स की बॉडीज को ढूंढना। अब सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान उनको कुछ ऐसा मिला जिससे ये केस और डिप्रेसिंग होने वाला था।

0: एडम की एक टीम मेंबर और थी जो कि फीमेल थी और उनका नाम था डॉक्टर कैथरीन और ये सबूत उन्हीं से जुड़ा हुआ था। सर्चिंग टीम को डॉक्टर कैथरीन की डायरी मिलती है। डायरी के शुरू के पेजेस नॉर्मल थे, उनमें ग्रोसरीज आइटम की लिस्ट थी, राशन का सामान वगैरह वगैरह। लेकिन 6 अक्टूबर की रात लिखे गए पेजेस में राइटिंग लड़खड़ा रही थी। शायद लिखते वक्त बहुत जल्दबाजी में उन्हें लिखा गया हो।
1: 6 अक्टूबर रात के तकरीबन 7 बज रहे हैं। हवा में एक अजीब सी गंध है। इट्स लाइक बर्निंग फायर्स। मुझसे ये सब सहन नहीं हो रहा। सब कुछ बहुत अजीब है। हमारे कब्ज भी काम नहीं कर रहे हैं।
0: डायरी के अगले पन्ने पर तारीख नहीं थी, सिर्फ कुछ वाक्य थे जो बहुत जल्दबाजी में लिखे गए थे।
1: एक आवाज, एक भिनभिनाहट जो कानों में नहीं सीधा दिमाग के अंदर बज रही है। हम सो नहीं पा रहे। बेंजामिन रो रहा है। वो कह रहा है कि उसके कान में खून भर गया है, लेकिन मुझे कोई खून दिखाई नहीं दे रहा।
0: डायरी का आखिरी पेज सबसे ज्यादा डरावना था। पेज पर इंक की जगह शायद खून के धब्बे थे।
1: रात के 9 बज रहे हैं। बाहर बहुत रोशनी है। हरा रंग वो धुन नहीं, वो कुछ और है। हमें सांस नहीं आ रही। बहुत गर्मी है। मेरा शरीर जल रहा है। एडम ने GPS डिवाइस वहीं फेंक दिया है। हमें बाहर जाना होगा।

0: तो दोस्तों, अब अभी आपने सुनी रहस्य सीरीज, तो अब हमारे दोस्त अपने नामों का, अपने मैसेजेस का इंतजार भी कर रहे होंगे. तो चलिए अपने कुछ दोस्तों के मैसेजेस को शामिल किए लेते हैं. तो हमें ये मैसेज दोस्तों मिला है जनकपुरी सहारनपुर से. भेजने वाले हैं जॉन डी कैस्ट्रो, रोजी डी कैस्ट्रो, पर्ल डी कैस्ट्रो और वलेस डी कैस्ट्रो. इसी के साथ एक और मैसेज हमें मिला है लाल कुर्ती रोड की कैंट से. भेजने वाले हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राज. इसके साथ हमें एक और मैसेज मिला है और ये हमें भेजा गया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से. भेजने वाले दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा. इसी के साथ हमें एक और मैसेज मिला है जो मिला है नगीना से और भेजने वाले हैं अनिल विनोचा जी. एक और मैसेज दोस्तों में मिला है और ये हमें लिख भेज रहे हैं दीदी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार. क्या बात है, आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? मेरा नाम शामिल करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी. तो हम अपने दोस्तों को बता दें कि हम नाराज़ तो किसी से नहीं होते, बल्कि हम तो खुश होते हैं हमारे दोस्त हमें मैसेज करते हैं. बस बात ये होती है कि थोड़ा टाइम का होता
1: बिल्कुल
0: है ना
1: बिल्कुल
0: सिमरन.
1: दोस्तों, टाइम की वजह से हम
0: और
1: आपके मैसेज सीन.
0: ये जो सिमरन हमारे दोस्त नाराजगी जता रहे हैं, ये है नवी हसन अब्बासी जी. तो लीजिए, हमने आपका मैसेज शामिल कर लिया है, अब तो आपकी नाराजगी दूर हो गई होगी. तो अब अगले अपने साथी को शामिल करें. कौन है सिमरन?
1: हमारे अगले साथी हैं शाही मार्केट चौहरा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, चौधरी बेगम, रेहाना, अरफात, अदीब और कादिर चौधरी. साथ ही हमें अगला मैसेज लिख भेजा है विलेज एंड पोस्ट रहंगली आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान. साथ ही हमें अगला मैसेज मिला है दयारपुर बाबली महाराष्ट्र से. भेजने वाले हैं गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले, साथ ही शेरवडनेर अकोला से अरुण बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर.
0: तो चलिए दोस्तों, अपने इन दोस्तों की नाराजगी मिटाते हुए सुनवाते हैं एक प्यारा सा और खूबसूरत सा गीत.

0: सिमरन, हमें हमारे एक और प्यारे से साथी का एक और प्यारा सा मैसेज आ चुका है और ये हमें भेजा गया है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लाहौरा बालोद छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं। देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। तो चलो सिमरन, अपने दोस्तों को इस प्यारे से मैसेज के साथ आज की शाम का ये आखिरी प्यारा सा गीत भी सुनवा देते हैं।
1: बिल्कुल, क्यों नहीं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आपका ये अगला प्यारा सा गीत।

0: आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें जरूर बताइएगा। और आपको पता ही है, आपको कुछ नहीं करना, बस भेजने हैं हमें प्यारे प्यारे खत। और आपको पता है, खत भेजने के लिए नोट करना होगा हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 2467-63।
1: और दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारे इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर सुन सकते हैं। आप सभी लाइक, शेयर, कॉमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए। और अब अपने साथी उज्मा
0: और सिमरन को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति।
1: नमस्कार।

0: अभी आप युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं, कुछ ही क्षणों में समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी है, अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
2: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है

0: कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम बॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया हिमांशु रंजन की राम राम। और सुनाइए किसान भाइयों, कैसे हाल चाल है भाई? भाई देखो, हाल चाल तो आपके ठीक होंगे, और भैया आपकी खेती किसानी भी ठीक चल रही होगी। और भैया देखो, अभी कुछ देर पहले जो भैया नजीबाबाद क्षेत्र में भैया बारिश हुई है, तो भैया उसका लाभ भी हमारे किसान भाई ने उठाया होगा। भैया 1-2% की भैया तापमान में गिरावट जरूर आई होगी। और भैया देखो, हमारे किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ अन्य व्यवसाय भी करते हैं। और भैया बात करें हम अन्य व्यवसाय की, तो हमारे किसान भाई भैया देखो डेयरी व्यवसाय अत्यधिक करते हैं। और डेयरी व्यवसाय भैया हमारे किसान भाई करते हैं, तो इस समय हमें अपने दुधारू पशु का खास ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। पशुशाला का हमारे किसान भाई सही समय पर उचित प्रबंधन करें, पशुशाला को स्वच्छ और साफ रखें, साथ ही भैया हमारे जो पशु हैं उनको पीने के लिए स्वच्छ और ताज़ा पानी दें। अगर भैया आहार की बात करें तो पशुओं को सूखे चारे के साथ हरा चारा अवश्य दें, और भैया आहार में मिनरल मिक्सर देना भी अच्छा रहता है, जिससे हमारे पशु का दूध उत्पादन अच्छा बना रहता है। और भैया देखो, खैर आज आपसे बातचीत तो हम बहुत सारी करेंगे, लेकिन भैया उससे पहले आपको आज के कार्यक्रम के बारे में बता दें मैं कुछ। भाई देखो, आज दिन है शनिवार का, और हमारे किसान भाई जानते ही हैं कि भैया हम प्रत्येक शनिवार को किसान भाइयों को सुनवाते हैं लोकगीतों वैरागनियों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। और भैया इस

कार्यक्रम में हमारे किसान भाई अपनी पसंद की कोई भी रागनी लोकगीत सुनना चाहते हैं तो भैया वो हमें फ़ोन कर सकते हैं। और फ़ोन करने के लिए भैया हमारे नंबर हमारे किसान भाइयों को पता ही है, एक बार फिर से हम बता देते हैं। हमारा जो मोबाइल नंबर है पहला वो है 94-57-07-82-88। और भैया एक हमारा लैंडलाइन नंबर है वो है भैया 0-13-41-230-105। और भैया देखो, जब तक हमारे किसान भाई हमें फ़ोन करें तब तक भैया हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। और भैया देखो, बातचीत भी हम किसान भाइयों के लिए जो लेकर आए हैं भैया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका विषय है सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व। भाई देखो, सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे किसान भाई सब जानते ही हैं, लेकिन हम एक बार बता देते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। जिस प्रकार भैया मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रहने के लिए विटामिन और खनिजों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भैया फसलों की अच्छी वृद्धि और विकास और उत्पादन के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। पौधों को इन तत्वों की मात्रा बहुत कम चाहिए होती है, लेकिन इनकी कमी होने पर फसल का विकास रुक जाता है, उत्पादन घट जाता है और गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। इसलिए खेती में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आधुनिक कृषि में किसान अधिक उत्पादन लेने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग करते हैं भैया, जिससे भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा तो कुछ हद तक बनी रहती है, लेकिन भैया जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी कमी लगातार बढ़ती जाती है। यही कारण है कि भैया हमारे जो कई सारे क्षेत्र हैं मिट्टी मिट्टी में भैया जिंक की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, बोरोन, मैग्नीज और सल्फर, इन सभी तत्वों की भैया कमी देखने को मिलती है। तो हमारे किसान भाइयों से भैया अनुरोध है कि हमारे किसान भाई इन सूक्ष्म पोषक तत्वों का ध्यान रखें। और अगर भैया हम बात करें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की, तो भैया कई कारण हो सकते हैं। भैया लगातार एक ही फसल उगाना भी इसका एक कारण है। रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग भी भैया इसका एक कारण है। जैविक खादों का कम उपयोग करना, मिट्टी का क्षारीय होना तथा अत्यधिक सिंचाई, भैया ये सब कारण हैं कि हमारी जो मिट्टी है उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की, या यूं कहें कि उपलब्धता की कमी हो जाती है। तो भाई हमें एक ही उर्वरक के ऊपर नहीं रहना, जैसे भैया हम अपने खेत में केवल यूरिया का उपयोग करें, डीएपी का करें, एनपीके का करें, भैया इन सब के अतिरिक्त भी हमें अपने खेतों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का ध्यान रखना है। और भैया इसके लिए हमें जैविक खेती की ओर जाना पड़ेगा और देसी खाद का उपयोग हमें अपने खेतों में करना है, कार्बनिक खेती का प्रयोग करना है। और आजकल तो भैया देखो केंचुए खाद आ गया है, इन सब का उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और जहाँ तक भैया जैव उर्वरक की बात है, तो जैव उर्वरकों का प्रयोग भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने में भैया सहायक होता है। कुछ सूक्ष्म जीव मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं, इससे रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है तथा भैया भूमि की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है। साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्व केवल उत्पादन बढ़ाने में ही नहीं भैया, बल्कि फसल की गुणवत्ता सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भैया। और जिंक हो गया भैया, आयरन है, इनकी पर्याप्त मात्रा होने पर अनाज अधिक पौष्टिक बनते हैं। फल और सब्जियों की बात करें तो इनका आकार, रंग और स्वाद भी भैया बेहतर होता है। आज पोषण सुरक्षा के लिए भी सूक्ष्म पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इनकी कमी मानव स्वास्थ्य को भी भैया प्रभावित कर रही है। तो आज की आधुनिक खेती में केवल हमें अधिक उर्वरक डालना ही पर्याप्त नहीं है भैया, बल्कि संतुलित पोषण देना भी आवश्यक है। यदि खेत में भैया केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ही डालते रहेंगे और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भैया अगर बात करें तो कमी होती चली जाएगी। इसलिए भैया हमें संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना है। साथ ही भैया खेत में हमें जैविक खाद का उपयोग करना है, कार्बनिक खाद का उपयोग करना है, केंचुए खाद का उपयोग करना है। तो इस प्रकार सूक्ष्म पोषक तत्व कृषि उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भैया ये पौधों की वृद्धि, विकास, फल फूल निर्माण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और उत्पादन गुणवत्ता को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भैया यो तो बात हुई सूक्ष्म पोषक तत्वों के महत्व पर। भैया हमारे किसान भाई इन बातों से भैया लाभ कमाएंगे और भैया लाभ हम भी कमाएंगे, क्योंकि भैया हमारे पास भी कुछ जरूरी संदेश है।

0: तो आइए सुन लेते हैं कुछ ये जरूरी संदेश।
1: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
2: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
1: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
2: खुशहाली का नया प्रयोग।
3: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: AIR at 90.
1: तो अभी हमारे किसान भाइयों ने सुने कुछ ये जरूरी संदेश, और अब भैया कार्यक्रम में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और भैया, हम कार्यक्रम के शुरुआत में बात कर रहे थे, हम किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं आज लोकगीतों व रागनियों का सजीव फोन इन कार्यक्रम, हेलो लोक मंजरी।

0: स्वागत है आपका आज के लोकगीतों वीरागनियों के सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी में। और इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका भैया हिमांशु रंजन। और भैया, आप अपनी पसंद की कोई भी रागनी या भैया लोकगीत सुनना चाहते हैं तो अब से लेकर 6:45 तक आप हमें स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। और भैया, फोन करने के लिए हमारे नंबर हैं 94-57-07-82-88। और भैया, एक हमारा लैंडलाइन नंबर है, वो है 013-41-230-105। और भैया देखो, इधर हमने नंबर बताया, उधर देख लेते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो लोक मंजरी।
1: हेलो लोक मंजरी
0: जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए अपना।
1: हिमांशु रंजन जी, राम राम।
0: राम राम जी, राम राम।
1: मैं ग्राम धोरणा जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ जी।
0: जी मदन गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप
1: जी? ठीक हूँ मैं, आप सुनाइए।
0: बस
1: आप कैसे और आकाशवाणी परिवार में सब कैसे हैं?
0: जी बहुत बढ़िया है यहाँ पर भी सब। और बताइए, आपकी खेती किसानी कैसी चल रही है?
1: बहुत बढ़िया जी,
0: बहुत बढ़िया। और आज का मौसम, मौसम का हाल बताइए, आपकी तरफ कैसा हाल है?
1: डेढ़ बजे जो है आंधी आई थी, तूफान आया।
0: अच्छा,
1: और हल्की बूंदाबांदी हुई है।
0: तो मौसम में कुछ गिरावट तो आई होगी, 1-2 डिग्री की?
1: हाँ जी, गिरावट आई है, 1-2% की गिरावट आई है जी।
0: चलिए बहुत बढ़िया। और देखिए, अब गर्मी भी काफी हो रही थी तो ये भी जरूरी।
1: बहुत ही गर्मी थी भयंकर
0: जी। जी जी, तो आज आप हमारे इस कार्यक्रम में क्या सुनना चाह रहे हैं?
1: मैं सुनना चाह रहा हूँ जी, मुनि वेद व्यास जब ऋषियों के संग कलयुग का जिक्र करने लगे
0: जी,
1: सुन सुन के दिल

0: आप गए कानों पे हाथ धरने लग गए। दो
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आइए सुन लेते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारी सी।
0: चार नाम देना चाहूंगी
1: जी
0: मैं।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ले लीजिए।
0: एक तो सत्यवीर सिंह चौहान है आचार्य जी,
1: जी जी जी
0: एक हमारे आसिफ चौधरी जी हैं, प्रकाश चंद जी हैं और अनिल बिनोता जी हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ जी,
1: तो आइए सुन लेते हैं आपकी पसंद पर ये रागनी। आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी हमारे किसान भाइयों ने सुनी मैनपाल सिंह की गाई ये प्यारी सी रागनी, और भैया उम्मीद है कि आपका मनोरंजन हो गया होगा और हमारे किसान भाई भैया अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी सुन रहे हैं। और देख लेते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो लोकमंजरी,
1: हेलो लोक मंजरी सर, नमस्ते
0: नमस्ते जी। कौन सा आप बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए अपना।
1: जी। मैं उत्तराखंड से निखाल सेनगांव फील्ड से प्रकाश चंद्र बोल रहा हूँ जी। मैं
0: जी प्रकाश चंद जी, कैसे हैं आप और आपकी खेती किसानी कैसी चल रही है?
1: डॉक्टर, खेती किसानी भी बहुत बढ़िया चल रही है और सब बढ़िया है, ठीक ठाक है। इधर तो आज मौसम ने भी बहुत साथ दे दिया।
0: अच्छा,
1: हाँ, बहुत साथ दे दिया मौसम ने।
0: तो आपकी तरफ का मौसम इसका मतलब बहुत खुशनुमा हो रहा है।
1: ऐसा बहुत ही अच्छा हो गया उत्तराखंड में तो, आज बहुत ही अच्छा रौनक आ गया, बहुत ही बारिश हो गई, बहुत ही सुहावना मौसम हो गया।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताइए आज के कार्यक्रम में क्या सुनना चाह रहे हैं आप?
1: ऐसा मैं हरवाणी लोक गीत सुनना चाहता हूँ, वो है कि रंग बिरंगी चूड़ी लाया मनियारा।
0: अच्छा
1: हाँ, चूड़ी लाया मनियारा, ये बहुत अच्छा। मेरा परिवार और जो श्रोता बहुत अच्छा प्यार करते, मतलब बहुत अच्छे उसे सुनते हैं इस गाने को।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी फरमाइश पर सुनते हैं हम प्यारा सा
1: अरे
0: लोकगीत। जी
1: वैसा भी एक दो नाम ले लूं मैं, वैसा
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: अनुप्रिया, उज्जवल कुमार और मंजू देवी, और भाषा इस गाने को बहुत उसे सुनेंगे यार। एक भाषा घर वाली लाइन भी सुना दूं मैं आपको।
0: जी जी जल्दी से सुना दीजिए आप।
1: अरे पलखला की मैं बोझी, ए पलखला की मैं बोझी, उलारा बोझी ती ले दारो बोला, ए पलखला की मैं बोझी, उलारा बोझी ती ले दारो बोला।
0: बहुत
1: हेलो,
0: बहुत बढ़िया प्रकाशन जी, बहुत बढ़िया। आपके गढ़वाली गीत से तो वही हम मनमुग्ध हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा गाया आपने। तो
1: बाबा
0: अब
1: धन्यवाद।
0: जी, तो आइए अब आपकी पसंद पर प्यारा सा लोकगीत सुन लेते हैं। आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: चूड़ी ले लो चूड़ी।

0: किसान भाई सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी। आप हमें अब से लेकर 6:45 तक सीधे स्टूडियो में कॉल करके अपनी पसंद की कोई भी रागनी या लोकगीत सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 9457-07-82-88। साथ में हमारा एक लैंडलाइन नंबर है, वो है 0-13-41-230-105। और अब देख लेते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं। हेलो लोकमंजरी
1: हेलो लोक मंजरी।
0: जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? नाम
1: नमस्कार
0: बता
1: सर,
0: दीजिए।
1: कैसे
0: जी नाम बता
1: हो सर?
0: जी बहुत बढ़िया, नाम बता दीजिए, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मेरा नाम ब्रजपाल है सर, गांव रामसावाड़ा, जिला सहारनपुर से बोल रहा सर।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है ब्रजपाल जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आपकी
1: धन्यवाद।
0: खेती किसानी कैसी चल रही है?
1: ठीक ठाक है सर,
0: जी
1: फिलहाल गन्ना है सर, अच्छा खड़ा।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज का मौसम कैसा है आपके सहारनपुर में?
1: सर तूफान ज्यादा है और
0: जी
1: सर बारिश हड़की आएगी, ठंडक
0: चलिए कोई बात।
1: हो गया।
0: जी,
1: जी
0: मतलब मौसम में 1-2 डिग्री की गिरावट आई है आपकी तरफ।
1: जी सर,
0: चलिए चलिए, लगता है कि ये जो हल्की बूंदाबांदी है ये लगभग हमारे क्षेत्र में के आसपास सभी में है ये।
1: जी सर,
0: चलिए, तो आप आज कौन सा लोकगीत या रागनी सुनना चाह रहे हैं हमारे कार्यक्रम में?
1: हरियाणा फिल्म का है जी, चंद्रावन फिल्म का, नयन कटोरे काजल डोरे।
0: जी, नैन कटोरे काजल डोरे, बिल्कुल भाल सिंह
1: जी
0: की आवाज
1: सर,
0: में है ये। तो आपने
1: जी
0: हमें
1: सर,
0: कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनवाते हैं आपका ये मनपसंद
1: धन्यवाद।
0: लोकगीत। धन्यवाद जी।

0: नैन कटोरे काजल डोरे। भाई किसान भाइयों, अभी आपने भाल सिंह की गाई है प्यार प्यारा सा लोकगीत सुना, और हमारे किसान भाई सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी। और भैया देख लेते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो लोकमंजरी,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, कौन सा आप बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए अपना।
1: मैं साहब जिला बुलंदशहर से वाचर हुकम सिंह बात कर रहा हूँ।
0: जी, बताइए हुकम सिंह जी, कैसे हैं आप।
1: मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक हैं सर, पूरा परिवार सहित।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम सब आकाशवाणी परिवार बिल्कुल ठीक है। और आपकी खेती किसानी कैसी चल रही है ये बताइए।
1: बहुत बढ़िया चल रही है सर,
0: जी,
1: ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है।
0: जी, बिल्कुल, ईश्वर का आशीर्वाद सदा यूं ही बना रहे। और खेती बाड़ी में इस समय क्या क्या लगा रखा है आपने ये बताइए पहले।
1: खेती बाड़ी में हमारे यहाँ ईख पैदा होती है जी।
0: जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन सी वैरायटी का गन्ना
1: हाँ
0: लगाया आपने।
1: ये तो शाहजी को ज्यादा पता है जी, मैं
0: अच्छा
1: तो नौकरी करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
1: हाँ
0: चलिए, तो आज हमारे इस कार्यक्रम में कौन सा लोकगीत या रागनी सुनना चाह रहे हैं आप।
1: ये ब्रह्मदेव आर्य की है, चोरी का धन और उसका पानी।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो
1: हाँ
0: आइए
1: उपदेश
0: आप।
1: है ये शायद।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो
1: हाँ
0: आपकी पसंद पर सुन लेते हैं ये प्यारी सी रागनी। और आपने हमें कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा कॉल रिसीव किया।
0: जी, धन्यवाद जी।

0: किसान भाई सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी, और आप देख लेते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो लोकमंजरी,
1: जी
0: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते जी। हाँ
0: नमस्कार जी। कौन सा आप बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए अपना।
1: जी मैं ग्राम पोस्ट राहुल नगली से आचार्य सत्यवीर सिंह बोल रहा था जी।
0: जी, सत्यवीर जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ जी बढ़िया साहब, और आप लोग ठीक है? सब
0: जी, बिल्कुल, हम सब बढ़िया हैं। और खेती किसानी कैसी चल रही है आपकी?
1: ठीक है जी, बढ़िया चल रही सब।
0: चलिए जी, और आज आप हमारे इस कार्यक्रम में कौन सी रागनी या लोकगीत सुनना चाह रहे हैं?
1: आज देखिए इस रागिनी को, ये मदनगिरी जी है, अमित दीवान और
0: जी
1: साहब आसिफ और राशिद, ये सुनना चाहते हैं मेरा नौ डांडी का बीज ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपकी पसंद पर ये प्यारा सा लोकगीत सुन लेते हैं, और आपने हमें कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे लोकगीतों वैरागियों का सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी। और भाई जिन किसान बहन भाइयों के आज फोन नहीं लगे हैं या किसी कारणवश वो नहीं कर पाए हैं, तो हम अपने किसान भाइयों को बता देते हैं कि वो अगले शनिवार यानी कि 6 जून 2026 को हमारे स्टूडियो में सीधे फोन कर सकते हैं। और फोन करने के लिए हमारे नंबर वही हैं 94-57-07-82-88। और भैया एक हमारा लैंडलाइन नंबर है, वो है 013-41-200-230-105। और भैया आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, कार्यक्रम में और आप क्या सुनना चाहते हैं, तो आप हमें खत भी लिख सकते हैं और आप पता नोट कर सकते हैं। पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन है भैया 2467-63। तो इस पते पर हमें आपकी चिट्ठियों का इंतजार रहेगा। और अब अपने भैया हिमांशु रंजन को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता, विषय है बिना पंखों के भी उड़ता आशा का पक्षी। वार्ताकार हैं डॉक्टर अपर्णा।
1: कभी पहाड़ की गुफाओं में रहने वाला मनुष्य आज चांद तक पहुंच गया है। इस सफल एवं सुफल यात्रा में मनुष्य कई क्रांतियों से गुजरा है। पहले संज्ञानात्मक क्रांति, कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति, सूचना क्रांति और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति। मनुष्य के विकास की यह गाथा बेजोड़ और शानदार है। इस सफलता के कई कारण गिनाए जा सकते हैं। इन कारणों में जो सबसे बड़ा कारण है आशा की दृष्टि। आशा का सीधा मतलब यह है कि जब आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिली है या नहीं मिल रही है, तब भी अगर आपको यह यकीन है कि मुझे सफलता अवश्य मिलेगी, तो यही दृष्टि, यही विश्वास आशा की दृष्टि कहलाता है। इसे एक दूसरे रूपक से भी समझा जा सकता है। आशा को अगर एक पक्षी मान लिया जाए तो यह साफ है कि इसे सहयोग करने के लिए कोई पंख नहीं होता, जैसे कि पक्षी के पंख हुआ करते हैं। यही नहीं, आशा का पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो सदा एक जोखिम, एक खतरा बना रहता है। आशा का पक्षी आकाश से धरती पर गिर सकता है, उसके साथ कोई हादसा हो सकता है, वह घायल हो सकता है, ढेरों ऐसी संभावना उसके सामने आ सकती हैं। फिर भी आशा का पक्षी बेखौफ उड़ता है, उड़ने का उत्सव भी मनाता है, आनंद उठाता है, गीत गाता है, नाचता है, गुनगुनाता है। बिना सहारे के उड़ने वाला आशा का पक्षी अपने ही विश्वास के कारण

हमारे दृष्टिकोण का हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है, इसे एक छोटी सी कहानी से समझाया जाए तो मजेदार भी है और ज्ञानवर्धक भी। सोनू और मोनू दो भाई थे। सोनू सदा सकारात्मक रहा करता था और मोनू सदा नकारात्मक। एक बार उनके पिताजी ने दोनों बच्चों के साथ एक प्रयोग किया। सदा सकारात्मक सोच रखने वाले सोनू को उन्होंने रात में एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में केवल घास था और थोड़ा सा घोड़े का लीद। उसे अकेले कमरे में छोड़कर उस कमरे में बाहर से ताला बंद कर दिया। इसी तरह उन्होंने सदा नकारात्मक सोचने वाले मोनू को भी अकेले दूसरे कमरे में बंद कर दिया। मोनू के कमरे में उन्होंने मिठाई, खिलौने और कुछ पटाखे रख दिए। सोनू की तरह उनके पिता ने मोनू के कमरे में भी बाहर से ताला बंद कर दिया। उसके पिता सुबह उठकर सोनू और मोनू दोनों की प्रतिक्रिया देखना चाहते थे। याद रखिए, सोनू सदा सकारात्मक और मोनू हमेशा नकारात्मक सोचा करता था। सबसे पहले मोनू का कमरा खोला। उसके पिता को लगा कि शायद इस बार मोनू खुश मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। हमेशा की तरह मोनू दुखी था, चिड़चिड़ा और नकारात्मक भी। आश्चर्य में डूबे उसके पिता ने मोनू से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो बेटे? मोनू ने कहा, मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ और डरा हुआ हूँ। क्यों, तुम्हारे पास तो कमरे में सब कुछ था फिर भी? पिता ने पूछा। अब मोनू के जवाब देने की बारी थी। मोनू ने कहा, मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं पेट खराब ना हो जाए। पटाखों का इस्तेमाल मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे कमरे में आग लगने का खतरा था। और खिलौनों का क्या हुआ? पिताजी ने उससे गुस्से में पूछा। मूड खराब था, डरा हुआ था, तो पिताजी मैं खिलौने का क्या करता? मोनू ने जवाब दिया। उसके पिता ने निराशा के बारे में अपना सर पकड़ लिया। अब बारी थी सदा सकारात्मक रहने वाली सोनू की। देखने की, याद रखिए, उसके कमरे में केवल घास और घोड़े का लीप था। पिताजी ने बाहर से कमरे का ताला खोला। उसे उम्मीद थी कि इस बार तो सोनू अवश्य निराश मिलेगा, लेकिन उसके पिता का घोर आश्चर्य हुआ। सोनू खुश था और कमरे में घास उठा उठा कर कुछ ढूंढ रहा था। पिताजी ने उससे पूछा, इतने खुश क्यों हो? सोनू ने कहा, इस कमरे में घास है, घोड़े की लीद है, तो निश्चित ही घोड़ा भी होगा। मैं इसी घोड़े को ढूंढ रहा हूँ। सोनू के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह खुश था, जबकि मोनू के पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। श्रोताओं, क्या हमारे मन के भीतर भी सोनू और मोनू जैसा बच्चा नहीं रहता? क्या हमें भी जीवन में सदा खुश रहने वाले और दुखी रहने वाले लोग नहीं मिलते हैं? आइए अपने मन को टटोले। कुछ लोग दुर्घटना, मृत्यु, बीमारी जैसी घटना में भी कुछ शुभ और सुंदरता देखते हैं, जबकि कुछ लोगों की आदत होती है कि वे हर सुंदरता में भी कमी निकाल लेते हैं। प्रसिद्ध विद्वान सैमुअल जॉनसन ने लिखा भी है, प्रत्येक घटना के अच्छे पहलू को देखने की आदत 1000 पाउंड से भी अधिक मूल्यवान है। अब इस सच्चाई को मेडिकल साइंस का रिसर्च भी सच साबित करता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप केवल सकारात्मक व्यक्ति के संसर्ग में आते हैं तो आपके खून में करीब 1500 आरबीसी बढ़ जाता है। हम सभी जानते हैं कि आरबीसी ही वह तत्व होता है जो हमारे शरीर को बीमारी के विरुद्ध लड़ने में प्रतिरोधी शक्ति देता है। इसी शोध में यह देखा गया कि जब कोई नकारात्मक व्यक्ति हमारे संसर्ग में आता है तो सीधे हमारे खून में 1600 आरबीसी कम हो जाता है। संदेश साफ है, हम अपने दृष्टिकोण को जांचें, परखें, देखें और समझें। अगर हम नकारात्मक हैं तो हमारे भीतर के आशा का पक्षी का दम घुटता है और असीम संभावनाओं के आकाश में वह कभी भी नहीं उड़ पाता। आज चारों ओर निराशा, अवसाद, आत्महत्या, अपराध, निंदा और शिकायत का भी माहौल और परिवेश ही दिखाई देता है। किसी शायर ने खूब कहा, सुबह नहीं, शाम नहीं, बस रह गया एक नहीं, हाँ का कोई काम नहीं। श्रोताओं, फिर भी मनोवैज्ञानिक के एक शोध का हवाला दूंगी। हमारे मन में करीब रोज 80,000 संस्कार बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें 80% विचार नकारात्मक होते हैं। इसलिए हमें अपने भीतर सकारात्मकता का

0: बीज स्वयं बोना पड़ेगा, तभी सकारात्मकता का पुष्प और पौधा पल्वित हो पाएगा। चारों तरफ संदेश देने वाली घटनाएं और कहानियां मौजूद हैं, बस दृष्टि को ठीक करने की दरकार है। आइए यहाँ हैरी पॉटर किताब लिखने वाली ब्रिटिश महिला जेके रोलिंग की चर्चा करते हैं। आज उनके पास यश और धन सब कुछ है, ब्रिटिश महारानी से भी ज्यादा उनके पास धन है, लेकिन बीते हुए कल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वे अकेली थीं, दुखी थीं, दर्द में थीं। वे गरीब थीं, न पति न नौकरी, छोटी सी बच्ची और लोगों के ताने और तिरस्कार। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, संघर्ष किया, रद्दी के कागजों में लिखा। प्रकाशकों ने उनकी किताब को छापने से मना कर दिया। इस हालात में भी जेके रोलिंग के आशा का पक्षी खुले आकाश में उड़ना चाहता था। उन्हें जीत मिली, वे सफल हुए और इतिहास आज उनकी तारीफ और कद्र कर रहा है। आशा सकारात्मक दृष्टि से पैदा होती है और यह विश्वास को जन्म देती है। इसी स्थिति को मैथिली शरण गुप्त ने अपनी एक चर्चित कविता में ढाला है। इसकी कुछ पंक्तियां यहाँ आशा के पक्षी को समझने में सहयोगी होंगी। वे कहते हैं, संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। जेके रोलिंग जैसी हजारों कहानियां हमारे आसपास मौजूद हैं। बस इसे तलाशने, इसके मर्म को समझने और फिर जीवन में उतारने की आवश्यकता है। इसलिए सच ही कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: अभी आप कार्यक्रम विविधा में डॉक्टर अपर्णा की पूर्व प्रसारित वार्ता सुन रहे थे। शीर्षक था, बिना पंखों के भी उड़ता आशा का पक्षी। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:55 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम छाया गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है फिल्म तीसरी मंजिल से। इस गीत को आवाजें दी हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। आरडी बर्मन का संगीत है। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम छाया गीत में अभी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म थी तीसरी मंजिल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है पड़ोसन। आर डी बर्मन का संगीत है, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण।

अभी आपने सुना फिल्म पड़ोसन का ये गीत। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फिल्म काला बाजार का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। एसडी बर्मन का संगीत है, गीतकार हैं शैलेंद्र।

आँखों में सारी रात जाएगी। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। फिल्म मेरा साया से आशा भोसले की आवाज़ है, मदन मोहन का संगीत है, गीतकार हैं राजा मेहंदी अली ख़ान।

फिल्म मेरा साया के इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम की 7:15 होने को हैं। आइए अब आपको हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

आज रात्रि हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, समय रहेगा रात्रि 10 बजे। आज रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से ही रिले होगा राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका। सुगम संगीत का प्रसारण समय रहेगा आज शाम 7:32 पर। सुगम संगीत में आप आनंद ले सकेंगे श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा के गाए भजनों का।

ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। भक्ति संगीत वंदना का समय रहेगा कल सुबह 6:05 पर। श्री रामचरितमानस गान का प्रसारण समय रहेगा कल सुबह 6:30 पर। 6:40 पर होगा चिंतन। 6:45 पर काव्यधारा में आप सुन सकेंगे श्री सुल्तान सिंह सुल्तान का पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी का विषय होगा तंबाकू के सेवन से बचें। समय रहेगा कल सुबह 7:05 पर। खेती की बातें, ये कार्यक्रम हमारे केंद्र से हमारे श्रोता सुन सकेंगे कल सुबह 7:10 पर। जानकारी का विषय होगा ग्रीष्मकालीन जुताई का महत्व। इन्फोटेनमेंट आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का समय रहेगा कल सुबह 7:31 पर। धरती गाती है, ये कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होगा कल दिन में 9:20 पर। 9:15 पर हम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे सामयिक चर्चा बात आसपास की। ये कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होगा कल सुबह 9:50 पर। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर का प्रसारण समय रहेगा कल दिन में 10:00। मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की जनता को संबोधित 134वां संस्करण हमारे केंद्र से प्रसारित होगा कल दिन में 10:55 पर। ये थी हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 हुए हैं। अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से होगा।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा में लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी की तकनीक का स्वदेशी विकास है प्रधानमंत्री की परिकल्पना। और प्रदेश भर में कल आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा, समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के सीजी सिटी में 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल बनावट का नमूना भर नहीं है, यह सबको सेनाओं के संघर्ष और योगदान को स्मरण कराएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर की अहम भूमिका है।
1: हमने यहां पर लखनऊ में डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है। इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही बधाई देता हूं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के संकल्प से जुड़कर विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है।
2: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण

0: उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो।
1: भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित यह परियोजना अत्याधुनिक ओपन एयर म्यूजियम एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में तैयार की गई है। नौसेना शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
2: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे। 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 18 और 19 जून को केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। यह उद्यम लिथियम आयन बैटरी, महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन करता है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि उनका निर्माण भारत में ही किया जाए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर हो। उन्होंने कहा कि इसी परिकल्पना के अनुरूप लोहम नामक एक युवा स्टार्टअप ने सफलतापूर्वक एक जटिल तकनीक विकसित की है। केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद ने आज पीलीभीत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में कार्यकर्ताओं के साथ भाग लेकर संगठनात्मक विषयों पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। प्रदेश भर में कल उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 आयोजित होगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में स्थापित 1011 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,44,958 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। इसी क्रम में अमरोहा की अपर जिलाधिकारी गरिमा सिंह ने बताया कि बीएड प्रवेश परीक्षा जनपद में 6 परीक्षा केंद्रों पर संपादित होगी।
3: जिले में बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए लगभग सभी सेंटर्स तय हो चुके हैं। उस पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और परीक्षा के पेपर्स के संबंध में सभी चीजें लगभग तैयार कर ली गई हैं। जिले में जितने भी सेंटर्स हैं, बच्चों को वहां पे पर्याप्त सुविधा भी मिल पाए, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। क्लॉक रूम की भी व्यवस्था कर ली गई है।
1: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय किया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आज अग्निवीर योजना के तहत 7वें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जवान सेना में विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर दिए जाएंगे।
4: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में वो ज्वाइन करेंगे। जाति के साथ ही अग्निवीर इनको वो जो अपना कार्य है वो करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पर हमने इन्हें ट्रेन करा है और मुझे विश्वास है कि अपना ये कार्य अच्छे ढंग से ये पूरा करेंगे।
1: आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज के दिन ही हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
5: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों से शुरू हुआ यह सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुँच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी।
1: प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा में लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी की तकनीक का स्वदेशी विकास है प्रधानमंत्री की परिकल्पना। और प्रदेश भर में कल आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित होगा। नमस्कार।
6: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
7: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:32 होने को हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुनेंगे श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा के गाए भजन।

कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। सुगम संगीत में आज आप सुन रहे हैं श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा के गाए भजन।

इसी भजन के साथ ही आज का सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुगम संगीत सुन रहे थे। सुगम संगीत में आज आपने सुने श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा के गाए भजन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को फैजुर रहमान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है फिल्म सागर से। इस गीत को आवाजें दी हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। आरडी बर्मन का संगीत है। गीतकार हैं जावेद अख्तर।

अच्छा, तो अभी आपने सुना फिल्म सागर का ये गीत। आवाज़ें थीं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आर डी बर्मन का संगीत था। गीतकार थे जावेद अख्तर। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक और गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म जो जीता वही सिकंदर से। गीत को आवाजें दी हैं उदित नारायण और साधना सरगम ने। जतिन ललित का संगीत है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं। धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिलों की बहार हो तुम, तरसती हुई निगाहों का इंतज़ार हो तुम, मेरी ज़िंदगी का पहला प्यार हो तुम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और साधना सरगम को। फिल्म थी जो जीता वही सिकंदर। संगीत जतिन ललित का था, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं एक और गीत। इस गीत को आवाज दी है भूपेंद्र ने। मदन मोहन का संगीत है, गीतकार हैं गुलजार। फिल्म का नाम है मासूम। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। एक दीवाना मुसाफिर है मेरी आंखों में, वक्त बेवक्त ठहर जाता है फिर चल पड़ता है। अपनी ताबीर के चक्कर में मेरा जागता ख्वाब रोज सूरज की तरह घर से निकल पड़ता है। उसकी याद आई है सांसों, जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म मासूम का ये गीत। गीत को आवाज़ दी थी भूपेंद्र ने, मदन मोहन का संगीत था, गीतकार थे गुलजार। कार्यक्रम में आइए अब शामिल करते हैं एक और गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म मिलन से। मुकेश की आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी के बोल हैं। रब न करे कभी तुम्हें खुशियों की कमी हो, रब न करे कभी तुम्हें खुशियों की कमी हो, तुम्हारे कदमों के नीचे फूलों की जमी हो। आंसू न हो तुम्हारी आँखों में कभी, अगर हो तो वो खुशियों की नमी हो।

तो अभी आपने सुना फिल्म मिलन का ये गीत मुकेश की आवाज़ में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म अभिमान से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, एसडी बर्मन का संगीत है, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी। जुल्फों को लटकने दो गालों से अच्छा लगता है, जुल्फों को लटकने दो गालों से अच्छा लगता है, माथे पे बिंदिया आँखों में काजल अच्छा लगता है। वैसे इस गुलिस्ता में हैं गुल के हजारों रंग, पर तेरी बिंदिया का ये अंदाज अच्छा लगता है।

फिल्म अभिमान के इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है एक ही फिल्म के गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुनने वाले सभी श्रोताओं को फैजुर रहमान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं कोई एक फिल्म और सुनवाते हैं उसी फिल्म के नगमे। आज की हमारी फिल्म है वर्ष 1982 में प्रदर्शित फिल्म सत्ते पे सत्ता। फिल्म राज एन सिप्पी द्वारा निर्देशित है और रोमू एन सिप्पी द्वारा निर्मित है। ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, रंजीता कौर और अमजद खान मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे, जबकि सचिन पिलगांवकर, सुधीर लथुरिया, शक्ति कपूर, कंवरजीत पेंटल और कमलजीत सिंह सहायक भूमिकाओं में नजर आए। फिल्म का छायांकन अनवर सिराज ने किया था और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। फिल्म 22 जनवरी सन 1982 को प्रदर्शित हुई। फिल्म की कहानी अमेरिकी फिल्म सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स के रूपांतरित की गई थी। आइए श्रोताओं, सुनते हैं इसी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओ, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं 1982 में प्रदर्शित फिल्म सत्ते पे सत्ता के कुछ गीत।

सूचना, ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

आर डी बर्मन, किशोर कुमार और सपन चक्रवर्ती की आवाज़ों में इसी गीत के साथ ही आज का एक ही फिल्म के गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म के गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की हमारी फिल्म थी वर्ष 1982 में प्रदर्शित फिल्म सत्ते पे सत्ता। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 8:45 होने को है। कुछ ही क्षणों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर

0: शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
2: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें हैं जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें हैं जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: वकील और न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी यह कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि

0: ने पहले कहा था आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: IMD forecast thunderstorms accompanied by hailstorms over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Vidarbh tomorrow. In badminton, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to men's doubles final of Singapore Open, and in women's cricket, England set a target of 169 runs for India in the second T20 international in Bristol. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मी। कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने डीके शिवकुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल को फरोग देने की खातिर फिर से एक माह तवील खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कल ओले गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। और खवातीन क्रिकेट में ब्रिस्टल में दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने 169 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में वजीर आला के ओहदे से सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद विधानसभा में कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में डीके शिवकुमार को नया लीडर मुंतखब किया गया है। इस सिलसिले में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर की जानिब से पेश की गई करारदाद को अरकान असेंबली ने मंजूर कर लिया। इस तरह डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए वजीर आला होंगे। जनाब शिवकुमार को लीडर मुंतखब करने से मुतालिक करारदाद मंजूर किए जाने के बाद मीटिंग में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने सभी कांग्रेस अरकान असेंबली को बाजाब्ता तौर पर इस फैसले से मुतला किया। बाद में नामा निगारों को जानकारी देते हुए जनाब वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि पार्टी के अरकान असेंबली ने इत्तफाक राय से डीके शिवकुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है और वो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर मौसूफ से मिलने जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हलफबरदारी की तकरीब 3 जून को होगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तनाव से भरे कुछ लम्हात के बाद ये खबर सामने आई कि डीके शिवकुमार को कांग्रेस कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर दिया गया है। सुबुकदोश होने वाले वजीर आला सिद्धरमैया ने एक सतर पर मुश्तमिल ये करारदाद पेश की थी कि कानून साज पार्टी के लीडर के इंतखाब का मामला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विधानसौधा में वजीर आला के चैम्बर में सिद्धरमैया के साथ अलहदा अलहदा बातचीत की। इस तरह कानून साज पार्टी की मीटिंग में वक्फे के बाद जब ये दोबारा शुरू हुई तो डीके शिवकुमार को लीडर मुंतखब कर लिया गया। इसके बाद रियासत के गवर्नर ने डीके शिवकुमार को वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के लिए मदऊ किया। रियासत के गवर्नर के साथ मुलाकात के बाद ये ऐलान किया गया कि डीके शिवकुमार और उनकी काबीना के साथियों की हलफबरदारी की तकरीब 3 जून को सुपहर 4:05 पर होगी। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए खेत बचाओ अभियान को एक जामे कौमी मुहिम की शक्ल दी जानी चाहिए। वजीर मौसूफ ने आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के सिलसिले में आला सतह की मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने कहा कि मजकूरा मुहिम में कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल करने, मौसम से वाबस्ता चैलेंजों के मद्देनजर किसानों को बरवक्त सलाह देने, पंचायत सतह पर सरगर्म शमूलियत और मुतालिका स्कीमों के फायदे सीधे गांव तक पहुंचाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पीर के रोज से मुल्क भर में खेत बचाओ अभियान का आगाज होगा और ये 30 जून तक जारी रहेगा। इस मुहिम में शामिल सभी इदारों के हम राबताकार के तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र को मुकर्रर किया गया है। 1600 ज्यादा टीमें तश्कील दी गई और खाद के ज्यादा इस्तेमाल वाले 100 अजला के लिए कुल 500 टीमें बनाई गई हैं। मुहिम के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को बरवक्त और सही रहनुमाई

0: भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: सरकार ने कपास की दरामद को अगले महीने की पहली तारीख से इस साल 31 अक्टूबर तक कस्टम्स ड्यूटी से आर्जी तौर पर मुस्तस्ना कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में टेक्सटाइल्स की वजारत ने कहा है कि कपास के किसानों और कपास से मुतालिक पूरी वैल्यू चेन के मफाद को मलहूज खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब जबकि कपास का सीजन नहीं है तो इस कदम पर अमल दरामद से टेक्सटाइल सनत के लिए कपास की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा, एमएसएमई इदारों की मदद हो सकेगी, लागत को एतदाल पर लाया जा सकेगा और भारतीय टेक्सटाइल्स की मुसाबकत को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वजारत ने जोर देकर कहा है कि इस इकदाम से किसानों के मफादात का तहफ्फुज़ होगा और मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया जो पायदार अहम मादनियात और जदीद साजो सामान तैयार कर रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजीज में लिथियम बैटरियां और मकनातीस कलीदी रोल अदा करते हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नजरिया है कि इन्हें भारत में ही तैयार किया जाए और इसकी टेक्नोलॉजी को भी अंदरूने मुल्क ही तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस नजरिए से मुताबकत रखते हुए लोहम नामी एक नए स्टार्टअप ने कामयाबी के साथ ये अहम टेक्नोलॉजी तैयार की है।
2: में बैटरी बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन हो, चाहे किसी भी तरह का आज की बड़ी मशीनों में, सब जगह परमानेंट मैग्नेट और लिथियम की बैटरीज का उपयोग होता है। इसका प्रोडक्शन भारत में हो और बड़ी बात यह है कि इसकी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। इस विजन के तहत एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला, लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउं लाइन भारत के 5 रोजा दौरे के तहत आज शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं। खारजी उमूर के मरकजी वजीर मम्लिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। इससे कबल आज म्यांमार के सदर ने बिहार के गया का दौरा किया और वहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके हमराह मुख्तलिफ काबीनी वुजरा, सीनियर अहदेदारान और कारोबारी रहनुमाओं का एक आला सतही वक्त भी है। म्यांमार के सदर का ओहदा संभालने के बाद यह उनका भारत का पहला दौरा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज उनसे मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने तवील मुद्दती बाहमी इश्तराक को मुस्तहकम करने के तई म्यांमार के सदर की मुस्बत सोच की सताइश की। उन्होंने कहा कि वो अमन, तरक्की और खुशहाली की खातिर शराकतदारी की पेशरफ के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ जनाब लाइन की मीटिंग के मुंतजर हैं। म्यांमार के सदर दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने की खातिर पीर के रोज वजीर आजम मोदी से बातचीत करेंगे। वो एक कारोबारी फोरम में भी शिरकत करेंगे। कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से नाफिज करदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मुल्क भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा का तारीखी संगे मील हासिल किया गया। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि एक मरबूत मुश्तरका तरीक़ेकार और शहरियों पर मरकूज डिजिटल सेहत इको निज़ाम की जानिब भारत के सफर में यह एक अहम पेशरफ्त है। वजारत ने कहा कि 2021 में 14 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स की तादाद बढ़कर इस साल 90 करोड़ हो गई है। दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई के जराइम पेशा ग्रोह के नेटवर्क के इशारे पर काम करने वाले 8 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे के खसूसी पुलिस कमिश्नर अनिल शुक्ला ने बताया कि इन मुलजिमों को दिल्ली में अहम तनसीबात और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि इन मुलजिमों के कब्जे से हथियार और धमाका खेज मादा जब्त किया गया है। जनाब शुक्ला ने बताया कि ये मुलजिम सरहद पार अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। इन्हें दिल्ली, महाराष्ट्र और पुणे से गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में तेज बारिश की पेशगोई की है। अगले 2 दिन के दौरान ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, क्राइकल और मध्य प्रदेश में भी शदीद

नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापा खाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम। और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर

0: आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मार्तंड ने बोया वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये 3 मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूं, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मार्तंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधा वर्षन या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्याम आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30 से 35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा ये मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य है वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद रखना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में 2 और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई। एक खोजी पत्रकारिता, जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई वह है विकास पत्रकारिता। विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आप कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की

0: इसकी और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
1: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती, और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविजन कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं, लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहाँ अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थी बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया, और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। यह मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहां विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व

0: और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वहां शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रेवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाएं, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रेवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
2: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक AI और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं। यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
3: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं। हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहाँ पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है। आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है। आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का। हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है। तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में, किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा। सौरभ, आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने ये कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
2: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला है, इतने भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
3: अच्छा।
2: क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं मीडिया एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रेवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रेवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रेवल किया। एक हफ्ता जब हमने ट्रेवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो, तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम।
4: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहाँ पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी, आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए। और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं, आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है, या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो।
2: हम लोगों का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती है आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से, लेकिन हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
4: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी, तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
3: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग, पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता अब। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम, जो फिर मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
4: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा, कैन यू गिव सम एग्जांपल।
3: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइवर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स हैं।
5: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
3: लोफर गामिनी।
5: और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
3: इंस्पिरेशन एक तो देखो हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है। हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें

0: बहुत पहले भारत माता टेम्पल है, जब हम वहाँ पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस है, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ा। तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा, और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी, आपने 500 का चैलेंज किया था, आपने पूरा इंडिया घुमा था, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, तो हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
1: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है,
2: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
1: बहुत ही मजेदार होता है। हाँ,
2: तो एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती हैं लाइक ट्राइपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
0: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है, वो ना ओवरथिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, हमारे पास एक फोन था, उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना, एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, अब जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है, या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है। तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उस पर ही स्टार्ट करना चाहिए, वो ही इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमरा खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ, तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप, और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
2: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड
0: या ये जितना छोटा हो सके, मतलब
1: कॉम्पैक्ट रखो।
0: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
2: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस?
1: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है, हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो उस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके, और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें जो आइसक्रीम खाई थी और बहुत मजा आया था, और जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
0: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट, एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
3: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है। वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, ना उम्र की, ना दूरी की, ना परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है, और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
4: जी धन्यवाद।
3: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य

0: की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है, पढ़ाई के साथ साथ मान लीजिए स्वरोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
0: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है। खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटि की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं उसपे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कंपोनेंट है।
0: जी,
1: तो अगर आप सामान्य बीए, बीकॉम, बीएससी भी कर रहे हैं तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहाँ पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
0: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से, वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह से रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं अगर इग्नू की बात करें
1: जी,
0: तो
1: देखिए ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है। कोई माइग्रेशन, कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, आप तो विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है, 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरेंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मोकाशी का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार। इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मोकाशी।
0: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
1: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मोकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
0: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
1: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लीविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
0: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
1: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
0: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही है राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्यलय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो न जियरा मोरा। और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: टू बिगिन हर रेसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एकताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे। दिस इज फॉलोड बाय अ मध्यलय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो ना जियरा मोरा। शी कंक्लूड्स दिस राग विद अ द्रुत कंपोजिशन सेट टू एकताल विद द लिरिक्स मानो ना ही तुमरी बात। अकंपनिंग हर ऑन द तबला इज गांधार राजहंस एंड ऑन द हारमोनियम इज प्रमोद बोरगांवकर।

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारु बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही है राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना की बोल है साजन बिन सुनी एरी आली, और द्रुत एक ताल में निबद्ध बंदिश की बोल है राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारु बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्य लय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राज हंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिस्निंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकम्पनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राज हंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। प्रातःकालीन सभा में कल सुबह 5:55 पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।